प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: रेडियो मॉरिशस।

0: रुपए का शुल्क लागू हो गया है। रोजमर्रा की जरूरत के 38 उत्पादों को इससे छूट दी गई है। इस रकम का इस्तेमाल रिसाइकलिंग व्यवस्था को मजबूत करने में किया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और महात्मा गांधी की 157वीं जयंती है। दुनिया भर में शांति, संवाद और आपसी सम्मान के उनके संदेश को याद किया जा रहा है। फार्मर्स कार्ड की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले से रजिस्टर्ड छोटे खेतिहरों और पशुपालकों के लिए यह सुविधा मुफ्त होगी, जबकि नए रजिस्ट्रेशन के लिए 400 रुपए देने होंगे। मोशस का निर्यात बढ़ा है, लेकिन 3 महीनों में इस सेक्टर में 771 नौकरियां कम हुई हैं। मेक्सा के मुताबिक मशीनों और नई तकनीक का बढ़ता इस्तेमाल इसकी एक वजह है। पोटली बंदरगाह को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में काम जारी। स्थानीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए 2 दस्तावेज अभी कागज पर दी जाती है, जिन्हें अब डिजिटल करने की तैयारी है। और विदेश की खबरों में फ्लाई दुबई की दुबई से तेल अवीव जा रही उड़ान में को पायलट के हमले की जांच जारी। हमले का मकसद अभी साफ नहीं और ईरान से किसी संभावित संबंध की भी जांच की जा रही है। और अब चलिए जानते हैं स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा।
1: Your news on MBC Play and MBC.mu.
2: Your weather forecast on RM2.
3: Radio Musti.
0: चले जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर आज दिन भर मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वानुमान, आज सुबह के दौरान देश भर में धूप खिली रहेगी, शाम को भी देश भर में मौसम अच्छा रहेगा, रात को देश भर में बादल घिरे रहेंगे। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान शहरी इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 5:51 पर, सूर्यास्त शाम 6:07 पर होगा।
1: RM3 Radio.

0: आइए सुनते हैं समाचार आस्था के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आस्था।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। जहां शुक्रवार 2 अक्टूबर की सुबह प्रथम समाचारों में स्वागत है आप सभी का। पहली अक्टूबर से मॉरिशस में लगभग सभी प्लास्टिक बोतलों पर

0: صدق الله العظيم.
1: हर एक वली किसी ना किसी के कदम पर होता है और मैं अपने नाना जान यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पर हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये फरमान पीराने पीर रोशन ज़मीर सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का है। ये ऐलान किसी गुरूर या तकब्बुर से नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के ख़ास इनाम और विलायत के कमाल की दलील है। बिलयकीन हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदे, मकबूल तरीन वली बल्कि तमाम वलियों के सरदार हैं। इल्म में यगाना, तसव्वुफ़ में बेमिसाल, ज़ुहूद व तक़वा में बेनज़ीर और विलायत में लाजवाब। दरअसल गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका ईमान को जगाने वाला चराग़ हैं।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, हुज़ूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे से निकलने वाले शागिर्द सिर्फ इल्म के पैकर न थे बल्कि किरदार के आईने थे। आप रहमतुल्लाह अलैह जहाँ भी जाते इस्लाम फैलाते रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत उस बाग की तरह है जिसकी खुशबू सदियों से पूरी दुनिया को मुअत्तर कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते करामत पर 500 से जायद गैर मुसलमान मुशर्रफ बे इस्लाम हुए और 1,00,000 से ज्यादा गुनहगारों ने तौबा की। सामईन, हमदो सना के बाद आइए दावत इस्लामी मॉरिशस के सदर कारी अब्दुल माजिद अत्तारी दामत बरकातुहु मालिया की जबानी एक आलिमाना बयान समाप्त करते हैं।

मुझे शदीद प्यास महसूस हुई तो एक बादल ने मुझ पर साया किया और उससे कुछ बारिश के कतरे गिरे जिन्हें मैंने पी लिया। फिर मैंने एक नूर देखा जिससे आसमान का किनारा रोशन हो गया और एक शक्ल जाहिर हुई जिससे मैंने एक आवाज़ सुनी, ए अब्दुल क़ादिर, मैं तेरा रब हूँ और मैंने तुम पर हराम चीज़ें हलाल कर दी हैं। तो मेरे वालिद मोहतरम गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ कर कहा, ऐ शैतान लाइन दूर हो जा, तो रोशन किनारा अंधेरे में तब्दील हो गया और वो शक्ल धुआं बन गई। फिर उसने मुझसे कहा, अब्दुल क़ादिर, इससे पहले मैं 70 औलिया को गुमराह कर चुका हूँ मगर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। मैंने कहा, यह सिर्फ़ मेरे रब क़दीर का फ़ज़ल व एहसान है। शहज़ादा गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में अर्ज़ किया गया, आपने किस तरह जाना कि वो शैतान है? आप रहमतुल्लाहि ताला ने इरशाद फरमाया, इसकी इस बात से कि बेशक मैंने तेरे लिए हराम चीज़ें हलाल कर दी। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ये ख्याल करना कि शरई मुकल्लफात यानी अहकामात किसी हाल में साकित यानी मुआफ़ हो जाते हैं गलत है। फ़र्ज़ इबादत का छोड़ना बेदीनी है, हराम कामों का करना मासियत यानी गुनाह है, फ़र्ज़ किसी हाल में भी मुआफ़ नहीं होता। सुभान अल्लाह। ए आशिकान गौसे आज़म, देखा आपने, नमाज रोज़ा फ़राइज़ किसी को भी मुआफ़ नहीं होते। जैसा कि कुछ नाम के पीर जो नमाज नहीं पढ़ते, जब इनके मुरीदीन इनसे पूछते हैं यानी पूछा जाए तो कहते हैं कि हमारे पीर साहब बगदाद में फजर की नमाज पढ़ते हैं और फिर अजमेर में जोहर की नमाज में होते हैं, मदीने में रोज़ाना ईशा पढ़ते हैं। इस तरह की बातों में नहीं आना चाहिए कि जब सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नमाज मुआफ़ नहीं थी, बल्कि हम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 नमाज़ें फ़र्ज़। जी हाँ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद भी फ़र्ज़ थी। मज़ीद ये कि गौसे पाक को शैतान ने धोखा देने की कोशिश की, लेकिन आपने इसके वार को नाकाम बना दिया। उसने दूसरा और वार किया कि अब्दुल क़ादिर, आपको आपके इल्म ने बचा लिया। तो गौसे पाक इसको भी समझ गए कि मेरे इल्म ने नहीं, मेरे रब ने मुझे बचा लिया। लिहाजा इल्म पर गुरूर नहीं करना चाहिए, हर हाल में रब करीम की रहमत पर नज़र रखनी चाहिए। हे आशिकाने गौसे आज़म, ये भी मालूम हुआ कि शैतान बड़ा धोखेबाज है, उसके वार से हमेशा ख़बरदार रहना चाहिए। अपनी अकल व होशियारी पर एतमाद करने के बजाय अल्लाह पाक के फ़ज़लो करम पर नज़र रखनी चाहिए। जिसके पास माल होता है उसके पास चोर आता है, और जिसके पास दौलत ईमान है उसके पास ईमान का लुटेरा शैतान ज़रूर आता है। जिसके पास ईमान जितना मजबूत होगा उसके पास उसी कदर नेकियों के ख़जाने भी कसरत होगी, लिहाजा वहाँ शैतान बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाएगा। हमारे पीरो मुर्शिद हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास ईमान व आमाल के ख़जाने की कसरत देखकर शैतान ने डाका डालने की कई बार कोशिश की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम व नामुराद ही रहा। ए आशिकाने गौसे आज़म, हमारे मुर्शिद गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला की इबादात पर इस्तकामत आपकी बहुत बड़ी करामत थी। मशहूर मकूला है, अल इस्तिकामतु फौकल करामत, यानी इस्तिकामत फौकियत रखती है करामत पर, यानी कि यूँ समझ लें आसान, इस्तिकामत करामत से बढ़कर है। ए आशिकाने गौसे आज़म, हम जोश में आकर कुछ काम करते हैं फिर ठंडे हो जाते हैं। मेरे पीरो मुर्शिद गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इस्तकामत की भी क्या शान है। चुनाचे शहंशाह बगदाद गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक बार मैं जामे मंसूर में मसरूफ़ नमाज था कि एक सांप आ गया और उसने मेरे सजदे की जगह पर मुंह खोल दिया। मैंने उसे उठाकर सजदा किया मगर वो मेरी गर्दन में लिपट गया। मेरी एक आस्तीन से घुस कर दूसरी आस्तीन से निकला। जब मैंने सलाम फेरा तो वो गायब हो गया। दूसरे दिन जब मैं उसी मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे एक बड़ी बड़ी आँखों वाला आदमी नज़र आया। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि यह शख्स इंसान नहीं बल्कि कोई जीन है। वो मुझसे कहने लगा कि मैं आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को तंग करने वाला वही सांप हूँ। मैंने सांप की शक्ल में बहुत सारे औलियाल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहि मजमाइन को आजमाया मगर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जैसा किसी को भी साबित कदम नहीं पाया। फिर उस जिन ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के

मुबारक हाथ पर तौबा कर ली। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशू खुजू यानी नमाज में अल्लाह पाक के लिए आजी व इनकिसारी के साथ जिस्मानी और जहनी तवज्जो हो तो ऐसा कि नमाज में ख्वास सांप ही लिपट जाए मगर अल्लाह पाक की तरफ से तवज्जो ना हटे। आह, एक हमारी नमाज है कि अगर हम पर मक्खी भी बैठ जाए तो परेशान हो जाते हैं, मामूली सी ख़ारिश भी हमसे बर्दाश्त ना हो सके। इस वाक़े से ये भी मालूम हुआ कि जिन्नात भी हमारे गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद बन जाते हैं। हज़रत शेख अब्दुल्ला मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, पीर लासानी, कंदील नूरानी, शेख मुहियुद्दीन, शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की 40 साल तक खिदमत की। इस मुद्दत में आप इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ते थे और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मामूल था कि जब बेवज़ू होते तो उसी वक्त वुजू फरमा कर दो रकत नफिल पढ़ लेते थे। ए मेरे मुर्शिद गौसे पाक के दीवानों, वुजू करने के बाद अगर मकरू वक्त ना हो तो दो रकत नफिल अदा करने को तहियतुल वुजू कहते हैं। तहियतुल वुजू की बड़ी फजीलत है और ये नेक बनने का नुस्खा बनाम नेक अमाल में से एक नेक अमल भी है। सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 553 567 में फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स अच्छे तरीके से वुजू करे और दो रकतें कल्बी तवज्जो यानी दिल की तवज्जो से अदा करे तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ए आशिकान गौसे आज़म, मेरे मुर्शिद गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला ने बहुत ज़्यादा इबादत और रियाजत और कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। चुनाचे मनकूल है कि शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला ने 15 साल तक रात भर में एक कुरान पाक ख़त्म करते रहे और आप रहमतुल्लाहि ताला ने रोज़ाना 1000 रकत नफिल अदा फरमाते थे। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं, एक रात जब मैंने अपने मामूलात यानी इबादत का इरादा किया तो नफ्स ने सुस्ती करते हुए थोड़ी देर सो जाने और बाद में उठकर इबादत करने का मशवरा दिया। जिस जगह दिल में ये ख्याल आया था उसी जगह और उसी वक्त एक कदम पर यानी एक लिपिए पर खड़े होकर मैंने एक कुरान करीम ख़त्म किया। ए आशिकाने गौसे आज़म, हमारी सुस्ती के तो क्या कहने। फजर की अजान पर आंख खुल गई, घड़ी देखी, अभी तो जमात में थोड़ी देर बाकी है, फिर 15 मिनट के लिए सो जाते हैं, फिर उठे तो सूरज तुलू हो चुका होता है यानी माज़ल्ला नमाज कज़ा हो गई। चलो कज़ा करके पढ़ लेंगे, कज़ा नमाज कज़ा होने का अफसोस भी नहीं होता। ये कितनी बड़ी मुसीबत है, थोड़ी सी मसरूफियात होती हैं, चलो भाई कज़ा पढ़ लेंगे। औरतें इस बला में ज़्यादा पढ़ी ये रहती हैं, शॉपिंग सेंटर जाएंगी, नमाज कज़ा करके पढ़ेंगी लेंगी। ये भी वो जो नमाजी हैं, जो नमाज नहीं पढ़ती उनकी तो बात ही अलग है। किसी की शादी या दावत में गए तो इस्लामी भाइयों की भी नमाज गई। जिनको जज्बा होगा हो सकता है वो भाग कर शायद मस्जिद में पढ़ लें। औरतें तो इसकी भी परवाह नहीं करती। ऐसा ना करें, आप दुनिया में कहीं भी हो, शॉपिंग सेंटर हो या बाज़ार हो, शरई पर्दे की रियायत के साथ नमाज की पाबंदी करनी है। बल्कि ऐसे औकात में जाएं कि इसमें नमाज का वक्त ना हो, अपना काम निपटाकर फौरन घर आ जाएं और घर आकर इत्मीनान से नमाज अदा करें। और अगर आपके साथ कोई महरम है तो नमाजों के औकात के अलावा अमूमन मस्जिद खाली होती हैं, वहाँ पर्दे में वुज़ू वगैरह करवा कर नमाज पढ़वा दें। अफसोस, हम नमाज के मामले में संजीदा नहीं हैं। याद रखिए, बहाना वो बताएं जो क़यामत में आपको बचा सके, वरना एक दूसरे को हम मुतमईन कर लेते हैं। रब को सब खबर है, जो नमाज नहीं पढ़ते उनको भी नमाजी बनना चाहिए वरना मरने के बाद बहुत पछताएंगे। हो सकता है किसी के जहन में ये ख्याल आए कि बुज़ुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह अजमाइन इतनी ज़्यादा इबादत कैसे किया करते थे, रोज़गार और फिर हज़ार हज़ार रकतें नमाज पढ़ लेना। पहली बात तो ये कि इतनी रकतें आम आदमी नहीं पढ़ सकता, ये उनकी करामात हैं। जैसा कि मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्ला तआला वजहुल करीम जब घोड़े पर सवार होने लगते तो एक रिकाब यानी एक पैडल पर कदम रखते, फिर दूसरे कदम रिकाबी में रखने तक लाते तो चंद सेकंडों के वक्फे में यानी एंची मामा पूरा कुरान करीम

तिलावत कर लिया करते थे, ये आपकी करामत थी। नेक बंदों के दिल मोहब्बत इलाही और तकवा से आबाद होते हैं, ये अपने दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकाल देते हैं। इनकी रूहें जिक्र इलाही के बगैर बेचैन और बेकरार रहती हैं, इसलिए वो हर लम्हा याद इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। और ये मकाम इबादत और रियाजत में सख्त मेहनत करने से हासिल होता है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट यानी कुछ तब्दीली के साथ बयान करता हूँ, जिसमें किसी ने कुछ यूं चोट की थी, किसी ने दूसरे से सवाल किया कि बुज़ुर्गान दीन कैसे सारी रात नमाज और कुरान पढ़ते गुजार लेते थे, तो सामने वाले ने जवाब दिया कि आज जिस तरह लोग सारी रात सोशल मीडिया पर यानी चैटिंग यानी बात करते करते वीडियो देखते देखते गुजार देते हैं, यानी वो इतने घंटे तक देखते रहेंगे सोशल मीडिया तो उसमें कोई प्लेंगे भी नहीं करता। तो बुज़ुर्गान दीन का चैन व करार याद परवरदिगार में था, जिस वजह से वो अपने पाक परवरदिगार की याद में इस तरह मशगूल हो जाते कि सारी रात गुजर जाने का पता ना चलता। और हम दुनिया की लज्जतों में ऐसे बदमस्त हैं कि हमें दुनियावी ख्वाहिशात से होश ही नहीं आता। सारी रात गुनाहों गपशप म्यूज़िक प्रोग्राम नाच गाने की महफिलों में गुजर जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे रात छोटी पड़ गई है, माज़ल्ला जैसे ही नमाज पढ़ने की बारी आती है बिल्कुल जान पे आ जाती है। पानी बड़ा ठंडा है, नमाज कैसे पढ़ेंगे, अभी थकन है, कल फजर में दोनों इकट्ठी पढ़ लूँगा यानी ओसाम। यह हमारी कौम की हालत है। अल्लाह करीम गौसे पाक के सदक़े हम सबको पाबंदी से सही नमाज पढ़ने की सआदत बख्शे। अल्लाह करे हम सब पक्के नमाजी बन जाएं, ऐसे आमीन कहें कि शैतान भी छटक जाए। इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल हम पक्के बाजमात नमाज पढ़ने वाले बनेंगे। गौसे पाक को शैतान ने इबादत में सुस्ती दिलाई तो आपने सारी रात एक पांव पर खड़े होकर कुरान करीम ख़त्म किया। तो हम भी गौसे पाक के मुरीद हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, बारिश हो या तूफ़ान, जलजले हो, ओस बरस रही हो, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अपनी जो इनफरादी इबादत है इसकी तरफ भी तवज्जो करें। देखें, आपने सुना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला ने कैसी इबादत किया करते थे, हज़ार नफिल पढ़ा करते थे आप। सारी रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ रहते, शैतान वसवसे डालता, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से उसके हर वार को नाकाम कर देते और इबादत में मसरूफ़ रहते। काश हम भी अपनी इबादतों को अपनी मजबूत कर लें, नमाज़ों की पाबंदी मजबूत हो जाए, रोज़ाना तिलावत कलाम पाक का कुछ ना कुछ टाइम फिक्स कर लिया जाए, ज़िक्र व अस्कार का कुछ ना कुछ टाइम फिक्स हो, दुरूद व सलाम का कुछ ना कुछ टाइम फिक्स हो, कुछ अपनी एक टाइम टेबल बना लिया जाए कि मैं इतने मिनट रोज़ाना तिलावत ज़रूर करूँगा। नमाज़ें तो मैं किसी हाल में छोड़ूंगा नहीं, कम से कम तवासों तगैसफ़ा में दुरूद शरीफ पढ़ूँगा, सुसान जिसफ़ा में इस्तग़फ़ार पढ़ूँगा, कलमा शरीफ पढ़ूँगा, सौ सुसान सीसफ़ा। इस तरह अपना कुछ ना कुछ टाइम टेबल बनाएं, इबादत की तरफ आएं, इबादत की लज्जत अल्लाह करे हमें मिल जाए। जैसी बुज़ुर्गान दीन को अल्लाह ताला ने इबादत की लज्जत अता फरमाई, गौसे पाक की इबादत की लज्जत के सदक़े ए अल्लाह हमें भी इबादत की लज्जत अता फरमा, सजदों का सुरूर अता फरमा, तिलावत की हलावत इबादत की हलावत नसीब फरमा। आमीन आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मोहतरम सामईन, उर्दू प्रोग्राम सबाल खैर में निसार अख्तर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले आप दावत इस्लामी मॉरिशस के सदर कारी अब्दुल माजिद अत्तारी दामद बरकात गुमालिया की ज़बानी एक आलिमाना बयान समात फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व ताला हमें तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आ

जिस खानदान आलिशान को नस्बत व कराबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ हासिल हो, उस मुकद्दस घराने की मसील व नज़ीर कैसे मुमकिन हो सकती है। इसलिए सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह एक बुलंद पाया मुकर्रर थे। आप रहमतुल्लाह ने वाइज़ और नसीहत के जरिए दीन इस्लाम की बेशुमार खिदमात अंजाम दी। आपके बयान का अंदाज इतना प्यारा था कि लोग जोक दर जोक आपकी तरफ मुतवज्जे होते गए। आपके बयानात खामोशी से सुनते

क्योंकि वो इतने पुरतासीर होते। दरअसल आप रहमतुल्लाह ने जब बयान की महफिलें शुरू की तो शिरकत करने वालों की कसरत की वजह से मदरसे की जगह कम पड़ जाती। लोगों ने आसपास की इमारतें खरीद कर वक्फ कर दी। बगदाद के अलावा दूर दराज से लोग आपके वाइज सुनने के लिए आने लगे। मनकूल है कि बिलउमूम 70,000 लोग आप रहमतुल्लाह के इज्तमा में शरीक होते। इतना ही नहीं, गौसे पाक रहमतुल्लाह की मजलिस में लोग कलम व दवात लेकर आते ताकि आपके इरशादात को लिखकर महफूज कर सकें।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसी मनकबत के साथ हमारी आज की सबाल खैर नशरियात अख्तिताम पज़ीर होती है। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने नेक बंदों की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनकी नेक तालीमात पर अमल की तौफीक दे और इस माह मुबारक की बरकतों से हमारे दिलों को नूर ईमान से भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, अब आपका मेज़बान निसार अख्तर इजाज़त का तलबगार है। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर है। पर वादा है कि अगले जुम्मे को फिर हमारी मुलाकात होगी। आइए आखिर में सलातुस्सलाम का नजराना कबूल फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम, फी अमानिल्लाह।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

ऐति श्रोतलारा ई रोजु मनतो पाटु श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी नलभे रोजुल दीक्ष गुरिंची माट्लाडुकुंदाम भक्ति विश्वासम गोविंद नाम गुरिंची मनसु विप्पी माट्लाडुकुंदाम ऐते इंतटितोने मन ई नाटी कार्यक्रम पूर्ति अवुतुन्नदी मीरु एल्लकालम आनंदंगा अंदंगा मरी स्माइल चेस्तू उंडाली मल्ली वच्चे कार्यक्रमंलो मरो कोत्त अंशंतो मरिन्नी मधुरमैन पाटलतो मी मुंदुकु वस्तानु अप्पटि वरकु सेलवु शुभदिनं नमस्कारं हरे श्रीनिवासा।

प्रणाम श्रोताओं, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हैं पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है भक्ति में बहुत शक्ति है। जो भी मनुष्य विश्वास और आस्था रखता है परमात्मा पर, उनकी सभी मनोकामनाएं एवं जीवन भी साधारण हो ही जाते हैं। आइए इसी विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं एक गणेश वंदना से।

श्रोताओं, शुक्रवार माता रानी को समर्पित किया जाता है। कहा जाता है और शक्ति का स्वरूप है, और जो भी शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं उनके अंदर एक शक्ति ही जैसी उत्पन्न होता है, जहाँ पर वे जीवन के हर समस्याओं को बड़े ही आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि स्वयं शक्ति माता रानी की कृपा उन पर बनी रहती है। इसीलिए जो भी इंसान, जो भी मनुष्य परमात्मा को बड़े भक्ति भाव से पूजते हैं, उनके जीवन में सकारात्मकता के साथ साथ उस शक्ति का भी वास होता है, जहाँ पर वे अपने मन को भी स्थिर कर लेते हैं। आइए इसी विचार के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं सुंदर भजन के साथ। इसे सुनते हैं अनुराधा पौडवाल जी की वाणी पर।

जब जब संसार में अधर्म हुए हैं तो परमात्मा अवश्य अवतरित होते हैं, किसी न किसी रूप में अवश्य वे आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं। किसी के साथ बुरा करके हम प्रार्थना नहीं कर सकते, अगर प्रार्थना कर भी ले तो क्षमा मांगना भी आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है, दिल साफ हो, हृदय साफ हो, तभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होते हैं। इसलिए कर्म ऐसा कीजिए जहां पर भगवान स्वयं ही प्रसन्न हो जाए आपसे। ये संसार एक जीवन यात्रा है, इस यात्रा में हम मिलते भी हैं, बिछड़ते भी हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम किसी के साथ बनते बनते उस मोह के धागे में ना बन जाए जहां पर वो मोह ही हमारे अंदर की अच्छाई को ही समाप्त कर दे। मोह को त्याग कर हमें परमात्मा की भक्ति ही पहचाननी चाहिए, जहां पर यही सच्चाई है, यही सत्य है, उनकी भक्ति। उनकी भक्ति से ही हम अच्छे और बुरे मार्ग को पहचान

कहते हैं जब जीवन में विपदा आती है तो एकमात्र सहारा केवल परमात्मा के द्वार ही रहता है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हैं।

वो अपने सिवा किसी और को नहीं देख पाता और सहायता करने के लिए एक निर्मल हृदय की आवश्यकता होती है। जब हम परमात्मा के समीप जाते हैं तो परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी स्वार्थ की वजह से या किसी स्वार्थ के कारण अपने भक्त की रक्षा नहीं करते, वो तो निस्वार्थ होकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इसी का नाम परमात्मा है। तभी तो कहते हैं कि भक्ति में बहुत शक्ति है। इसलिए जो सहायता करना चाहता है वो अवश्य करेगा और जो सहायता नहीं करना चाहता वो केवल अपने ही स्वयं के लिए ही सोचता है। इसलिए मनुष्य के सामने नहीं परमात्मा के सामने आप हाथ जोड़िए, क्योंकि उनका जीवन का सभी निवारण उनके ही द्वार में ही है।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.

听众朋友，今天的汉语普通话好歌送给您的节目将要接近尾声，主持人又要跟您说再见了，非常感谢您的陪伴。

और चलिए। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप हमारा साथ दे रहे हैं RM3 रेडियो मनोरंजन पर। 12:04 हो चुके हैं, यह है आपका सुहाना सफर जहाँ पर आपको लेकर चलेंगे हम डाउन मेमोरी लेन। थोड़ी ही देर में समाचारों की ओर बढ़ेंगे, तब तक के लिए साथ निभाइए ऑन रेडियो मनोरंजन।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आप सभी धीमा नमस्कार।
1: नमस्कार निर्मनी, सभी को नमस्कार। इससे देरी के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। शुरू करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। पहले 2 रुपए का ये शुल्क पेय पदार्थों की प्लास्टिक बोतलों पर लगता था, अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। 1 अक्टूबर से मॉरिशस में घर में इस्तेमाल होने वाले सामान और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स समेत लगभग सभी प्लास्टिक बोतलों पर 2 रुपए का शुल्क लागू है। आज 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। ये तारीख महात्मा गांधी की जयंती से जुड़ी है, जिनके लिए अहिंसा सिर्फ हिंसा से दूर रहना नहीं बल्कि अन्याय का सामना शांति, सत्य और संवाद के रास्ते से करना था। 1869 में भारत में जन्मे महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई में इस विचार को एक मजबूत जन आंदोलन का आधार बनाया। उनके विचारों ने बाद में दुनिया के कई शांति और नागरिक अधिकार आंदोलनों को भी प्रभावित किया। मॉरिशस में छोटे खेतीहरों की श्रेणी में सिर्फ खेती करने वाले लोग नहीं आते, इसमें छोटे पशुपालक और कुछ कृषि कारोबार से जुड़े लोग भी शामिल हैं, जो स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड यानी SFWF में रजिस्टर्ड हैं। फार्मर्स कार्ड से उन्हें कई तरह की सरकारी मदद मिलती है, जैसे खेती के लिए मशीनें, पशुपालन और जैविक खेती के लिए सहायता। हर सहायता की अपनी शर्तें हैं। फार्मर्स कार्ड आमतौर पर 2 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन इस बार इसकी अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। और किसानों की सुविधा के लिए मोबीज एप्लीकेशन भी है, जिसे जून 2025 में शुरू किया गया था। इसके जरिए किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फार्मर्स कार्ड का डिजिटल रूप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ सरकारी मदद के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। और विदेश में फ्लाई दुबई की दुबई से तेल अवीव जा रही उड़ान में को पायलट के हमले की जांच जारी है। उड़ान के दौरान भारतीय कैप्टन स्मिथ पर चाकू से हमला हुआ, जिसके बाद विमान को सऊदी अरेबिया में आपात स्थिति में उतारा गया। इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का दावा है कि को पायलट कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित था। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। तागोलेन ग्रांड पॉइंट पिमो में 76 साल की 76 years old की श्रीमती शोभा रताना पैदाइशी नाम प्रयाग और जो शोभा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज सुपहर 3 बजे उनके बेटे भूपेंद्र सिंह आशीष रताना के घर तागोलेन ग्रांड पॉइंट पिमो से उठाकर पॉइंट बिश की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टूडे 8:30 PM। नाटोलेन ग्लेनपार्क वाकवा में 62 साल की 62 years old की बीबी सलमान सीडन पैदाइशी नाम एनाताली और जो सलमान नाम से भी जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज सुपहर 3:30 बजे उनके शौहर गोरा सीडन के घर नाटोलेन ग्लेनपार्क वाकवा से उठाकर फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 3:30 PM। जॉन कैनेडी स्ट्रीट 3 बुटीक ट्रियोले में 54 साल के 54 years old के श्री संदीप सिंह सोमारू जो संदीप नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज सुपहर 3:30 बजे उनके पिता जयचंद सिंह सोमारू के घर जॉन कैनेडी स्ट्रीट 3 बुटीक ट्रियोले से उठाकर तेमिनी ट्रियोले की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं। News on NBC Play and NBC.mu.
2: You're listening to RM3 Radio Mano.

और प्यार भरा नमस्कार हमारे सभी सुनने वालों को हमारे सभी लिसनर्स को यस आपका हम स्वागत करते हैं RM3 रेडियो मनोरंजन पर नमस्कार यह है आपका सुहाना सफर और आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं मैं हूं परी आपके साथ अभी से लेकर दो घंटों का यह सफर होने वाला है बहुत खास लेकर चलेंगे उस दौर की तरफ जहां गानों में सिर्फ धुन नहीं बल्कि एक कहानी हुआ करती थी पुराने गीत जो वक्त के साथ पुराने नहीं हुए बल्कि और खूबसूरत हो गए और इन्हीं खूबसूरत गीतों को आपके लिए हम लेकर आए हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन तो चलिए दोस्तों मैं हूं परी और आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5250-6200-5250-6200 पर आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस गाने हम चुनकर लाए हैं बस अगर किसी के लिए आप ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं उनके नाम आप हम तक पहुंचा सकते हैं इसी नंबर पर रहेगा आपका इंतजार अभी के लिए लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें राजा रानी फिल्म का ये गाना आप सभी के नाम अ ब्यूटीफुल ट्रैक एंजॉय दिस वन

जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने खूबसूरत गीतों का कारवां आपके लिए सजाया है। जैसे कि आप जानते हैं 12 से लेकर 2 बजे तक लेकर आते हैं ये गोल्डन मेलोडीज आपके लिए। कुछ ऐसे गाने जो कभी पुराने नहीं होते बल्कि वक्त के साथ थोड़े से और खिल जाते हैं। इन्हीं गीतों को आप तक पहुंचाने की कोशिश है हमारे इस प्रोग्राम सुहाना सफर के जरिए। साथ दे रहे हैं आप RM3 रेडियो मनोरंजन पर। मैं हूं परी आपके साथ दोपहर के 2 बजे तक। आप भी हमारे म्यूजिकल हम सफर। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250620000 5250

6200 इसी नंबर पर हो रहा है आपका इंतजार। अभी के लिए यहाँ पर साथ दे रहे हैं माधुरी जी और कहती हैं गाना हो जाए सभी लिसनर्स के नाम। तो चलिए खुशियों का ये कारवा हमने आपके लिए सजाया है रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफर दिन के 2 बजे तक।

जी हाँ दोस्तों, हमारा सुहाना सफर प्रोग्राम एक जमाना था जब गाना सुनने का एक अलग एहसास हुआ करता था। शब्द धीरे धीरे दिल तक पहुंचते थे और धुन न खत्म होने के बाद भी कुछ देर तक साथ रहती थी। आज का ये सफर बस ऐसा ही है, जहां पर हम आपको उस पुरानी खुशबू की ओर लेकर जा रहे हैं। पुराने गानों की खासियत थी कि उनके बोल बहुत सादे, बहुत सिंपल हुआ करते थे, लेकिन मतलब काफी गहरा था। एक एक लफ्ज अपनी जगह बिल्कुल सही बैठता था और इसी खूबसूरती को महसूस करते हैं हमारे अगले गीत के साथ। एक एवरग्रीन क्लासिक जो हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, परी का साथ है। सुन रहे हैं आप सुहाना सफर प्रोग्राम अभी से लेकर दोपहर के 2 बजे तक।

और जी हाँ दोस्तों, गोल्डन एरा के ये खूबसूरत गीत आपके लिए हम पेश कर रहे हैं आज 2nd of October फ्राइडे का दिन, जहाँ पर आप हमारा साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मनोरंजन। उम्मीद करते हैं दैट ये जो फ्राइडे है आपके लिए एकदम खास से शुरू हुआ है और दिन बीतते बीतते कुछ अच्छी खुशियाँ आपकी झोली में भी भरेंगी और फिर तो आने वाला है वीकेंड लेकर और खुशी के पल। तो बस अभी के लिए आपके इस फ्राइडे को हम सेट कर रहे हैं विद सम वंडरफुल सॉन्ग्स। कुछ गाने ऐसे जो कभी पुराने नहीं होते, कुछ गाने ऐसे जिन्हें हम गोल्डन मेलोडीज कहते हैं। अभी से लेकर दोपहर के 2 बजे तक मैं हूं परी आपके साथ, प्रोग्राम है सुहाना सफर। साथ दे रहे हैं आप ऑन रेडियो मनोरंजन। दोस्तों आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250620000 पर। इस वक्त कविता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप कहती हैं इन गानों का कारवां बहुत खास लगता है दिल को। इस वक्त किचन में है और खाना पकाते हुए आप गानों को सुन रही हैं, तो चलिए लग रहा है खास कि हमारे जो स्पेशल लिसनर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सुनीता जी, हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। गॉट योर सुपर स्वीट मैसेज, आपका प्यारा सा मैसेज हम तक पहुँच गया और आप भी हमारे साथ जुड़ी हैं, कनेक्टेड हैं, जानकर अच्छा लगा। तो बस ऐसे ही साथ निभाते रहिए, गानों को सुनते रहिए, इस दौर को आप एंजॉय करें। और जैसे हमने कहा कि ये जो दौर था खास दौर था, अभी के लिए 2026 लेकर चलते हैं आपको डाउन मेमोरी लेन विद सम ब्यूटीफुल ट्रैक्स। एंजॉय दिस वन।

0: Et du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, MBC.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: और चलिए दोस्तों, हमारे खूबसूरत गीतों का कारवां यहां पर जारी रहेगा। इसी गीत के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर, और साथ ही साथ सभी फैंस ऑफ आशा पारेख, ये गाना आपके नाम, जो आज सेलिब्रेट कर रही हैं अपना जन्मदिन। कहते हैं कि भाई हर दौर में हर एक, कहते हैं कि जो डिफरेंट स्टार्स आए उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी, और उन्हीं में से एक नाम आशा पारेख का भी था, जहाँ पर बी इट उनकी ड्रेसिंग स्टाइल, बी इट हेयर स्टाइल, बी इट एक्टिंग, हर किसी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, और स्पेशली उनकी डांसिंग स्किल्स, ये भी लाजवाब थी। सभी के लिए ये गाना उनके तमाम फैंस के नाम, हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका साथ बना हुआ है RM3 रेडियो मनोरंजन पर। परी का साथ है दोपहर के 2 बजे तक। समाचारों के बाद एक बार फिर इस कारवां को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहें इन खूबसूरत गीतों को, और आपका साथ 5250600 पर।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे गीता जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार। स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड के साथ पंजीकृत किसान, पशुपालक और छोटी कंपनियां भी शामिल हैं। फार्मर्स कार्ड के जरिए उन्हें कई तरह की सहायता मिलती है। ये कार्ड 2 साल के लिए वैध होता है, लेकिन इस बार विशेष रूप से इसकी अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले से पंजीकृत किसानों के लिए ये अवधि बढ़ाना निःशुल्क है। वहीं नए आवेदकों के लिए पंजीकरण शुल्क ₹400 है। किसानों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जून 2025 में मोबीज भी शुरू किया गया था। इस ऐप के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है और फार्मर्स कार्ड का डिजिटल संस्करण इस्तेमाल किया जा सकता है। आबादी की बढ़ती उम्र और देश के भविष्य पर इसके असर को लेकर आज मॉरिशस फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्था की 69वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे आयोजित किया गया। संस्था का उद्देश्य आबादी में हो रहे बदलावों और समाज पर इसके प्रभाव को लेकर चर्चा शुरू करना है। ये चर्चा ऐसे समय हो रही है जब देश कई सामाजिक चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। इसमें लैंगिक हिंसा, कम उम्र में गर्भधारण, युवाओं में नशीली दवाओं का सेवन और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार जैसे मुद्दे शामिल हैं। आज 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 157वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नई दिल्ली में राजघाट में श्रद्धांजलि अर्पित की। आज ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जा रहा है। आज के दिन महात्मा गांधी के अहिंसा और शांति के संदेश पर विचार किया जाता है। मॉरिशस में भी महात्मा गांधी संस्थान सहित कई अन्य जगहों में गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समारोह आयोजित किए गए। और विदेशी खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के बाद ईरान पर बमबारी तेज करने की संभावना का जिक्र किया है। अमेरिकी मीडिया में कल प्रकाशित खबरों में इसकी जानकारी दी गई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। जॉन कैनेडी स्ट्रीट थ्वाबुचिक त्रियोले में 54 साल के 54-year-old के श्री संदीप सिंह सुमारू, जो संदीप से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर बाद के 3:30 उनके पिता जयचंद सिंह सुमारू के घर जॉन कैनेडी स्ट्रीट थ्वाबुचिक त्रियोले से उठाकर टेमिनिस त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:30 PM। नाटू लेन ग्लैन पार्क फाकुआ में 62 साल की 62-year-old की मिसेस बीबी सलमान सिडन, पैदाश नाम एनाताली, और जो सलमान से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दोपहर बाद के 3:30 उनके शौहर गोगा सिडन के घर नाटू लेन ग्लैन पार्क फाकुआ से उठाकर फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3:30 PM। टागो लेन खाउंट पेंतुपीमा में 76 साल की 76-year-old की श्रीमती शोभा रताना, पैदाश नाम प्रयाग, और जो शोभा से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दोपहर बाद के 3:00 उनके बेटे भूपेंद्र सिंह आशीष रताना के घर टागो लेन खाउंट पेंतुपीमा से उठाकर पेंतुबिश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: Your news on NBC Play and NBC.mu. Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to your RM3 Radio.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और चलिए दोस्तों आपका हम स्वागत करते हैं ये खूबसूरत गीतों का कारवां हमने आपके लिए यहां पर सजाया है ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन 1:08 हो रहे हैं ऐसे गीत जो कभी पुराने नहीं होते ऐसे गीत जो हमेशा लाजवाब थे और लाजवाब रहेंगे इन्हीं गीतों को हम आपके लिए पेश कर रहे हैं अभी से लेकर दिन के 2 तक मैं हूं परी आपके साथ ऑन रेडियो मनोरंजन और यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त हमारा साथ दे रहे हैं ज्ञान बिहारी जी आपके दोस्त सुनील संजीव रानी भामा शीतल और सभी RM3 लिसनर्स के नाम डेडिकेट कर रहे हैं आप खूबसूरत गाने साथ ही कह रहे हैं कि आज आशा पारेख अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं बिल्कुल जी आशा जी अपना जन्मदिन मना रही हैं आज तो यहाँ पर गुडी गुड विशेज और उनके कुछ पॉपुलर गीत भी हम ज़रूर चलाएंगे साथ देने के लिए शुक्रिया ज्ञान जी और उम्मीद करते हैं दैट आप हमारे हम सफ़र बने रहेंगे इन गीतों को सुनते सुनते अपने मैसेजेस अपने डेडिकेशन हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे डियर लिसनर्स इंतज़ार है आपका 5250620005250600 मैं हूं परी आपके साथ

और यहां पर प्रकाशवति जी बेल्जियम से हमारा साथ दे रही हैं कहती हैं कि 12 डिग्रीज एंड मौसम जो है काफी आशिकाना है सो ऐसे में यहां मॉरिशस से हम आपके लिए बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं बहुत सारी गुड विशेस भेज रहे हैं थैंक यू सो मच प्रकाशवति जी साथ निभाने के लिए ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन कुछ खूबसूरत गीतों के साथ आपके इस आफ्टरनून को हम सजा रहे हैं साथ ही यहां पर सीता जी हमारे साथ आप भी कनेक्टेड हैं और काटरबून से हमारा साथ दे रही हैं गानों को पसंद कर रही हैं धन्यवाद ये गाना आपके नाम आपके पूरे परिवार के लिए और सभी सुनने वालों के नाम बहुत-बहुत धन्यवाद अच्छा लगा ये जो स्वीट मैसेज आपने हम तक पहुंचाया साथ ही यहां पर भावना जी आप भी हमारा साथ दे रही हैं कहती हैं दैट पति धनसुख के नाम आप गाना जरूर डेडिकेट करें बिल्कुल जी यहां पर एक प्यारा सा गाना मन मंदिर फिल्म से लिया हुआ ये गाना आपके नाम आपके पति के नाम साथ ही यहां पर जितने भी आपके लव्ड वंस हैं एंड इक्वली गोज आउट हमारे सभी लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन

और जी हाँ दोस्तों, वो दौर भी अलग था और ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ रोमांटिक गाने सिर्फ इमोशनल गाने बनते थे। जब आर डी बर्मन का दौर आया, उन्होंने म्यूज़िक के पूरे अंदाज को बदल दिया और उनका एक स्टाइल डिफरेंट ही था और उनके स्टाइल को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। कहते हैं कि ही वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम और उनके गीत आज भी उतने ही पॉपुलर, आज भी उतने ही लाजवाब। हर एक जॉनर को उन्होंने बाखूबी निभाया, बी इट सिंगिंग या फिर म्यूज़िक देना हो, म्यूज़िक में भी डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना और फिर हर सिंगर की वर्सेटिलिटी के हिसाब से उस गाने को ढालना। तो बस यहाँ पर हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं इसी वंडरफुल एरा को। आपके लिए लेकर आए हैं ये प्यारे गाने सुहाना सफ़र प्रोग्राम। मैं हूँ परी आपके साथ दोपहर के 2 बजे तक।

जी हाँ दोस्तों, गाने तो सभी प्यारे हैं और जैसे इन गीतों के साथ कुछ कहानियाँ जुड़ी होती हैं, वैसे ही इन गीतों के साथ कुछ यादें भी जुड़ी होती हैं और हम जानते हैं कि इन यादों को आप भी ताज़ा कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के साथ। अभी के लिए मैं हूँ परी आपके साथ और लेकर आए हैं प्रोग्राम आपके लिए जिसका नाम है सुहाना सफ़र। इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं हमारे कुछ और प्यारे लिसनर्स और चलिए ये जो गाना है इसे हम डेडिकेट करेंगे स्पेशली मामा सुमंती के नाम जो साथ दे रही हैं सेंट जूलिया विलेज से, और साथ ही साथ यहाँ पर गुड विशेस उन तक पहुँचा रही हैं आप है उनकी प्यारी प्यारी बेटी। साथ देने के लिए शुक्रिया और हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए शुक्रिया मनीता जी, ऑल द वे फ्रॉम फ्रांस लेकर आई हैं अपना प्यार अपने पूरे परिवार के नाम फॉर ऑल हर लव्ड वंस। सो इन द वॉइस ऑफ मुकेश जी और लता मंगेशकर वी हैव दिस गाना एक हसीना। यस, ये फिल्म तो आपको याद ही होगी जहाँ पर हमने देखा था खूबसूरत अभिनय एक हसीना दो दीवाने। 1972 में रिलीज हुई ये फिल्म और उसी का ये खूबसूरत सा नगमा हमारे सभी लिसनर्स के नाम।

और यहाँ पर मनीता जी कह रही हैं कि मैं तो नाम बताना भूल गई, लेकिन आप बताएं नाम बताएं, हम तो हमारे लिसनर्स को जानते हैं, दिल से जानते हैं। सो थैंक यू सो मच मनीता जी, फ्रांस से आप साथ दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं दैट आपका पूरा परिवार यहाँ मॉरिशस में एकदम मस्त, एकदम ठीक ठाक, एंड वहाँ फ्रांस में भी सब कुछ एकदम परफेक्टली फाइन। सो चलिए, ये जो प्यारे गाने हैं आपके नाम डेडिकेट कर रहे हैं, ऑल द लिसनर्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ दे रहे हैं आप, और ये है आपका सुहाना सफर।

0: बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाय बाय।
1: सुनो तो, सुनो ना, सुनो

यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई। You're listening to RM3 Radio.

0: Notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: और चलिए दोस्तों, इसी गीत के साथ समय हो चला है कि मैं परी लूं आपसे अलविदा। और आपने इतने प्यार से हमारा साथ निभाया 12 से लेकर 2 बजे तक। इन खूबसूरत गीतों का कारवां तो जारी रहता है ऑन रेडियो मनोरंजन, अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग गीत आपके लिए सुबह से लेकर रात तक। कोशिश यही होती है कि आपका एंटरटेनमेंट यानी कि आपका मनोरंजन होता रहे। हमारे इस प्यारे रेडियो स्टेशन को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सभी लिसनर्स जिन्होंने इतने प्यार से हमारा साथ दिया। कहेंगे आपको थैंक यू और विशिंग यू अ वंडरफुल फ्राइडे, अ वंडरफुल वीकेंड। एंजॉय करें हर घड़ी हर पल को हमारे रेडियो स्टेशन के साथ। और अभी के लिए तो मुझे यानी कि परी को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द इसी रेडियो स्टेशन पर। तब तक के लिए ये प्यारे गाने, ये प्यारे प्रोग्राम्स आपके नाम। अभी के लिए किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में ये गाना आप सभी के नाम, हमारे सभी लिसनर्स के नाम, टेकन फ्रॉम द फिल्म राम बलराम। एंजॉय दिस वन।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening.

नमस्कार नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार। नशीली दवाओं की समस्या को देखते हुए पोर्टविस गिरजाघर ने एक अंतर धार्मिक समूह की मांग की है ताकि नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के साथ साथ उनके परिवारों को भी बेहतर सहयोग दिया जा सके। रुजिल स्थित काजनाला श्यामाशिव संस्था में कल प्रशिक्षण का दूसरा सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान नशीले पदार्थों से जुड़ी नवीनतम जानकारी, उनके अवैध कारोबार, सेवन और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को साझा किया गया। आगे भी इस विषय पर कई बैठकें और चर्चा आयोजित की जाएंगी। इसके बाद प्रतिभागी अपने अपने समुदायों में लौटकर उन लोगों की बेहतर तरीके से मदद और मार्गदर्शन कर सकेंगे जो नशे की जाल में फंसे हुए हैं। आबादी की बढ़ती उम्र और देश के भविष्य पर इसके असर को लेकर आज मॉरिशस फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्था की 69वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे आयोजित किया गया। संस्था का उद्देश्य आबादी में हो रहे बदलावों और समाज पर इसके प्रभाव को लेकर चर्चा शुरू करना है। ये चर्चा ऐसे समय हो रही है जब देश कई सामाजिक चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। और विदेशी खबरों में, मध्य अफ्रीकी देश कोंगो में खतरनाक एबोला वायरस का प्रकोप लगातार खतरनाक रूप लेता जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में एबोला से मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,000 को पार कर गया है। इस खतरनाक संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन लगातार संघर्ष कर रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ये इतिहास का सबसे तेजी से फैलने वाला एबोला प्रकोप बन गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार। On NBC Play.

0: संगीत नृत्य और परंपरा।
1: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम आपका जाना पहचाना है, क्योंकि समय वही है। 2 बज चुके हैं। समाचारों के बाद आता है कार्यक्रम गीत नृत्य और परंपरा। श्रोताओं, आज की तिथि हम याद करें तो 2 अक्टूबर का दिन है। तो आज कितना महत्वपूर्ण दिन है, जानकारी बहुत सारी आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि आज के अतिथि बहुत ही गणमान्य अतिथि हैं हमारे साथ। सत्यपाल सिंह जी, डॉक्टर सत्यपाल सिंह, ICCR चेयर संस्कृत, महात्मा गांधी संस्थान, मॉरिशियस में कार्यरत हैं। और आज से नहीं, बहुत वर्षों से उनका महात्मा गांधी संस्थान से परिचय है, बहुत लंबी उनकी यात्रा है। और 2500 उन्होंने इग्नू में अपने व्याख्यान दर्ज करवाए हुए हैं। भारत में भी बहुत जगह कार्यरत रहे हैं। अगर मैं परिचय पर ध्यान दूंगी तो आज की चर्चा में बहुत कमी आ जाएगी, इसलिए मैं परिचय पर ना जाकर, जब आप बातचीत सुनेंगे तो आप स्वयं जांच लेंगे कि हमारे साथ ज्ञान का भंडार हमारे सम्मुख अतिथि के रूप में आज उपस्थित हैं। सत्यपाल सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद अंजू जी।
1: हमने अनेकों बार आपको सुना है, और गीत नृत्य और परंपरा में एक बार पहले भी आप आ चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और अक्टूबर का ही महीना था जब अफ्रीका से भारत लौटते समय SS नवशेरा जहाज़ में तकनीकी खराबी के कारण मॉरिशस में रुकना पड़ा। वे तिथि थी 29 अक्टूबर 1901, जब गांधी जी यहाँ पहुँचे। ले गजवी में उस समय गवर्नर सर चार्ल्स प्रूस द्वारा उनका स्वागत किया गया। 18 दिन तक महात्मा गांधी जी मॉरिशस में रहे, और इन 18 दिनों में उन्होंने स्थितियों को देखा। बाद में अक्टूबर का ही महीना था जब 11 अक्टूबर 1907 में मणिलाल डॉक्टर हमारे देश में उन्हीं द्वारा भेजे गए थे, और स्थितियों को सुलझाने का मौका मिला हमें डॉक्टर मणिलाल जी द्वारा। लेकिन अपने मॉरिशस प्रवास में गांधी जी ने जो 3 मंत्र हमारे लिए छोड़े थे, उन्होंने मॉरिशस की काया पलट दी। सबसे पहला संदेश जो रहा उनका, वे था बच्चों को शिक्षित करें, स्थानीय राजनीति में सक्रिय भागीदारी हो, और एकजुट होकर मॉरिशस वासी बने रहें, जड़ों को ना भूलें, अर्थात भारत से संपर्क को बनाए रखें। तो ऐसी 3 मंत्र ने काया पलट दी मॉरिशस की। तो आज की तिथि में उन पर ही चर्चा क्यों ना की जाए। तो बहुत सारी जानकारियां मॉरिशस की बहुत लोगों द्वारा दी जाती हैं, पर आपके मुख से हम सुनना चाहेंगे कि गांधी जी के जो मंत्र थे, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, इस पर आप हमारे श्रोताओं को भरपूर जानकारी बांटेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। स्वागत है आज की चर्चा में आपका, आज की
2: धन्यवाद जी। अंजू जी, आपने गीत नृत्य और परंपरा के इस कार्यक्रम में मुझे मॉरिशस वासियों को प्रणाम करने का

0: उनसे बात करने का, मुखातिब होने का ये अवसर प्रदान किया मेरे लिए।
1: ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है,
0: मेरे लिए भी सुखद संयोग है कि मैं आप लोगों के साथ में ये चर्चा करूंगा। और इस बहाने से हम एक ऐसे महापुरुष की चर्चा करेंगे, ऐसे महापुरुष के जीवन के विविध पक्षों पर दृष्टिपात करेंगे जो केवल भारत के नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: वो
1: अपनी छाप जहां भी गए,
0: वो जहां भी गए वो वहीं के हो गए
1: जी।
0: वो अफ्रीका के भी हैं, नेल्सन मंडेला उनको अपना गुरु मानते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वो अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग के भी गुरु हैं। वो मॉरिशस में आए तो मॉरिशस के वो मार्गदर्शक हैं।
1: बिल्कुल,
0: और मॉरिशस भारत से कुछ अलग नहीं है, ठीक है, एक देश के रूप में विकसित है, लेकिन वो हमारे हृदय के बहुत नजदीक है, हमारा संबंध उनसे हृदय से है। तो मैं सभी मॉरिशस वासियों को, बहन भाइयों को आज इस महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर उनको हृदय से बधाई देता हूँ और सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आपने कहा कि महात्मा गांधी जी के सत्य, अहिंसा, इन के ऊपर हम भरपूर चर्चा करें। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी पहले दिन से महान नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: एक एक, एक
1: महात्मा बनने में उन्हें भी समय
0: लगा। भी समय लगा।
1: बिल्कुल,
0: ये आप देखते हैं कि एक वट वृक्ष होता है ना
1: जी,
0: वो एक छोटे से बीज के रूप में होता है।
1: बिल्कुल,
0: वो पहले छोटा सा अंकुरित होता है, यदि वो उसमें सामर्थ्य ही ना हो, पोटेंशियल ही ना हो, तो विकसित नहीं होता
1: जी।
0: और महात्मा गांधी जब मोहनदास थे, मोहन थे ये हम कहें, तब वो महात्मा नहीं थे। वो एक लंबे समय तक भी महात्मा नहीं थे, जब उन्होंने अध्ययन किया तब भी महात्मा नहीं थे, बैरिस्टर हो गए तब भी महात्मा नहीं थे, और जब तक अफ्रीका में पहुंचे तब भी महात्मा नहीं थे। कौन से ऐसे कारण थे जिनको उन्होंने महात्मा बना दिया और आज हम सब लोगों के लिए वो एक आदर्श हैं? आज एक और मैं एक व्यक्ति को याद करना चाहूँगा जो उन्हीं की परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है भारत के लिए, वो है लाल बहादुर शास्त्री जी,
1: जी।
0: उनका भी आज जन्मदिन, मैं उनको भी आज प्रणाम करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ, और आप सबके लिए, आप सबको भी उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूँ। मैं अपना फोकस
1: जी
0: महात्मा गांधी जी के जीवन पर ही रखना चाहूंगा।
1: बिल्कुल,
0: मैं जब बात कर रहा था कि जो एक एक कहावत है हिंदी में, होनहार बिरवान के होत चीखने पात
1: जी। बिल्कुल,
0: तो जब
1: पालने में ही माँ बाप पहचान लेते हैं।
0: बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। बहुत सही कहा, बहुत सही कहावत कही। तो महात्मा गांधी जी के जीवन में ऐसे अनेक अवसर उनके बाल्यकाल में दिखाई देते हैं जहां उनकी सत्य निष्ठा एकदम स्पष्ट हमारे सामने उभर कर के आती है।
1: सत्य का पाठ हर माता पिता पढ़ाता है। शुरुआत में अगर सोचें तो हर माता पिता का ये ध्येय होता है कि हमारा बच्चा सही मार्ग पर चले, सत्य का मार्ग अपनाए। पर कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि इतना ज्यादा उसको प्रोपेगेट कर पाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही आपने कही। मुझे आपकी बात से महाभारत का एक किस्सा याद आ रहा है
1: जी।
0: पांचों पांडव और कौरव
1: जी,
0: सब एक ही गुरु से पढ़ते थे।
1: बिल्कुल,
0: जब गुरु के पास वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक सबक दिया, एक एक, एक, एक पंक्ति याद करने को दी कि सदा सत्य बोलो।
1: बिल्कुल,
0: सत्यम वद, संस्कृत भाषा उस समय थी तो हम उसको हिंदी में अनुवाद करके बात करते हैं। सब लोगों ने आकर के अपना पाठ सुना दिया। कहते हैं युधिष्ठिर जो थे, तब तक वो धर्म युधिष्ठिर नहीं जाने, तो खाली युधिष्ठिर ही थे
1: जी।
0: उनसे पूछा गया कि सुनाइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो याद नहीं हुआ। सुनने को मिला, डांट पड़ी। अगले दिन फिर उनसे पूछा, वो याद हो गया जो पाठ बताया था? उनका जी नहीं हुआ, आपकी बार पिटाई हो गई। जब एक सप्ताह बीत गया और फिर जब पिट पिट के सब ठीक ठाक हो गए, पहले तो पिटाई होती है, आजकल तो अध्यापक जो हम पिटाई नहीं करते,
1: छू ही नहीं सकते,
0: तो हमने तो बड़ी खाई है मार।
1: बिल्कुल,
0: और वो मार इतनी अच्छी होती थी, वो ऐसी ही थी कि जैसे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट।
1: बिल्कुल,
0: वो अंदर से सहारा भी देते थे, अंदर बाहर से वो संभालते भी थे। तो ये बात थी उनकी। तो कहते हैं कि जब वो पांचवें छठे दिन सातवें दिन जब युधिष्ठिर जी आए, तो उनका मुझे सबक याद हो गया। कहा इसमें से कौन सी बात थी कि वो पाठ याद नहीं हुआ? उन्होंने कहा जी शब्द तो याद थे, लेकिन मैं जीवन में नहीं, आचरण में नहीं उतार पाया था, मैं सत्य को व्यवहार में नहीं ला पाया था। यही बात मुझे महात्मा गांधी के जीवन के बचपन के उस काल में दिखाई देती है। एक अद्भुत घटना है, बहुत छोटी सी घटना है। जब महात्मा गांधी मेरे ख्याल से लगभग रहे होंगे 12-13 वर्ष के, उस समय की उनके जीवन की एक घटना है कि वो जब पांचवीं छठी क्लास में थे, पांचवीं चौथी क्लास में थे, तो हमारे यहाँ स्कूलों में पहले एक इंस्पेक्टर आया करते थे, तो वहाँ भी उनके समय में भी एक इंस्पेक्टर वहाँ स्कूल का दौरा करने के लिए आए, और जब इंस्पेक्टर आता है तो डायरेक्ट सीधा क्लास में जाता है, कक्षा में जा करके वो बच्चों से सीधे सीधे प्रश्न पूछता है। तो उन्होंने सब बच्चों को पांच सवाल दिए, पांच प्रश्न दिए, सब ने अपने लिखे, अध्यापक पीछे खड़े हुए।

0: थे, तो गांधी जी जो उस समय गांधी नहीं थे वो तो मोहन थे,
1: मोहन
0: तो
1: थे।
0: मोहन ने अपना लिखना शुरू किया, चार उत्तर उन्होंने ठीक लिखे और पांचवा उत्तर उनका गलत था। जो अध्यापक थे गुरुजी थे उन्होंने उन पर दृष्टि डाली, सहसा उनकी दृष्टि मिली तो उन्होंने इशारा किया कि अपने सामने वाले का देख करके इसको ठीक कर लो, पांच नंबर उसको करेक्ट करो, समझ गए वो। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने फिर दोबारा इशारा किया, तीन बार इशारा किया, अनेक बार इशारा करने के बाद समझने के बाद भी उन्होंने उस गलत सवाल को ठीक नहीं किया। सबके प्रश्न जांचे गए, सबके प्रश्नों के उत्तर ठीक थे। एक ही विद्यार्थी था जिसका पांच में से चार अंक, चार ठीक एक
1: गलत
0: हो गई बात। अध्यापक ने जब वो चले गए इंस्पेक्टर तो बहुत डांटा, शायद मार भी पड़ी होगी, उसका उल्लेख तो महात्मा जी ने, गांधी जी ने नहीं किया, अपनी आत्मकथा में वो कहते हैं कि मुझे उसके लिए बहुत सुनना पड़ा, वो मेरे पे डांट पड़ी। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मेरे अध्यापक मुझे ये कह रहे थे कि आप सामने वाले का देख लो, ये तो असत्याचरण था, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा और मुझे अंदर से इस बात की पीड़ा हुई कि क्या गुरुजन भी ऐसी बात कहें और हमें अपने गुरुजनों का कहना नहीं मानना चाहिए। तो उस दिन मैंने ये निश्चय किया कि मैं गलत बात नहीं मानूंगा, और उसका परिणाम उसी सत्य को उन्होंने सत्य नहीं रखा, उन्होंने अस्त्र बना दिया, और ऐसा मारक अस्त्र बना दिया कि जिसके राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था उनको छोड़ करके जाना पड़ा। ये वो बीज था जो वहाँ पर दिखाई देता, और ये बीज कहाँ से आया? महात्मा गांधी जी लिखते हैं कि बचपन में उन्होंने हरिश्चंद्र का ड्रामा देखा, मयूरध्वज का ड्रामा देखा, दोनों ही ऐसे ड्रामा है, ऐसे नाटक हैं जो हमारे समाज में, मेरे बाल्यकाल तक भी हमारे समाज में नाटक मंडलियां आती जिनको हम सांग कहते थे, सांग एक पद्धति थी
1: जी,
0: तो उसके माध्यम से हमने इन सबको देखा है
1: जी।
0: और बालमन पर जो इन बातों का असर पड़ता है वो बड़ा अद्भुत होता है।
1: बिल्कुल,
0: हरिश्चंद्र की कथा से आप सब परिचित होंगे कि उन्होंने अपने सत्य की रक्षा के लिए अपने राज्य को छोड़ दिया,
1: राज्य को छोड़,
0: शमशान में जाकर के उन्होंने उनको कार्य करना पड़ा, पत्नी से अलग हो गए। ये सारी घटनाएं हैं, पुत्र जो है वो मृत्युशैया पर पड़े हैं लेकिन अपने पुत्र के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया,
1: बिल्कुल
0: केवल अपने वचन की रक्षा के लिए। तो ये जो बीज थे ये महात्मा गांधी में उस समय से हमें दिखाई पड़ते हैं। इस बीज को पल्लवित होने का कैसे अवसर मिला इसकी हम बात आगे करेंगे, लेकिन भारतीय संस्कारों में, भारतीय संस्कृति में ये सारे के सारे तत्व पहले से विद्यमान थे, परंपरा में थे, बिल्कुल हैं। लेकिन आप देखिए अहिंसा का जो पाठ है वो कहाँ से हमें मिलता है? सबसे पहले योग दर्शन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पांचों तत्व हमें वहां यम के रूप में दिखाई देते।
1: बिल्कुल,
0: महर्षि पतंजलि कहते हैं, आगे हम बढ़ते हैं,
1: पतंजलि शास्त्र,
0: बिल्कुल पतंजलि के योग दर्शन में है, योग दर्शन का सूत्र है ये
1: जी।
0: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, ये पांच यम है जो हमारे योग के आठ रास्ते हैं, अष्टांग, आठ अंग हैं, उनमें एक यम है और उस यम के पांच घटक ये हैं
1: जी।
0: ये बात करते हैं, मैं बात कर रहा था कि उसी तत्व को जिस और व्यक्ति ने बहुत प्रोमिनेंट किया, बहुत उस पर चर्चा की, बहुत लोगों तक पहुंचाया, लोग उनके अनुयायी भी बने, वो थे वर्धमान महावीर
1: जी,
0: जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। उन्होंने भी अहिंसा को उन्होंने इस कदर पहुंचाया कि उन्होंने तो मुंह पर कपड़ा रखना भी बांधना शुरू कर दिया ताकि हमारी सांस की गर्मी से जो जीवाणु हैं वायुमंडल में उनको भी कोई कष्ट ना,
1: सुरक्षित रहें,
0: वो सुरक्षित रहें।
1: बिल्कुल,
0: अहिंसा का ये स्वरूप भी हमने देखा। सत्य का स्वरूप महात्मा बुद्ध से आप समझिए
1: जी,
0: जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया और अंगुलीमाल जैसा एक दुर्दांत डाकू उनके भक्त हो गए। ये हमारे यहाँ तब तो थे, लेकिन उसके बाद की परंपरा में देखें तो एक ही व्यक्ति महात्मा बना, दूसरा महात्मा पैदा नहीं हुआ। कारण यही था कि उन्होंने उसको जीवन में केवल कहानी नहीं समझा, केवल
1: अपने जीवन में
0: धारण किया। ये उनके जीवन का बहुत बड़ा एक पक्ष है
1: जी।
0: मैं इसमें थोड़ी सी बात और आगे जोड़ना चाहूंगा कि जब महात्मा गांधी जी इंग्लैंड से पढ़ करके आए, बैरिस्टर होकर आए, उन्होंने वकालत शुरू की, स्वयं लिखते हैं कि मैं न्यायालय में एक शब्द भी नहीं बोल पाया, जिनके मुंह में आवाज नहीं थी, ये देखने वाली बात है। और जब इंग्लैंड में रहे तो कैसे रहे, कहानी आप सबको मालूम होगी कि उनकी माँ ने कहा था कि बेटा मांस नहीं खाना, असत्य भाषण नहीं करना, शराब नहीं पीना, नशा नहीं करना, ये सारी शिक्षाएं दे करके भेजे, और विषम परिस्थितियों में रह करके, क्योंकि वहाँ तो सब मांसाहारी ज़्यादा अधिकतर लोग
1: जी,
0: उस वहाँ पर शराब भी, क्योंकि ठंडा प्रदेश है तो शराब तो एक वहाँ की आवश्यकता भी महसूस की जाती है
1: जी,
0: उन सब से बच करके वो अपना अध्ययन पूरा

0: करके जब आए और उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में पदार्पण किया तो उनके मुंह में जबान नहीं थी। आप ये देखिए, वो बिल्कुल गूंगे थे, बोल नहीं पाए, असफल हो गए यहाँ। और उसी असफलता के कारण वो साउथ अफ्रीका गए
1: जी,
0: उसी क्रम में गए। वो कोई आंदोलन के लिए नहीं गए थे। जब वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ लोगों की दुर्दशा देखी। वहाँ
1: स्थितियाँ गंभीर थी,
0: स्थितियाँ बहुत गंभीर थी, क्योंकि अंग्रेज जो पूरे विश्व पर एक तरह से छा गए थे
1: जी,
0: वहाँ के लोगों पर वो अत्याचार कर रहे थे। और कारण एक ही था, रंगभेद
1: जी।
0: उनकी दृष्टि में काले लोगों को जीने का हक ही नहीं था, जो कुछ है वो गोरों के लिए। काले तो उनकी भोग की वस्तु हैं, उनको मारो, उनको पीटो, उनसे कार्य कराओ और अपने राष्ट्र की उन्नति समृद्धि के लिए उनको यूज करो, यही उनका वो था। जब उन्होंने इस स्थिति को देखा तो उनसे रहा नहीं गया। और एक उनके जीवन में, अपने जीवन में घटना घटी, क्योंकि समृद्ध घर से थे, वहां जाके काम भी उनको थोड़ा मिलना प्रारंभ हो गया, बोलने भी शुरू हो गए और सब अच्छा चल रहा था। एक दिन वो ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन में जैसे प्लेटफॉर्म पर आए, उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और फर्स्ट क्लास के डब्बे में चढ़ के, स्वाभाविक बात है आज हम और आप यात्रा करते हैं, जैसे ही वो उसमें एंटर किए तो एक गोरे अंग्रेज ने देखा कि ये तो काला व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि तुम बाहर जाओ, तुम इसमें नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा मेरे पास टिकट है फर्स्ट क्लास का। उनका सो व्हाट, टिकट है तो क्या हुआ, तुम इसमें बैठने का अधिकारी ही नहीं हो। खैर उन्होंने उसका विरोध किया, उन्होंने वहां पर मार भी खाई, लेकिन वो दिन था कि उन्होंने एक निश्चय किया कि मैं किसी भी अत्याचार के सामने झुकूंगा नहीं, और दूसरी बात जो बड़ी थी कि मैं विरोध तो करूंगा लेकिन मेरा विरोध अहिंसक होगा। यहीं से क्योंकि मेरा आग्रह है सत्य के प्रति, जो सत्य है उसका पालन होना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। वो कैसे होगी, वो कमजोर से नहीं हो सकती, और हम कमजोर हैं। किसके सामने, जो इतना माइट, इतना शक्तिशाली राज्य है जिसका सूर्य अस्त नहीं होता कभी
1: जी,
0: उसके सामने मैं हिंसा के सहारे तो नहीं खड़ा हो सकता। तो कोई एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा साधन, एक ऐसा शस्त्र मेरे पास होना चाहिए जो उनके सामने टिक पाए, और वो एक ही था, सत्य और अहिंसा। वहां से उन्होंने इस प्रयोग को शुरू किया
1: साउथ अफ्रीका में।
0: चलिए
1: एक गीत के साथ कार्यक्रम को सजाते हैं, फिर चर्चा जारी रहेगी।

0: संगीत, नृत्य और परंपरा।
1: श्रोताओं, हमारी चर्चा जारी रहेगी। जो अभी अभी जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि आज हमारे साथ डॉक्टर सत्यपाल सिंह, आईसीसीआर चेयर, संस्कृत महात्मा गांधी संस्थान में कार्यरत हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग है कि आज हम उनके साथ आप तक महात्मा गांधी जी पर चर्चा पहुंचा रहे हैं, हमारी बातचीत हो रही है और अभी सत्य पर चर्चा करके हम अहिंसा की ओर बढ़े हैं। तो अहिंसा और सत्याग्रह की बात करें तो गांधी जी का ही नाम हमारे सामने आता है।
2: जी बिल्कुल,
1: जी बिल्कुल। चलिए अब आप हमारी चर्चा को जारी रखें। श्रोताओं, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी क्योंकि ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है कि सत्यपाल सिंह जी को हम रेडियो पर सुन सकें।
2: धन्यवाद। पुनः एक बार मॉरिशस वासियों को जो अभी जुड़ रहे हैं सबको अभिनंदन, सबको वंदन। और हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं उसी बात से जहाँ हमने उसको छोड़ा था कि महात्मा गांधी जी ने जिस सत्य को पकड़ा। देखिए, सत्य के लिए हमारे यहाँ शास्त्र भरे हुए हैं।
1: बिल्कुल,
2: उपनिषद में एक पंक्ति आती है, आपने देखा भी होगा, वो हमारे एम्बलम जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसका हिस्सा भी है, सत्यमेव जयते
1: जयते।
2: ये एक अंश है, इसका आधा हिस्सा छोड़ दिया गया। वो जानते हो क्या था? नानरितम अनरित, जो झूठ है वो नहीं जीतता।
1: जी,
2: सत्य ही जीतता है, इसके साथ झूठ कभी जीतता ही नहीं। ये बड़ी बात है
1: जी।
2: तो ये जो
1: छूट गया है,
2: जो छूट गया था, उसको महात्मा गांधी ने देखा, उसको जाना और ये सुदृढ़ विश्वास था कि कभी भी असत्य जीत नहीं सकता। जीतेगा तो केवल
1: सत्य ही
2: जीतेगा।
1: बिल्कुल,
2: बिल्कुल ऐसी स्थिति। आपको लगता है कभी कभी कि असत्य बोलने वाले लोग जीत जाते हैं, झूठे लोग आगे बढ़ जाते हैं, छल से कपट से लोग आगे बढ़ जाते हैं?
1: बिल्कुल,
2: ऐसा बहुत होता है, ऐसा हम देखते हैं।
1: आज समाज में हो रहा है,
2: समाज में हो रहा है। लेकिन मैं आपको
1: प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे
2: बिल्कुल,
1: सामने।
2: बिल्कुल, मैं महाभारत का एक श्लोक आपको बताता हूँ।
1: जी,
2: बहुत छोटा सा, बड़ा प्यारा श्लोक है, इस बात को बताता है कि ऐसा है। उन्होंने कहा कि अधर्मेण इधते तावत, व्यक्ति अधर्म से बढ़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं। आपके पास थोड़ा सा पैसा, आपने बेईमानी की, आपके पास ज्यादा आ गया।
1: जी,
2: ततो भद्राणी पश्यति, उससे ऐशो असरत की जिंदगी जीता है।
1: बिल्कुल,
2: खूब कल्याण देखता है, बड़ी महल गाड़ियां सब कुछ मिल जाती है। ततो सपत्नान जयती, और अपने विरोधियों के ऊपर भी वो विजय प्राप्त कर लेता है।
1: हावी हो
2: ये भी देखता है, ये भी दिखाई देता है। लेकिन अंतिम जो परिणति है वो बड़ी अद्भुत है। कहते हैं समूलंतु विनश्यति, अंतिम परिणाम जो है वो मूल जड़ सहित नष्ट होता है, उसका बीज भी नहीं बचता। ये बात हमारा शास्त्र कहता है, ये बात, यही बात आज इस सत्याग्रह, जिस शास्त्र को, जिस सत्य को मैं कहूंगा कि उन्होंने शास्त्र बना दिया, जिसको शस्त्र बनाया, उस शस्त्र ने ऐसा विनाश किया कि आज अंग्रेजों की स्थिति क्या है आप देख लीजिएगा।
1: बिल्कुल,
2: वो अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ हैं।
1: जी,
2: वो टूट रहे हैं।
1: जी,
2: बिखरने के कगार पे हैं।
1: बिल्कुल,
2: उसके भी टुकड़े टुकड़े होने के कगार पे आप यदि बारीकी से देखेंगे वहां जाकर के, तो एथनिक क्लैशेज वहां है, स्थानीय जो ग्रुप्स हैं, स्थानीय जो लोग हैं उनके साथ में बड़ा उनका झगड़ा है, जो आगंतुक है उनका अपना है। तो ये क्यों हुआ?

0: चलिए कि असत्य कब तक बढ़ेगा आगे। देखिए सूर्य और बादल वही संबंध है, सूर्य को बादल ढक सकता है थोड़ी देर के लिए,
1: थोड़ी देर के लिए,
0: हमेशा के लिए उसके जो प्रकाश पुंज है उसका जो तेज है उसके सामने टिक नहीं सकता,
1: नहीं
0: थोड़ी
1: सकता
0: देर में छिन्न भिन्न हो जाता है। सत्य वो सूर्य का तेज है जो किसी भी असत्य के उस घटा टोप को थोड़ी देर में छिन्न भिन्न कर देता है।
1: बिल्कुल,
0: ये जो सुदृढ़ विश्वास था ये महात्मा गांधी का, ये बड़ा अद्भुत था। यही वो स्थिति थी, यही वो शिक्षा थी, यही वो बीज थे जो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में पल्लवित और पुष्पित होने शुरू हुए। उन्होंने केवल अपना ये यहां तक सीमित नहीं रखा कि मेरे साथ कोई गलत होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा,
1: किसी अन्य के साथ भी हो,
0: यदि किसी के साथ भी कहीं गलत होगा, कोई बुरा होगा, मैं उसका विरोध करूंगा, हिंसा होगी तो उसका भी विरोध करूंगा, लेकिन हिंसा का हिंसा से विरोध नहीं करूंगा, हिंसा का अहिंसा से विरोध करूंगा। मनु महाराज का एक वचन है, नहीं वैरेण वैराणी साम्यतीह कदाचन, वैर से शत्रुता से शत्रुता कभी समाप्त नहीं होती। आपने मेरे एक परिवार के सदस्य को का मर्डर किया, मैं आपके दो का कर दूंगा, फिर आप मेरे चार का कर देंगे, दोनों पक्ष समूल नष्ट हो जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: वैर कभी वैर से नष्ट नहीं होता, वैर को प्रेम से नष्ट किया जाए, और वही प्रेम है महात्मा गांधी की सत्य में और अहिंसा में जिसकी बात करते हैं। तो जो 1906 में वो सत्याग्रह का जो प्रयोग था, सत्याग्रह कोई ऐसा कारण नहीं था, कुछ वस्तु नहीं थी, सत्य के प्रति आग्रह, बस हमें सत्य का ही पालन करना है, व्यवहार में भी सत्य, वाणी में भी सत्य, दृष्टि में भी सत्य, विचार में भी सत्य। सत्य में एक रूपता होती है, मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, व्यवहार में कुछ और। आपको बहुत सारे राजनेता दिखाई दे जाएंगे,
1: झूठ बोलने पर कितना सोचना पड़ता है, और सत्य बिना सोचे आप बोल जाते हैं।
0: वो एक और भी बात ना, एक बार आपने झूठ बोला
1: जी,
0: उसको याद रखने में जोर पड़ेगा,
1: बिल्कुल,
0: फिर दोबारा आप बोलेंगे तो सोचेंगे मैंने उस बारे में तब क्या
1: कुछ
0: कहा
1: ना कुछ तो
0: तब मैंने क्या कहा था
1: जी,
0: और फिर भी आप उसकी रख, एक झूठ को सत्य बनाने के लिए हजार झूठ बोलने पड़ेंगे, झूठ फिर भी झूठ रहेगा,
1: झूठ ही रहेगा।
0: इसलिए सबसे सरल मार्ग है
1: सत्य,
0: एक बार थोड़ा सा आपको खराब लग सकता है, आपको प्रतिकूलता महसूस हो सकती है, यही बात देखी सत्य की, यही चमक सत्य की देखी महात्मा गांधी जी ने, और उस प्रयोग को सत्य के प्रति उस आग्रह को उन्होंने शुरू किया दक्षिण अफ्रीका में, काले लोगों के विरुद्ध जो उनके अत्याचार थे उनके लिए वो लड़े, और फिर जब उन्होंने देखा कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम अपने पीक पर जा रहा है लेकिन जनमानस नहीं जुड़ रहा था, सबसे बड़ी बात ये थी
1: जी।
0: तो गांधी जी का योगदान, देखिए लोग कहते हैं गांधी जी ने देश को आजाद करा दिया, मैं भी कहता हूं, लेकिन अकेले गांधी नहीं थे,
1: बिल्कुल
0: हजारों नहीं लाखों लोग थे, अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में हम नाम तक नहीं जानते, खुदीराम बोस, सूर्य सेन, कितने
1: सुभाष चंद्र बोस
0: एक नाम है, उनके सेना के जो सैनिक थे आजाद हिंद फौज के, मेरे गांव में कुछ सैनिक थे
1: जी
0: जिन्होंने अपना जीवन वहां लगाया, वो उनको हम याद भी नहीं करते, हम जानते भी नहीं, लेकिन ये आजादी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी, हम चंद लोगों को जानते हैं, काकोरी कांड के 5-7-10 लोगों को जानते हैं, उसके पीछे दुर्गा भाभी का नाम तो आपने सुना ही नहीं होगा,
1: बिल्कुल,
0: जिन्होंने अपने पैरों के साथ में बंदूक और हथियार बांध करके और किसी दूसरे की पत्नी का वेश धारण करके और निकाल दिया था अंग्रेजों की कैद से, ये बच करके निकलना, ये सारे काम हमारी महिलाओं ने, माताओं ने, बहनों ने, वो बलिदान दिया जिसको हम याद करते हैं,
1: बिल्कुल
0: उनका भी उतना ही योगदान है जितना महात्मा जी का। महात्मा गांधी के योगदान को मैं इसलिए सबसे अधिक सबसे ऊपर समझता हूँ कि उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो जनमानस को उस यात्रा में जोड़ने का काम किया। बाल गंगाधर तिलक यहाँ थे
1: 1930 में उनकी डांडी यात्रा
0: जी,
1: जिससे मॉरिशस का
0: संबंध है,
1: संबंध है 12 मार्च,
0: बिल्कुल। वो कारण क्या था, वो कारण ये था, देखिए फिर वही बात थी कि हमारे यहाँ चंपारण में जो नील की खेती उगाने के लिए अंग्रेजों ने फोर्स किया, मजबूर किया, और वो सारा नील वहां से ले जाते थे, कपास यहां से ले जाते थे, फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट ला करके हमें बेचते थे, कौड़ियों के भाव ले जाना, अपने पसंद की खेती करवाना, लोग गरीब से गरीब होते गए, गरीब तर होते गए, ये परिस्थिति थी। तो उससे बचा कैसे जाए, उन्होंने वहाँ पर उस आंदोलन को शुरू किया, और उस आंदोलन की शुरुआत जो थी वो ऐसी थी कि फिर वो आंदोलन बढ़ता चला,
1: बढ़ता
0: दांडी यात्रा की आप बात करते हैं, जब चले तो 60-70 लोग थे,
1: बिल्कुल,
0: और जब वहाँ पहुँचे दांडी में तो वहाँ पर पहुँचते 50,000 लोगों का हुजूम था, इतनी बड़ी संख्या में लोग थे, और फिर उन्होंने वहां पर नमक बनाया। नमक जैसी चीज का क्या मूल्य है?
1: मूल्य है,
0: लेकिन उसका मूल्य ये था कि हम शासक की

0: हर गलत बात का विरोध करते हैं। उस समय लाठियां पड़ी लोगों पर,
1: बिल्कुल
0: रोका गया।
1: खादी पहनने के पीछे भी तो यही था,
0: वही उनका उद्देश्य था। देखिए, हम सूट बूट टाई लगा करके लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, लोग उसकी बात को सुनता जो मेरे जैसा है।
1: बिल्कुल।
0: तो उन्होंने कहा कि मेरे देश के लोगों के तन पर कपड़े पूरे नहीं है, मैं कैसे पूरे कपड़े पहन सकता हूँ। तो उन्होंने केवल एक धोती रखना शुरू कर दिया।
1: खादी पहनना, चरखा चलाना, सब लोगों को जोड़ने का एक,
0: खादी और चरखे के पीछे बहुत बड़ी एक योजना थी जिसको हम लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। समझा, हमारी भारत सरकार ने अभी मोदी जी ने एक नारा दिया है, क्या, लोकल के लिए वोकल।
1: जी,
0: ये बहुत बड़ी बात है। मतलब क्या, जो हमारी चीज यहाँ की है हम उसके लिए जुड़े। उन्होंने कहा स्वावलंबी भारत, ये क्या है,
1: गांधी जी
0: के विचारों को आज की व्यवस्था के अनुरूप ढालना। आज हमारे बीच में उसको स्वावलंबन की बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो हम
1: स्वावलंबी कब बनेंगे?
0: तब बनेंगे जब हमारे हाथ में काम होगा। उस समय लोगों के हाथ में क्या काम था, हमें कपड़ा बाहर का चाहिए, पैसे देंगे, भाई पैसे कहाँ से देंगे, जमीन बेचेंगे। नहीं, ऐसा करो जी, अपने घर में, अपने खेत में कपास होता है, सूत के धागे बनाओ, कातो, चरखा चलाओ, कपड़े बनाओ और अपना प्रयोग
1: अपना पहनो,
0: अपना पहनो। हमारे यहाँ पूरी की पूरी व्यवस्था ग्राम अपने आप में,
1: ग्राम उद्योग बड़ा
0: नहीं, ग्राम जो थे वो अपने आप में स्वावलंबी होते थे।
1: बिल्कुल।
0: बर्तन चाहिए, कुंभकार कुम्हार दे देता था, आपको बाल कटाना है तो नापीत आपके घर में काम करता था, चमड़े के लिए जूते चाहिए तो गांव में चर्मकार जो था, हमारे जो पशु मर जाते थे उनकी खाल उतारते थे, जूते चमड़े के बना देते थे।
1: बिल्कुल।
0: स्वर्णकार गांव में होता था, पंडित गांव में होता था, हमें कुछ चाहिए नहीं, और अनाज किसान पैदा करता जो सबको बांटता था। मैंने ये स्थिति देखी कि जब मेरे घर में मैं छोटा बच्चा था तो खेती होती थी, मान लीजिए 400 क्विंटल अनाज हुआ, 200 क्विंटल अनाज हुआ, तो सबसे पहला जो अन्न जाता था वो मंदिर में, उसके बाद कुंभकार आता था जो सारे पूरे साल हमारी जरूरत के बर्तन बना के, घड़े बना के देता था, विवाह में सकोरे और होते थे पानी के
1: जी, कुल्लड़,
0: हाँ कुल्लड़, तो वो देते थे, तो उनका हिस्सा पहले जाता था। जो नाई पूरे वर्ष हमारे बाल काटते थे, बच्चों के और बड़ों के शेविंग करते थे, उनका जाता था विवाह में, सब घरों में निमंत्रण देने का काम उनका था
1: जी,
0: वो सारा करते थे। ब्राह्मण जो हमारे यहाँ पूजा पाठ कराते थे, पूजा के समय कुछ नहीं दिया उसको, जो थोड़ा बहुत हुआ तो दिया, लेकिन जब अन्न आया तो भर भर के बोरियां चली गई।
1: बिल्कुल।
0: स्वावलंबी भारत था। जो महात्मा गांधी ने जो चरखा दिया, वो चरखा चरखा नहीं था, वो आजादी का मूल मंत्र था। ये चीज जो हमें दी, उसको हमने थोड़े से समय तक, क्योंकि हम नए नए आजाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, हम उस गति से उसको नहीं संभाल पाए जिस गति से हमें संभालना चाहिए। आज भारत सरकार ने उसको स्वावलंबी भारत का नारा दे करके, वो लोकल के लिए वोकल का नारा दे करके उसको पुनः जागृत किया है, हमें स्वावलंबी बनाने का काम किया है। ये हमारे उस
1: गांधी महामनुष्य से स्वच्छ भारत है।
0: हाँ बिल्कुल, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता का अभियान, देखिए कितना बड़ा अभियान है
1: जी। बिल्कुल।
0: लाल किले की प्राचीर से एक प्रधानमंत्री कहता है घरों में शौचालय होने चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: ये सामान्य बात नहीं है
1: जी।
0: मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में मेरे वाइस चांसलर को झाड़ू लेकर के सड़क पर झाड़ू लगाते देखा और हम उनके साथ हैं
1: जी,
0: जबकि हमारे घरों की परिवारों की स्थिति तो ये थी, मैं भारत की बात करता हूँ, यहाँ की वजह नहीं मालूम, कि परिवार में यदि झाड़ू लगाने वाला नहीं आया तो गृहिणी झाड़ू लगाएगी, जो गृहपति है वो हाथ नहीं छूते। अजी बर्तन को हाथ नहीं लगा था धोने के लिए, मांजने के लिए, झाड़ू तो बहुत दूर की बात है
1: जी।
0: लेकिन आज उल्टा हो गया है। आज यदि घर में कोई बुजुर्ग है तो कहता है भाई तू बहू तू काम कर ले, मैं झाड़ू लगा देता हूँ, सफाई मैं कर देता हूँ।
1: इसमें कोविड काल का भी बहुत बड़ा
0: बहुत कोविड तो बाद में आया, लेकिन पहले ये सारी
1: स्थिति थी, पर कोविड काल में देखने को प्रत्यक्ष रूप से
0: बिल्कुल
1: मिला। हाँ? क्योंकि उसमें सोशल मीडिया आ गया,
0: बिल्कुल
1: उसमें चीजें बदलती गई, दिखने लग पड़ी।
0: बिल्कुल। हमारा हर मंत्री स्वच्छता अभियान में झाड़ू लेकर के, चाहे सिंबॉलिक था और चाहे हृदय से था, लेकिन वो खड़ा हुआ था।
1: वो यहाँ पर भी है।
0: हाँ? वो यहाँ भी है। एग्जैक्टली।
1: बिल्कुल।
0: इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। आपको मालूम है कि शौचालय में अपने शौचालय को साफ करने का उन्होंने खुद जिम्मा लिया।
1: बिल्कुल।
0: कि मेरे शौच को, मेरे मलमूत्र को, जिनको हम मेहतर कहते हैं, जिनको हम बंगी कहते हैं, जो हमारे सफाई का काम करते हैं, वो क्यों करें।
1: बिल्कुल।
0: मैं स्वयं मुझे उस सफाई को करना
1: पड़ेगा।
0: उन्होंने अपनी पत्नी को, कस्तूरबा जी को भी उन्होंने ये काम करने के लिए कहा, वो नहीं मानी तो उसके साथ में झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, लेकिन उनको फोर्स किया। ये जो उनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था, उनके जो प्रयोग हैं, मेरे शक्ति के प्रयोग अद्भुत हैं
1: जी,
0: अहिंसा के उनके प्रयोग अद्भुत हैं, ब्रह्मचर्य के उनके प्रयोग अद्भुत हैं। तो उन्होंने जो भी शिक्षाएं थी भारतीय संस्कृति की उनको किताबों में नहीं रहने दिया, उन्होंने अलमीरा से निकाल करके लोगों के साथ में चिपका दिया कि भैया इनका उपयोग करो, ये बहुत उपयोगी हैं, जीवन सुखी बनाना है तो सुख का यही मार्ग है। तो जिस हम अहिंसा की और सत्याग्रह की बात करते हैं, वो सत्याग्रह बड़ा अद्भुत था। आपको शायद हम भारत जब आज़ाद हुआ उससे कुछ पहले की घटना बताता हूँ, शायद 46 की बात है, नोवाखली बंगाल में है
1: जी,
0: वहाँ पर इतना हिंदू मुस्लिम का विरोध हुआ, आपस में मारकाट मच गई। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने कोशिश की कि वो उस दंगे को रोकें, 50,000 के लगभग उन्होंने पुलिस भेजी, नहीं रोक पाए। महात्मा गांधी यहाँ से गए, वो हार्ड मांस का पुतला जिसके शरीर पर मांस नहीं था, हड्डियां बची थी, वो जाकर के कहता है कि या तो इस झगड़े को बंद कर दो, नहीं मैं अपने प्राण दे दूंगा, और वो अनशन पर बैठ गए। उसके बाद 24 घंटे के अंदर झगड़ा समाप्त
1: हो गया।
0: ये उस व्यक्ति के जीवन का प्रभाव था, व्यक्ति नहीं बोलता था, उनका जीवन बोलता था। ये अद्भुत बात, ये सत्याग्रह था, सत्य के प्रति आग्रह। में एक और घटना बताता, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस की बात है, ये हो रही थी। तो उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में एक प्रस्ताव आया, बड़ा अजीब सा प्रस्ताव था, भारत के समाज को बांटने का प्रस्ताव था, और उसमें जाने अनजाने में हमारे देश के भी कुछ राजनेता, कुछ बुद्धिजीवी शामिल हो गए थे। कहा यह गया कि जो हमारे यहाँ जिनको आप हरिजन कहते हैं, हरिजन नाम तो हमारे यहाँ गांधी जी का ही दिया हुआ है,
1: बिल्कुल,
0: हरिजन का मतलब प्रभु के लोग,
1: प्रभु के लोग,
0: तो हम सब हरिजन ही हैं
1: जी।
0: लेकिन जिसको हम दलित कहते हैं, जिसको अछूत कहते हैं, जिनको निम्न जाति का मानते हैं, वर्ग तो हमारे यहाँ था ही नहीं, वर्ण था, वर्ण व्यवस्था थी, तो उनको अलग वोट का राइट होगा, उनके अलग इलेक्टोरल बॉडी होगी, उनका अलग चुनाव होगा, उनकी अलग सारी व्यवस्थाएं होंगी। गांधी जी ने कहा कि आप कर क्या रहे हो, आप फूट डालो राज करो की बात करोगे, आप भारत को बांट नहीं सकते, और मैं ये विभाजन होने नहीं दूंगा। कल क्या करोगे, कहा कि मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। आप जानते हैं उसके बाद गांधी जी आए, उनको गिरफ्तार किया गया, और उसको लागू करने के लिए प्रस्ताव लाया गया असेंबली में। उस समय गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो अंग्रेज उस लेखक लिखता है कि हमने ऐसे राजनेता तो बहुत देखे हैं जो बहुत लंबी चौड़ी घोषणाएं करें, लेकिन ऐसा मैंने पहला ही व्यक्ति देखा है जो कह के जा रहा है वो कर रहा है, जिसने कहा मैं जीवन अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा, और वो आमरण अनशन पर बैठ जाता है। अंग्रेजों को मजबूर होकर के उसको वापस लेना पड़ा। ये थी उनके सत्य की ताकत, सत्य की नहीं, सत्य के व्यवहार की ताकत थी।
1: जो उन्होंने स्वयं में उतारा।
0: और यही कारण था कि उन सुभाष चंद्र बोस जो इतने उग्र थे, वो भी उनके अनुयायी थे, ऐसा नहीं है कि उनसे कहीं अलग थे, उसी कांग्रेस का हिस्सा थे
1: जी।
0: पटेल उसी का हिस्सा थे,
1: बिल्कुल,
0: नेहरू जी उसी का हिस्सा थे। तो कितने ही लोग ऐसे थे जो उनके अनुयायी हुए, और उसका एक ही सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ योगदान, बहुत सारे योगदान है, गांधी जी कहाँ तक याद करेंगे, लेकिन एक योगदान है कि उन्होंने देखा कि हमारे लिए कोई लड़ रहा है हमारे जैसा है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, वो अंग्रेजों की जो इतनी बड़ी सरकार है उससे लड़ रहा है, हमें इसके साथ खड़ा होना चाहिए। लोगों ने जब बहिष्कार की बात आई, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की बात आई, अपने घरों से निकाल करके सारे कपड़े तक जला दिए, ये उनका था, और केवल खादी पहनना प्रारंभ किया। तो ये सत्य के प्रति आग्रह केवल आंदोलन नहीं था, उनका जीवन था, और उस जीवन को उन्होंने जिया। उसका देखिए, कभी भी किसी व्यक्ति को आप देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सब कर सकते हैं, वाणी हमारे पास भी है, बहुत ज्ञान भी बांट सकते हैं, लेकिन प्रभाव उसका होता है जिसका जीवन बोलता है। आज मोदी जी को लोग क्यों स्वीकार करते हैं, कुछ है ही नहीं, केवल उनका जीवन है, समर्पित है राष्ट्र के लिए, तो राष्ट्र की भावना आज भारत में उफान मारती है,
1: बिल्कुल
0: ये है। तो जब व्यक्ति का जीवन बोलता है तो वाणी बेशक बंद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात महात्मा गांधी की थी, जिन्होंने सत्य के प्रति आग्रह को एक शस्त्र के रूप में तैयार किया, और वो शस्त्र दो तरह से काम करता, दुधारी था, पहला कि अपने लोगों को उसमें जोड़ रहा था, दूसरा उस अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होने की बात करता था, और उसके साथ में उसने अहिंसा का जो शस्त्र जोड़ा कि हिंसक नहीं होना, कमजोर आदमी उस शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता,
1: बिल्कुल,
0: वो बूम रेंज करेगा, वो वापस आकर के उसी को मारेगा। उनका नहीं, हम लाठियां खाएंगे, हम जेल जाएंगे, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने भी देखा कि ये व्यक्ति विरोध तो करता है लेकिन हिंसक
1: नहीं है।

0: नहीं है, और जब लोगों का इतना प्रेशर आया, दबाव आया, तो उनको छोड़ के जाना पड़ा।
1: आज हम देखते हैं कि गांधी जी ने जो सत्य का, सत्याग्रह का, अहिंसा का मार्ग दिया, उस पर एक संस्कृति और एक परंपरा के साथ साथ हमारा समाज सुदृढ़ हुआ, जड़ें सशक्त हुई, इस पर आपका क्या कहना है?
0: देखिए, ये वस्तुतः गांधी जी के जीवन पर हम दृष्टिपात करें तो उनका जीवन भारतीय संस्कृति का जीता जागता एक नमूना है।
1: नमूना है,
0: हम कहें कि वो, जैसे हम कहते हैं ना कि धर्म साक्षात शरीरधारी होकर के आ गया है, ऐसा ही भारतीय संस्कृति को कहीं देखना है तो गांधी जी को देख लो। उनके जीवन में त्याग इतना बड़ा था, भारत के बहुत बड़े उद्योगपति हुए बिरला जी,
1: जी
0: वो उनके पास आते जाते थे, संपत्ति अकूत थी, पहले तीन ही नाम होते थे, टाटा बिरला और डालमिया, और तीसरा डालमिया
1: जी,
0: तो हमने यही नाम सुने,
1: हमने बचपन में उदाहरण, हाँ। जब माता पिता कुछ कहते, टाटा बिरला नहीं है बेटिया,
0: हाँ, बेटा हम टाटा बिरला नहीं है,
1: हाँ, हाँ। ऐसा उदाहरण दिया जाता था,
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमने सुना है,
1: सुना है।
0: लेकिन जानते हो गांधी जी ने बिरला जी को क्या कहा? उनका, आपके पास इतनी संपत्ति है, आप समझते हो आपकी है, ये आपकी नहीं है भाई। उनका, महाराज कमा तो मैं ही रहा हूं, तो मेरे, कहता नहीं, कमाने पर भी आपकी नहीं है, आप ट्रस्टी हैं इसके, और ट्रस्टी क्या करता है, वो रखवाली करता है, आप इसके संरक्षक हैं,
1: देखरेख कर रहे हैं,
0: बस देखरेख कीजिए। और बिरला जी के इतने धार्मिक ट्रस्ट बने, इतने उन्होंने मंदिर बनाए, इतने, इतनी गौशालाएं खुलवाई, इतने विद्यालय खुलवाए, वो सारा का सारा गांधी जी की प्रेरणा का एक फल था,
1: फल था,
0: ये उनका जीवन था। अब ये देखिए ना, वो आज ही हम भजन गा रहे थे, हम MGI में अभी सेलिब्रेशन था, तो उनका बहुत प्रसिद्ध भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाएंगे,
1: बिल्कुल,
0: जिसने दूसरे की पीड़ा को अनुभव करना प्रारंभ कर दिया वे वास्तव में वैष्णव हैं। वैष्णव का मतलब है भगवान विष्णु के अनुयायी, भगवान विष्णु के भक्त
1: जी।
0: भक्ति जो है वो झांझ लेकर के, मंजीरा लेकर के, तबला लेकर के गाने में नहीं है, मंदिर में जाकर के शंख बजाने में नहीं है, जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ लेता है वही असली भक्ति है।
1: हमारे माँ बड़ा छोटा सा उदाहरण देती थी, जब हम ज्यादा टॉफी खाते थे तो बोले गांधी जी ने के पास एक महिला गई थी कि मेरा बेटा बहुत मिठाई खाता है, कैसे रोक पाऊं, तो गांधी जी ने कहा कि 5 दिन बाद आइएगा। तो 5 दिन बाद महिला गई तो बोली, गांधी जी मैं इतनी दूर से आई हूँ, मेरा इतना मार्ग व्यय लग गया, आप उसी दिन मेरे को कुछ बता देते कि मेरा बेटा रुक जाता, क्योंकि वह आपकी बात तो सुन लेगा, मेरी बात तो सुनता नहीं है, तो मिठाई के लिए रोक देती। तो बोले मैं स्वयं मीठा खाता हूँ, मैं कैसे रोकता,
0: मैं
1: 5 दिन
0: मैंने था।
1: जी 5 दिन मैंने नहीं खाया मीठा, तब मैं आपके बच्चे को कुछ कह सकता हूँ कि वो रोक पाए। तो स्वयं में जीना एक प्रयोग को, ये बहुत बड़ी बात गांधी जी हमें सिखाते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा
1: जी,
0: कि जब तक हम अपने ऊपर किसी बात को लागू नहीं करेंगे वो मिथ्या होगा,
1: बच्चों को कैसे लागू करवाएंगे,
0: वो मिथ्या होगा।
1: भाई
0: हमारा व्यवहार नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: हमारे यहाँ जो सत्य है और जो महानता की कसौटी है वो एक ही है। तीन शब्द मैं आपको संस्कृत के बताता हूँ
1: जी,
0: वचस्यन्यत कर्मण्यत अन्यत, ये जो मन में अलग, कर्म में अलग और वाणी में अलग, जो ये तीन बात कही गई है, ये दुष्ट लोगों की पहचान होती है,
1: मन से, वचन से, कर्म से।
0: वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, महात्माओं की मन में वही बात है जो वाणी में है
1: जी,
0: वही बात वाणी में है वही व्यवहार में भी,
1: व्यवहार में भी उतरनी
0: चाहिए। मन कर्म वचन से जो एक रूप होता है वही महात्मा होता है, और वो महात्मापना यहाँ दिखता है। हम छोटे छोटे थे तो हमारे पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में गांधी जी के 3 बंदर होते थे
1: जी,
0: आपने भी शायद वो
1: बिल्कुल
0: पढ़ी
1: होगी, बिल्कुल।
0: एक बंदर के मुंह पे उंगली रखे बैठा है
1: जी,
0: दूसरा कानों पे हाथ रखा बैठा है, तीसरे ने आंखें बंद की,
1: नेत्र बंद किए हुए हैं जी।
0: तो ये
1: आज तो ये बिकता है बाजारों में, 3 बंदरों का, बिल्कुल सुवेनियर
0: बेच रहे हैं। लेकिन वो क्या था, वहां शिक्षा ये थी कि आप बुरा बोलो मत किसी के लिए, यहां तक कि बुरा हो रहा है तो उसे देखो मत।
1: हाँ।
0: और देखने से बचने के 2 रास्ते थे, या तो उस गलत का विरोध करो, या वहां से सामर्थ्य नहीं
1: हट
0: तो साइड हट जाओ, तुम उसमें सहभागी मत बनो,
1: बिल्कुल
0: मत बोल, और मत सुनो, बुराई को सुनना भी आपके अंदर संस्कार जा रहा है
1: जी।
0: बुरा देखने से आपके अंदर संस्कार जा रहा है, बुरा

0: बोलने से आपका संस्कार दृढ़ हो रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो वो नेगेटिविटी जो जाती है, नकारात्मकता जो जाती है आपके अंदर, वो आपको ऐसे मार्ग पर लेकर के जाएगी जो आपके उत्कर्ष के लिए नहीं होगा, वो अपकर्ष के लिए होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो महात्मा गांधी जी ने जो हमें मार्ग दिया सत्य का, अहिंसा का, एक उनका एक और बहुत बड़ा तत्व है जिसकी तरफ हमारी बहुत कम दृष्टि जाती है, वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है जितनी मेरी आवश्यकता है उससे ज्यादा मैं न रखूं। आजकल जैसे अभी
1: भौतिकवाद है, लोग
0: छोटी सी घटना बताता हूं आपको, अभी जो बहुत बड़ी घटना बन गई, अभी मैं मॉरिशस में था तो पता चला कि यहां पर गल्फ में जैसे वार शुरू हुआ, अमेरिका ने ईरान के साथ में जो उनका युद्ध हुआ, तो वहां से गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आने बंद हो गए, कम हो गए, बंद हो गए। मुझे पता चला कि लोगों ने एक एक नहीं, दो दो तीन तीन सिलेंडर भर करके जमा करने शुरू कर दिए।
1: बिल्कुल।
0: और उससे ऐसी हालत हुई कि जो लोग लेने जा रहे थे उनको मिल नहीं रहे,
1: मिल नहीं रहे।
0: एक व्यक्ति चार ले गया जबकि आवश्यकता एक की है, और दूसरा व्यक्ति को एक भी नहीं मिल रहा जिसको आवश्यकता है। ये जो परिग्रह की स्थिति है इकट्ठा करने की, ये समाज में विषमता पैदा करती है।
1: बिल्कुल।
0: आपको जितनी जरूरत है उतनी रख लिया। मान लीजिए मुझे एक सिलेंडर की जरूरत है जो मेरे घर में लगा हुआ, एक मुझे और चाहिए इमरजेंसी के लिए, बंद हो जाए, उससे ज्यादा मेरी आवश्यकता नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: अब मैं पांच इकट्ठे करके रखूं, मेरा क्या फायदा।
1: बिल्कुल।
0: आपको मैं एक और घटना बताता हूं, आपने कोविड का नाम लिया
1: जी।
0: कोविड में जो वैक्सीन डेवलप हुई, सबसे पहले वेस्ट में ही हुई, अमेरिका वगैरह में, भारत में भी हुई, दो दो हुई। तो बाहर क्या किया गया, वेस्ट ने क्या किया कि उनके जितनी जनसंख्या है उनसे तीन गुना मात्रा में अपने पास पहले उन्होंने स्टोर किया, और बाद में फिर उसको बेचा तो इतनी महंगी कीमत पर कि लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। भारत ने क्या किया, मैं आपको ये बताता हूं, गांधी जी के संस्कार आज भारतीय जनमानस में
1: हैं
0: और मोदी जी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बड़ी बात है। उन्होंने क्या किया, अपने यहां जो वैक्सीन डेवलप हुई अपने पास ही नहीं रखा, मुझे याद है कि कुछ उसमें से कुछ हिस्सा मॉरिशस में भी आया।
1: बिल्कुल।
0: जितने हमारे आसपास के देश थे उन सब में गया, श्रीलंका में गया और नेपाल में गया, भूटान में गया और अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्रीज में भेजा और फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा। मोदी जी जब कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो वो उनकी अपनी बात नहीं है, वो भारतीय संस्कृति की बात है, हमारे संस्कारों की बात है। और यदि भारत ने पूरे विश्व को एक परिवार माना तो सबसे निचले पायदान पर जो खड़ा हुआ गरीब देश है ना, उसको मेरी आवश्यकता है। धनियों के पास तो बहुत पैसा है, बहुत वैक्सीन भी हैं। वो कार्य वो गांधी जी से आया कि अपरिग्रह, मेरे पास जितनी जरूरत थी मेरे देश को मिल जाएगी, ये फालतू बनी है, दे दो लोगों को, उनका जीवन भी बचे। तो ये जो भावना है गांधी जी के जीवन में, मैं आपको बताता हूँ। उनके पास उनकी संपत्ति क्या थी, एक लाठी
1: जी,
0: एक धोती,
1: एक
0: लोटा
1: जी,
0: और क्या था, और एक उनके हाथ में गीता, और इसके अलावा कुछ नहीं
1: जी।
0: एक बकरी उन्होंने रखी हुई थी जिसका वो दूध पीते थे, इसके अतिरिक्त कुछ भी उनके जीवन में नहीं था। आश्रम में जो आया वो सबका, जहां से आया जिन लोगों ने दिया उन्होंने खाया, वो कहां क्या लेकर के गए। तो ये जो अपरिग्रह का मतलब होता है कि जितनी मेरी आवश्यकता उससे ज्यादा संग्रहित न करना, चाहे मैं कितना ही धनी व्यक्ति हूं, ये जीवन का वो मूल मंत्र है, मूल सूत्र है, जो राष्ट्रों की उन्नति का एकमात्र आधार हो सकता है। जब आपके देखिए, जब हम ग्राम को स्वावलंबी बनाने की बात करते हैं तो याद रखिएगा, मेरा जिला ऑटोमेटिकली स्वावलंबी हो जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: मेरा प्रदेश भी स्वावलंबी अपने आप हो जाएगा, और मेरा भारत भी स्वावलंबी हो जाएगा, मेरा मॉरिशस भी स्वावलंबी हो जाएगा। तो स्वावलंबन जो है वो व्यक्ति से शुरू होता है, सबसे छोटी इकाई व्यक्ति
1: और फिर व्यक्ति, परिवार से समाज।
0: तो जो शुरुआत है स्वावलंबन की, जो शुरुआत है सत्य की, जो शुरुआत है अहिंसा की, जो शुरुआत है अपरिग्रह की, इनकी जो शुरुआत है वो व्यक्ति से होनी चाहिए। ये गांधी जी ने बताया। आपने कहा ना कि मैं अभी गुड़ खाता हूँ, अभी तक तो मैं उसको कह नहीं सकता था, जिस दिन मैंने छोड़ दिया तो मैं कहने के लिए अधिकारी हो गया। ये बात जब व्यक्ति सोचने लग जाता है तो फिर उसकी वाणी नहीं, उसका जीवन बोलता है। ये बात हमारी गांधी जी ने हमें दी। तो भारतीय संस्कृति जो है वो उसका अद्भुत पक्ष है कि जो वाणी में है वही व्यवहार में है।
1: ये बहुत बड़ी बात है,
0: जो मन में
1: है, जो आप मन से, कर्म से और वचन से हैं, वही आप हैं।
0: वही आप हैं, बिल्कुल बिल्कुल
1: वही आप हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा
1: जी। बिल्कुल। कार्यक्रम अंत की ओर आ रहा है, 3 बजने वाले हैं। तो आज जब हम महात्मा गांधी का जन्म दिवस के ऊपर ये चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे जो युवा वर्ग है उसके लिए आपका एक विशेष संदेश यहाँ पर

0: कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाएगा।
1: देखिए मेरा कोई संदेश नहीं, मैं बिल्कुल कोई संदेश देने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो महात्मा गांधी जी की जो शिक्षाएं हैं
0: जी,
1: मैं वही में
0: दोहराएंगे,
1: बिल्कुल वही आप तक पहुंचाने की चेष्टा करूं। गांधी जी ने एक बात कही, माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरी शिक्षा है। यदि आप किसी से कुछ कराना चाहते हो तो स्वयं वो करने लग जाओ। आप अपने बच्चों से, आपको शिकायतें हैं, मुझे भी हैं, क्यों? क्योंकि जो मैं बच्चों से कराना चाहता हूं वो मैं खुद नहीं करता,
0: मैं खुद नहीं करता।
1: मैं चाहता हूं मेरे बच्चे मोबाइल ना देखे, मैं 24 घंटे मोबाइल में घुसा रहता हूं
0: जी।
1: मैं चाहता हूं मैं शराब नहीं, मेरे बच्चे शराब ना पिए और मैं पीता रहूं, वो देखेंगे तो करेंगे,
0: बिल्कुल।
1: मैं झूठ बोलता हूं, मैं चाहता हूं बच्चे झूठ ना बोले, कैसे हो ही नहीं सकता। तो जो आप चाहते हैं वो अपना जीवन शुरू करते हैं। वेद का एक मंत्र है, मैं उसको बीच में ला करके अपनी बात समाप्त करूंगा
0: जी।
1: हम कहते हैं अनुव्रत है पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमती वाचम वदतु शांतिमान। जीवन में शांति का रास्ता ये है कि पुत्र जो है पिता का अनुव्रत हो जाए। अरे भाई समस्या तो ये कि पिता का व्रत ही नहीं है, अनुव्रत कहां से होगा?
0: अनुव्रत कहां से होगा
1: भाई, व्रती स्वयं हो जाओ। और गांधी जी का मैसेज यही है कि भाई अपने आप में समर्थ हो जाओ, आपको दूसरे की तरफ हाथ न फैलाना पड़े।
0: ये आप ऐसे रखें,
1: हाथ को ऊपर रखें, नीचे ना। ये है, देखिए जब गांधी जी यहाँ आए तो उनका मैसेज भी क्या है,
0: यही बच्चों तो को शिक्षित करें,
1: शिक्षा से जोड़ें। और जो अत्याचार यहाँ आप लोगों ने खेतों में कितना काम किया, मैं 2005 में यहाँ आना मैंने प्रारंभ किया, उस समय भी मैंने देखा बहुत गन्ने की खेती होती थी, लेकिन तब तक मैकेनाइज्ड हो गया था
0: जी।
1: लेकिन उससे पहले मैंने लोगों से सुना, मैं लोगों से मिला तो मुझे पता चला, मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर पुलस्त शोभा रुद्रमन
0: जी,
1: जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में संस्कृत विभाग के संस्थापक हेड थे, एक लंबे समय तक उन्होंने सेवा की, भारत में भी पढ़े, वो संत आदमी हैं। उनसे मैंने भारत के मॉरिशस के बारे में बहुत कुछ सुना और ये सुना कि उनके पूर्वज किस तरह की गरीबी की स्थिति में यहाँ अपना जीवन यापन करते थे
0: जी। बिल्कुल, अंग्रेजों ने यहाँ क्या जुल्म ढाए
1: आप सोच नहीं सकते
0: जी,
1: सोच नहीं सकते।
0: एक दिन काम पर ना जाने पर 2 दिन की तनख्वाह कटती,
1: ये देखिए तो
0: ये अन्याय है।
1: हाँ, बिल्कुल अन्याय। आदमी व्यक्ति बीमार हो सकता है,
0: बिल्कुल
1: बच्चा अस्वस्थ हो सकता है, घर में बुजुर्ग है तो वो अस्वस्थ हो सकते हैं। तो ये जो एक ही बात है, मेरा कहना यही है आज भी कि जीवन में जो व्यवहार करें स्पष्टता के साथ करें और अपनी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं उसको न छोड़ें। आपके घर में जो अनुष्ठान होते हैं, जो प्रयोग होते हैं, जो धार्मिक उपक्रम होते हैं, उनमें बच्चे भी बैठें, बड़े भी बैठें, और जो हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं उनको हम अपने बच्चों के बीज रूप में जरूर डालें, वो कभी ना कभी पुष्पित और पल्लवित होंगे और जीवन उनका श्रेष्ठ हो जाएगा। गांधी जी की शिक्षा को हम आचरण में ले आएंगे, केवल किताबों में नहीं रहनी चाहिए, व्यवहार में उतरनी चाहिए, हमारा जीवन हमारा मैसेज बन जाए, यही मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी का संदेश हम सबके लिए है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे साथ जुड़े, कार्यक्रम में पूर्णतः भाग लिया, बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, टेक्निकल सहयोग से आप तक यह कार्यक्रम अवि ने पहुंचाया, इसके लिए भी उनका आभार प्रकट करते हैं। और श्रोतागण जिन्होंने ये संदेश सुने, कृपया महात्मा गांधी जी के दिए हुए संदेशों पर अपने जीवन में थोड़ा भी प्रयास कर पाएंगे तो मैं सोचती हूँ कि गांधी जयंती मनाना सफल हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक क्षण लेता हूँ
0: जी,
1: मैं आज इस अवसर पर आपका, MBC का, जो बंधु इस टेक्निकल सारे सिस्टम को चला रहे हैं उनका, और मॉरिशस वासियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, सभी का वंदन अभिनंदन, सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब श्रोताओं को प्रणाम करते हुए सभी को शुभ संध्या।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं गीता जी, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को हमारा नमस्कार। नशीली दवाओं की समस्या को देखते हुए पोर्ट लुइस गिरजाघर ने एक अंतरधार्मिक समूह की मांग की है ताकि नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के साथ साथ उनके परिवारों को भी बेहतर सहयोग दिया जा सके। रुसेल स्थित काजनाला श्रामोशे संस्थान में

कल प्रशिक्षण का दूसरा सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान नशीले पदार्थों से जुड़ी नवीनतम जानकारी, उनके अवैध कारोबार, सेवन और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को साझा किया गया। आगे भी इस विषय पर कई बैठकें और चर्चा आयोजित की जाएंगी। इसके बाद प्रतिभागी अपने अपने समुदायों में लौटकर उन लोगों की बेहतर तरीके से मदद और मार्ग

0: लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जज मेहदी मानराखा ने आज सुबह असाइजेस में ये सजा सुनाई। क्रिस्टोफर जोनाथन मैकडेलन ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। फिलहाल वो एक अन्य हत्या के लिए 23 साल कैद की सजा काट रहा है। आज 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नई दिल्ली में राजघाट में श्रद्धांजलि अर्पित की। आज ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जा रहा है। आज के दिन महात्मा गांधी के अहिंसा और शांति के संदेश पर विचार किया जाता है। मॉरिशस में भी महात्मा गांधी संस्थान सहित कई अन्य जगहों में गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समारोह आयोजित किए गए। और विदेश में अमेरिका के टेनेसी में मौत की सजा पाने वाली कैदी को 2 बार जानलेवा इंजेक्शन देकर सजा देने की कोशिश नाकाम हो गई। वो दोनों बार बच गई। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया। अब उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 50 वर्षीय महिला कैदी को अब अस्पताल में जीवन बचाने वाली चिकित्सा दी जा रही है। राज्य के गवर्नर ने इस साल के लिए मौत की सभी सजाओं पर रोक लगा दी है। और मध्य अफ्रीकी देश कोंगो में इबोला वायरस का प्रकोप लगातार खतरनाक रूप लेता जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में इबोला से मरने वालों की कुल संख्या 4,000 को पार कर गई है। इस खतरनाक संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन लगातार संघर्ष कर रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ये इतिहास का सबसे तेजी से फैलने वाला इबोला प्रकोप बन गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

0: शुक्रवार का दिन है 2 अक्टूबर आज की तारीख। मैं हूँ रत्ना, आ पहुंची हूँ आज की चर्चा कार्यक्रम को लेकर। आप सभी का हम स्वागत करते हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, जिसका सीधा प्रसारण आप इस वक्त देख पा रहे हैं MBC के तीसरे चैनल पर। और आज बिल्कुल गांधी जयंती मनाई जा रही है, 2 अक्टूबर का दिन। ये दिन बहुत ही यादगार, क्योंकि आज भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल 159वीं जयंती मनाई जा रही है गांधी जी की। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि सत्य और अहिंसा का पाठ उन्होंने लोगों को दिया, इसकी प्रेरणा दी, और साथ ही साथ उन्होंने स्वराज की स्थापना करने में उनका सबसे बड़ा सहयोग रहा। गांधी जी 29 अक्टूबर 1901 बिल्कुल मॉरिशस पहुंचे थे, और 18 दिन की उनकी ये यात्रा मॉरिशस की भूमि पर वे रहे थे। और यहाँ पर जितने भी गिरमिटिया मजदूर थे, जितने भी भारत से आए हुए लोग बसे हुए थे, उनकी असहनीय हालत देखकर, दर्दनाक हालत देखकर, उनके लिए बहुत ही उन्होंने योगदान दिया था। अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक योगदान हम कह सकते हैं। और गांधी जी ने मॉरिशस और अन्य ब्रिटिश उपनिदेशों में भारतीय मजदूरों के शोषण के खिलाफ लगातार उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, और उनका जो योगदान था वो बिल्कुल एक यादगार कह सकते हैं हम। तो आज का दिन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को हम समर्पित करेंगे हमारे गीतों के साथ, एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। और आज के इस दिन को हम बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे आज की चर्चा कार्यक्रम के साथ। आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ेंगे बैरिस्टर कपिल देव रघुनंदन जी, जो स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं। और आज हम बात करेंगे मॉरिशस में किस प्रकार से कानून लागू किया गया है प्रॉमिस ऑफ वेडिंग, यानी प्रॉमिस जो करते हैं शादी के दरमियान, जो वादे किए जाते हैं, अगर वो ना निभाया जाए या वो वादा तोड़ दिया जाए तो कानून किस प्रकार से इस पर एक्शन लेता है या क्या कहता है कानून। आइए जानते हैं, रघुनंदन जी से स्वागत करते हैं। रघुनंदन जी का, रघुनंदन जी बहुत बहुत स्वागत बा।
1: नमस्ते जी।
0: और आज के इस कार्यक्रम में कुछ सिविल कुंच बोलेला मुगिस के, जब शादी करे तो जात हो, या शादी करे के एगो वादा कर देले हो, तो कैसे वादा निभाई के चाहिला, और जे वादा तोड़ देव तो कौन कौन दुमाज होला, कैसे तू पहल करब कानून के सहायता ले।
1: बड़ी है एगो कुमार जोली से रिज्यूमे कर देला अपने ही
0: तनी चाहिला ना देव करे के।
1: नहीं नहीं ठीक बा, हम जी देखब से आज प्रॉमिस दे मया का हुएला। एक बार आदमी बहुत सामोशिया है, भाई बहन हुई, मैडम मिशे हुई, कोई भी हुई, देखब उ लोग एगो प्रोमेट करेलन सन, एगो शादी करियन सन, एगो छोकरा से या दूसरे बड़े एगो छोकरी से, में फिने हुएला उ प्रोमिस हुआ आनिले हुई के पसी काहे, देखब छोकरा या छोकरी जो प्रोमेट कर ले शादी करी उ अब छोड़ देवेला। तो हमने देखब से जैसे शुरुआत में बोला, हमने के कानून का बोलेला ऐसा सर्कमस्टेंस में का होएला। बस एक बान चीज मॉरिशस में भाई लोग नहीं जानेला अपन ओकर दुआ, बस ऐसा सोचेला अरे तो शादी करलक अब ओके छोड़ देलक। तब देखब से कौन चीज करेला, कौन चीज मिलेला, कितना चीज का करे के चाहेला। एगो केस रिसम अभियाल है लाखू सिपर में, जहाँ एगो जैन है मामजिल का करलक, वो कोनेसेंस करलक एगो मिशिये के, एगो जैन छोकरा के, अब कब जनलन सन कौन बगल से अथवा व्यक्त मुझे बोलन सन फेसबुक से, फेसबुक में देख के ओके कुमार जब बतियालन सन एने उन्हें, तो उ लोग खुशी होलन सन। ऐसा एगो लामी छे दोनों में कुमार जे होल कि देखब उ लामी छे वह ट्रांसफॉर्मे होल खुशी आली में, दोनों लगल अपने बिना ओकर संगे नहीं सकी रहे, और ऊ बिना एकर संगे नहीं सकी।

0: करे दिन रात देख बा वो मोबाइल में फेसबुक एक मजा जोन बा वो मोबाइल में लेके बतियाए लंसन तीन कार उलो के लेता यही में जाला तो देख ला तो का होल उ लामी चेवा ऐसन एगो हो जैसे हम बोली ट्रांसफो में होल एगो खुशियाली में एगो लामू में एक मजे तो अब दोनों लगलन सन संगे निकले हाथ हाथ पकड़ के लामेर बगल कुमाजे जाए अब देख राकों राकों तो करते लंसन सुबह कभी देख बा कुमाजे सामदी दिमस आई कौन न दिन जब लीब हुई तो दोनों जाके रिश्तों में अनमन खाई पियन सन अब हुआ अब एगो लिपो कुमाजे कुमाजे दिन दिन लामेचे हुआ तो बढ़ते जाता अरे कोनो के था जोन पैसवा बा का करलक हम कृष्वा जो नभी हम नहीं कर ली सर वो का करलक वो देख बाई मंजिल हुआ कुमाजे मिशवा संगे इतना से पे में गल लगल हुआ घूमे दूसर देश देखे वही छोकरा संगे एगो लामीचे बस हो लगल वायाजे हो सन संगे गैलन सन कुमाजे तीन कार लेता पासे हो सन संगे ही और उलो के पोताप संगे अभी तो जैसे एक बार चीज देख आदमी शादी करता पोताप के मीडियम से अब जनलन सन एक एक एक बगल के अपन अपन संगे अब का करलन सन जब लेर हो गल तो बोलन सन छोकड़िया बोले छोकड़वा के देख जाने ले इतना गैली सब घूमे इतना में के लामी छे बा शादी तो करे के चाहे एक दिन हम तोरे ही शादी करब हम तोरे ही से शादी करब
1: एगो प्रॉमिस कर देला
0: हाय का ये बोले खोज त
1: एगो वादा कर देला
0: एगो वादा कर लग ओके तो बोले देख सैफ हमनी के परिवार के जनाई के चाहे हमनी के बस हमनी के परिवार के जाने के जाना हमनी त कले कले कोई नहीं जिन लग छुपे छुपे जाके को मजा खुशी हो गई सर अब हियां जाए अब हियां हमनी हो छोकड़ा बोले हम डाको हई अरे का ना काई तो कुल से हमके चाहे ला शादी ही करे के तो हम तो देख ले स संगे हई से हमने के कागते कागते और हमने के मानिए सब चले रहा पसंद अनमन हो स तो का होल एगो बोझू एगो दिन माँ बाप बोले खुशी हो गए वसत बेटा बेटी लोग तो एक एगो चीज करे के चाहे ला एगो फियांसाई करे के कानून में अनमन बराबर यही से हमनी कुमाजा कम बतियाईला से हमनी के मॉरिशस के सोसाइटी में फियांसाई के कुमाजा खाली छोटा सा बतियाई के तीन कार हमनी बोल सब फोमेस दे एगो फोमेस दे मयास में ये का होला एक दिन परिवार बोले तो ऐसे कर बस चाहे ना छोकरा छोकरी के आरते करे के चाहे पस आरते करे के कुमाजा अब दूसरा के नहीं सके एगो फ्योसाई करे के चाहला और ये फ्योसाई हुआ कब होल तो बोलन सन देख हमने के चाहला कब फ्योसाई करब सर तो परिवार के संगे बुलाई के चाहला एगो इनविटेशन करे के चाहला संगे हां तो बस की काहे छुपा छुपी तो नहीं से कब से करे एगो फ्योसाई ना हर तो दुनिया जाने ला कभी एगो फ्योसाई ला एगो खुशियाली है चाहला लिमन से खुशियाली से मनाए के तो यहां का करलन सन का उ लोग फ्योसाई करलक बोलन सन परिवार के अभी करियन सन अभी देखब से एक बान परिवार के अभी करियन सन तो पहला चीज छुकड़िया बोले छुकड़गो से अरे तो फियांसाई करते हुए तो बाग फियांसाई कहाँ ये तो पहला एगो स्टेप चाहे ला कि हमने के चाहे गो फियांसाई के बाग तो बोली चल हाँ फिक्र नहीं कर गैलन सन कुमा जी है छुकड़वा कुछ नहीं दे पे करता ही है ये केशवा जो नी पास अनमन हुआ तो छुकड़िया बोले फिक्र नहीं कर अरे बाग फियांसाई तो तू हमके नहीं सकबे दे नहीं कुछ बात नहीं हम अपने अपन किन के अपन मानियार में मैं हम तो के गो देला छोकड़वा तो लगल पहले शुरू से बोले हमारे यहाँ मुआइया नहीं बा तब बोले यहाँ बाग फियांसाई तो छोकड़िया बोले अरे तो बाग तो हो गल फियांसाई हो गल परिवार तय बीते करब सर अब तक सोलर चाहेला साड़ी किने के रोब जैसे हमने बोलिया सर तो चाहेल रोब और साड़ी लुगा किने के तो बोले हियाँ के मगाजुआ में जो देख लें सजाने ले साड़िया हम के शादी के लिए या हमार फियांसाई के लिए पसंद नहीं बा हम चाहत ऐसे नेगो कि दूसरा एक आदमी नहीं पहनेला कुमार जी को एक एक एक एग्जाम एक्स्ट्रा क्वालिटी चाहिए
1: डिजाइनर वेयर चाहिए जैसे एगो आज के भाषा में बोलब त मजा डिजाइनर वेयर एक एगो मिलेला
0: हां तो बोले ई त करब स ओकर साड़ी के तो हमने का करब स चल हमने लाइन चलब स इंडिया में तो जाने ले बोमासे रल तू सब क्वालिटी साड़ी बेचाला चल हुआ देखब स स्वाजी कर छोकड़वा बोले चल हां अरे वहाँ से किन लेपसा हम देख ले अपन कुश्ती में अपन खाबा तूत पहने के या चूड़ीदार कुमार जो छोकड़िया
1: किने जब छोकरी जिस छोकरी पे ये करा था सब कुछ
0: हाँ छोकरी में एक भान चीज हाँ। छोकड़ो बोले पाफे ना ये हम पे ये करब कुमार जी जहाँ देखा था कि छोकड़िया संगे बहुत चीज मांगता ना तो यहाँ गल अब बोलन सन अब फियांसाई हुई हो गल तो सब तक कपड़ा हो गल बाग हो गल आदमी के यहाँ बीते हो गल तो अब का करे बोले

0: din oche. Ce ale cu gato de ichi. Tenia gato cum de bărca gato prepare cărlă în săn, ari gato toale taz, tin le taz că ai gato. Ar dic bătă cu ar decorașo că păișa giun la galba, uie, te buri gato ni cali de be. Te pădli admia păliuar giun jan le ai fiansă eu de ki. Ca ai gata de be cărbă să, mi se mă ucă ego gato de ichi, tenia cu sacu cum medal că limon se, o că suagăt care că ce ai la nă, te buri curic ba, te uca ciocorua bolata, te buri să-i săp cărbe gato de be. तर का लिमोनाद कह के मजा वो है जीवे के लिए पुख चल गल शादी था पहला फिन से करब से कहाँ शादी करब से फिन से शादी तो हुए लाइक के हला तो बोले सौंपाई दिए बड़का कुमा जब सौंपाई हिया कि लनसन तो सौंपाई उस सब अनलनसन अब शादी फिक्से हो गल शादी फिक्से हो गल कोनो सिपा कौन महीना में से बोलो देशा में तो बड़का बहुत शादी हुए ला अब नहीं है अब देखबा कोनो बखत शादी हुए ला तो का कर ला देशा के लिए पोकुआ में फिक्से हो गल कब फिक्से हो गल तो नोमाल फिक्से करे के आगे तो कहत एविताशियों ना चाहे ला बड़का बड़का कहते हैं विताशियों को नहीं खुशी बा हिया के कहत हई जो है फिमी करे लंसन बोले नहीं जाप लेने के बहुत समय के संगतिया लोग बार दोस्त लोग बा हमने के किसवा जो हिया लड़ाई करे वो बोले नहीं हम जाएला ऐसा एगो हई अनब कहते हैं विताशियों जो लेन के बा हुआ कैं फिमी जो हिया के कोई के नहीं बा कभी कोई सर्वे नहीं कर ले बा तो गर्ल का कर लन कि नंसन हुआ कहते हैं विताशियों लेन से अब तो बोली सब हो गल हमने के चाहना रिजर्वेशन करे के ना एगो लासाल बस कि अभी तक आदमी के घर के आगे प्लास नहीं बा मजे शादी करे के लातों तू बनाई के तो बोले चलो हमने एगो रिसेप्शन करे के एगो लासाल के गैली से देख लन सन और कब हुआ लासाल का देख लग तो आदमिया बोले तो चाहे ना तो के पैसा दे के हमके बस एगो डिपोजिट बस कि ऐतिल दिन हुआ के लेबे अभी तो बोले थे लेबे और नहीं लेबे था
1: अवालवा दे के चाहिए
0: अवालवा दे के ते को डिपॉजिट एगो अवालवा बस हुआ दे देलक एगो पैसा से बुझो अब तो जनबे करेला अभी के लिए एगो लासाल मजे है करब रिजर्व करब रिजर्व करब तो भैया मिल से कुमा जे है सौ मिल से कुमा जे है कम नहीं मिली तुम्हारा अब बोले तो कुरिक भा अरे तो बोलन सन तो की पकाई उ दिन तो बोले उकर फूड जो नकर भाई काई खाई के दे के चला चलो वो भी ऑर्डर कर दे लस उही आदमीया जो हमनी के
1: लस एक के बाद एक मतलब एक के बाद एक चल ले आवा था खर्चा
0: हाँ तो देख लो ही यही से हमने के कानून अभी देख सभी का बोला था कि स्व अन मन हमने के बस आन ले समिति हमने के चर्चा तो हमने के पोगाम लालवा के विषय है एगो कनिया का कोते कर देता है कि हमनी भाई बहनी लोग
1: निमन से समझी बस कि जितना लोग अभी अपन बेटा बेटी के शादी कर ले हो अंत जाने लन स कि कितना खर्चा पड़े लन स है सब चीज में हां
0: तब यहां देख लेला लासालू मिल गल अपन किन ले लन सन लुगा फैका सब चीज बा हुआ अब तो बोला सर ने भी कुछ कैसे जाप सा हुआ नहीं सकब सक मजा भाई रघुनंदन नियर एगो छोटा सा मिनी नियर लुतु में उतना जाए चाहे ले गो बड़का लुतु एगो लुतु तो एक भान संगतिया बोले तो हमारे तमिल से देश बाबे हम दुबले बा ऐसे नहीं सन बड़का बड़का मारक बा का फिकिर कर ले वे का हो सुआ के ले जाए के लिए हम देव तो के लुतु हुआ तो यहाँ तो गोकुम आज बड़ी देख लक गो नवा लुतु फेक किन ले बा बड़का को और खूब जोली बा तो बोले नहीं बड़ी मेरसी भैया तू हमके दे ले हमके नई बात पौसे करे के एगो लुतुआ ऊ काहोसुआ के तो ऊ देख ल हुआ ऊ एगो ऐसा एगो लुतु लिक्स देख लकर एगो संगतिया बोलौते है बोले हम आक्षेपते हैं अब देखा था ये रिलाशुआ जोन आयते आवता इलामुआ जोन बाल लामिचे व बा इस सदिया के फोमेत करे के धीरे धीरे आवता बस दत्त फिक्स हो गल बा शादी करे के एक दिन सदिया के अगाड़ी मिशेवा लगल राकोते करे जिस्तो अब देख लो यहाँ कारे ना लगल जिस्तो राकोते करे बोला था कि बहुत सा हमके जाने ले डिफिकल्टे में है पैसा नहीं बा कोई हमके नहीं देवता माँ बाप बोले फिकिर नहीं करिए बेटा हम देखब पहुँचो तो पहुँचो में भी कटा गल तो पैसा तो यहाँ तो नहीं बा तो बोले हम डिफिकल्टे में हई अब लगल हर कालीते एगो जिस्तो बड़का बड़का पोमेत कर ले रखल तो हियाँ फिनी हो गल ओकर पोमेस कुमा जे एगो फुस बने के आर का होल हियाँ लगलन सन अब दोनों में झगड़ा हुए देख ल लगल हियाँ कब लगल में झगड़ा जिसकी शो लगल हुई बोले वो बोले तू तो इन्फिडेल हुए छोकड़ुआ बोता छोकड़िया के अब बस ओके मन नहीं बस शादी करे के हियाँ लगल बोले तू इन्फिडेल हुए को मेघाज कुमा जे दूसर संगे हुए तू कुमा जे हुए और छोकड़िया देखत ताकि वो

0: कड़वा कि शादी करे के अब जाना था उके कौन प्रॉब्लम बा उका संगे देखा था छोकड़वा रोज ही लालकोल लादोग और कनाबी गंजा जैसे फीमे कर ले जाता ते उकर मानिए जनकाल बतेले रहल ते अजमन अनमन नहीं बना ते हिया देखत वो दिन दिन उ छोकड़वा लगल कुमाजे सांझे करे ते का कर लग उ जो दात फिक्से हो रहल शादी करे के वो रेंवॉये हो गल रिपोर्टे जैसे हमने बोलिया सर रेंवॉये हो गल एगो दूसर दिन के बस की छोकड़िया देखत है अरे बाप ऐसा सदिया हो तम के देखत है काल कोई हो जा नहीं सकल जाए ऐसा एगो छोकड़ा से पहला चीज ऐसा एगो पिक्चर बतैलक बाप अनमन भगवान नियर अभी तो यहाँ सैतान नियर बनता तो देखा था यहाँ जिफी खिलते हुआ था और का होल मैडमा बोले अच्छा दिनवा तो अबे करी उकर है छोकड़वा के जो उनसे खुशी बा बोले जाने जो चीज करी सर उकरो देखा था कोर गांची बा बोले चल सिविल शादी करे सदिया तो छोड़ दे मैं सिविल शादी करल जला अगाड़ी ना
1: के बोला था छोकरा की
0: छोकड़ा बोला था छोकड़ा बोला था छोकड़िया से कि देख चल अभी तो बोले नहीं सकबे शादी करे उ दिन वहां के अब चल हमने सहाई करब सर इस शादी करब सर सिविल में छोकड़ा बोले अरे ये कितना कासे हो काहे नहीं चल हमने जब तू पारे हुई बे हम पारे हैं शादी करे की इको कर मान्यो कर काटते हो कर सर ते का कर एगो ऐसा दिन बस का कर लन सर दुनो गल लेता सिविल ही लेता सिविल ही या गल तो हुआ के देखलक उकर ऑफिस हुआ के बोले कोनो तो मैं शादी करेला शहर में के कुमा जब मेन ऑफिस में कोनो तो घर ही में शादी करेला कोनो तो पंडित शादी करेला और उही दिन तक सिविल करेला या जोन लौंदवा में रहे लनसन जाके हुआ सिविल करेला तो ये बोले कहाँ जेबे बोले यहाँ चल शहर जहाँ अपनी फासिल हो यहाँ भी कहाँ देख अब सब प्रीतार बस का कर लग हुआ गल तो कल हुआ तो ओकर कुमार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वह बोले अच्छा बस शादी करे आलो वो सब आई गो प्रया भी दे ले वो सब कौन दिन शादी कर बस कौन सी कौन सी मैं सिर्फ शादी करे के गाड़ी एगो बड़का फॉर्मालिटी बा तो बोले छोकड़िया बोले कौन फॉर्मालिटी बा तो बोले तो लोग के लाग देने सांस दे के चाहेला दोनों के तो लोग के आई डी दे के चाहेला कुमाजे जो है आई अपॉइंटमेंट फिक्से करे के चाहेला आर कुमाजे एगो दिन चाहेला है करे के एगो फिक्से करे के कि दोनों अबस सब दुखीमा उ सब उ ले लेलक सोचा था ले लेलक तो चोकड़वा बोले देख हम तो नहीं जन रही इस दुखी मौवा आने के चाहेला अब भी सीखत है कि शादी करल जला तो चाहेला लाइक देने सांस कहते दीते सब सब फॉर्मालिटी करे के आने के तो बोले को एक बा हम आके ऑफिस सेवा से बता हम आके छोड़ब फिक्र नहीं करिए तू बस कि शादिया तो देसी दे ही कर ले बा अब कैसे लगल हो छोकड़िया टेलीफोने करे था आज कल एक महीना हो गल दो महीना हो गल नहीं देखा था सदिया के कुमाजे हो लेता सिविल हुआ ओके बुलावा था सिपा टेलीफोने करे था हाँ अभी तक नहीं अलबा छोड़े तो का कर लग उही देहों से हो के गल बस कि यहाँ दूध लगल ओकर कपार में आवे कि कुमका ये जोन हुआ था ठीक नहीं बा तो का कर लग उही गल हुआ बिहो है में जहाँ लेता सिविल में अब हुआ जाके पूछता अच्छा हम बोले रही एगो अपॉइंटमेंट डाले के हम जो छोकड़वा से शादी कर ली एसकी ओकर दुखी मौवा छोड़ दे ले बा तो अब का होल तो भाई अब मिशे हुआ ओकर ऑफिस से हुआ बता नहीं कुछ नहीं बा नहीं हमके तो कुमज आज तक मजे नहीं बा अब हिया लगल दूध डाले ओकर कपार में तो हिया देखा था फिनाल में का होल वो आदमिया बिना ओके एक्सप्लिकेशन दे करके उदे सीधे कर लग नहीं शादी करेगी सदियक मजे अब यहाँ नहीं होल नहीं नहीं सकल दाई फियांसे ने कुछ करे आले अब देखी ला सा एक कर कहनिया ये प्रोमेस दे मारियाज हाँ कौन सी जाने के चाहे ला पहला चीज हर कानून में एगो चीज कब कर बा एगो मीनिंग एगो फ्राज के ओकर इम्पोर्टेंस बा बस इस समझे के चाहे ला तो हियाँ देखी ला सा ये कवा में अब रहल एगो प्रोमेस दे मयाज तो ये हाँ कौन सी कानून में एगो प्रोमेस दे मयाज ये एगो लंगाजम म्यूचुअल है दोनों बगल से एगो अंगाजम है कि इलो अंगाजमक मजे है दोनों दोनों बगल से मजे चाहे ला एगो सेक्स जिफे हाँ एगो मिशे एगो मैडम हमने के देश में मिशे मिशे नहीं सकेला शादी करे और मैडम मैडम नहीं सकेला शादी करे मैं दूसरे देश में बाएँ यही खातिन अच्छा है हमने के बोले कि हमने के कानून अभी तक समझे नहीं होल बा हमने के कानून में शादी हो वेला

0: एगो मिशे माध्यम से शादी करेला और का होला उ देखला कुमा जे ई देसी दे करेलन सन ई कुमा जे फोमेस दे मयाज देसी दे करेला एगो फियंसाई करे के यही है फोमेस दे मयाज उ कुमा जे मी बोले ह नहीं त हम शादी करे के भाई फोमेस कर ले नहीं ई होवेला हमरी के कानून फोमेस दे मयाज ई एगो फियंसाई ह जहां दुगो आदमी मिशे मैडम ऑफिशियल म उ लोग कुमा जे शादी करियन सन दान फिचुर ये है पिटार कुमा जे इन फिचुर में आली तो हमने देखी ला सर ये डिसीजन वा जो बा पताजे हुए ला मॉरिशस में ऐसने ही हमने के हमने तो सब कोई शादी कर ली सन अनुमान जैसे स्पीके कर गई ली सर तो हमने देखी ला सर ये प्रोमेस दे मयाज ये एगो वाले कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं बा एगो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब दुगो आदमी कब डिसाइड होला ई बोले लगो चीज जैसे हमने के कानून में मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एगो कुमा जे ऑफर करी शादी करे के और उ बोली हां हम शादी करब त हिया एगो कॉन्ट्रा होला त हमने के कानून में प्रॉमिस दे मयाज में नहीं बा एगो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट उही में अरे अभी तो देखी ला सर एगो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट नहीं रही तो एगो बोली के कुछ नहीं बा ओब्लिगेटोर या एगो आदमी के ओब्लिजे करे के एगो दूसरा आदमी से शादी करे के
1: यानी ओकर खिलाफ जाके तू शादी नहीं करे सकबा ओकरा ओकरा विरुद्ध जाके तू शादी नहीं करे सकबा चाहिला दोनों के कंसेंट होए के
0: हां और यहां ते नहीं बा कंसेंट कुमा जे ओ कुमा जे दोनों के कुमा जे नहीं बा एगो शादी करे के एगो म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं बा और म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ नहीं बा तो हो आदमिया कोनो छोकड़वा हुई या छोकड़िया हुई उ लिब सांजे करे के उकर निदे आ उकेन मुमो कोनो बखत उ सकी सांजे कर ले तो ही से देख ला मॉरिशस में एक बार आदमी सब बोले रहा है मत बेटी के फियंसाई हो गल छैंकाई हो गल बेटा शादी करे के चाला ना बोले हाँ आज नहीं माता जी काल करब सर यहाँ तक कुमा जे उ देसी दे कर लेबा नहीं यहाँ ओकर खातिन तो देखब नहीं सकी जोन आदमिया नहीं बोलेबा शादी नहीं करे कैसे ई सदिया के कुछ नहीं बा एकर वाले अर नहीं बा एगो कोतरा नियर नहीं है एगो कोतरा रही है ओके दोनों के आक्षेपते हो गल हुआ और जे नहीं ओबेय कर लो कोतवा कि तो सकबत दूसरवा के पुशवीव करे तो पुशवीव करे के आलू हमने के देखेला ओकर एक्स फियांसे के नई ओब्लिगेशन बा ओके चाहे लाही ओनोरे करे के ओकर ओब्लिगेशन ई देखेला ई का हमने के हुएला आलू तो ई एगो हमने बोलिया सर एगो कुमा जे एगो रिप्चुए हुएला पति पत्निया में ना नहीं है मैं फियांसाईवा में उ कुपुआ में उ मिशे और मदमुआ में मैं एगो रिप्चुए बा एगो कुमा जे दोनों में एगो कुमा जे मेम की कोंता नहीं बा एगो रिलेशन अबिजिव बा एगो कुमा जे को ठीक चीज नहीं बा हो जो नहीं बोता सदिया करी बोली हम नहीं शादी करब उ फुचिफ बा पसी पहला तो बोले शादी करी अब देखा था दें ये मैंने जाके कुमा जे अपन निदे सांजे कर दिलक तो फुचिफ बा और छोकड़िया के लिए वेक्सातो बा वेक्सेशियस जिसे हमने बोले सन अंगले में कुमा जैसे अन चीज ओके बोलक कि कुमा जोकर दिल दुखा गल बस एगो चीज कुमा जो उतना दिन ते ठगले गल और जैसे तो बोले रन सन कोनो तो भुताल हो गल कुमा जे अब एक बार आदमी जन्मे कर ऐसा चीज में ताकि कुमा जे को है अपने अपन जान ले लेला कुमा जे पुनारिये के बस वो कुमा जे सीता मुगे हो गल बा सीता खुशी हो गल बा
1: नहीं
0: एक्सेप्ट करता हालू तो जब देखब ऐसा एगो लेगजॉप जब एगो कुमा जे रिलेशन धाओ जला है रिप्चर हो जला जो अबिसिव हो जला सीए तू कब एगो लावे एगो शादी के बस शुरू से तो कहानियां का कोते कर ली सर दतुआ तो कब चला
1: यानी सब पारे हो गल बा सब कोई एंगेज कर देले होवन एगो एगो बड़का कमिटमेंट ले ले होवन और जितना पैसा सब डिपॉजिट कर देले होवन तो अब तो शादी नहीं हुई तो अब कौन दुमाज पड़ी कैसे कैसे दुमाज को मजा फिजिकली मेंटली इमोशनली इकोनॉमिकली कितना ओकरा पड़ी अपन जैसे रे तूने करे के हाई बहुत एगो एगो चीज है जहाँ पर तू एगो प्रोमिस कर देले हवा शादी के और कैसे हाई में पूरा परिवार इन्वॉल्व हो जाला कैसे बहुत मुश्किल के सामना करे के पड़ेला। चला कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ अब जाएगो गीत के ब्रेक लेके और आज बिल्कुल एगो जिस्वा नियर हमने के राखों ते करत हवन कपिल देव जी बहुत अच्छा लगा था सुने के और जैसे तोहर परिवार में भी कोनो ऐसन समस्या रही और जे तोहरा बा कोनो ऐसन सवाल पूछे के तो जरूर आज के कार्यक्रम में तू भाग ले।

सकबा 4028085 पर हमनी के जरूर टेलीफोन करे सकबा। आज हमनी के संगे हवन बैरिस्टर कपिल देव रघुनंदन जी और आप सबको के जना देवा था आई कार्यक्रम के तोहर तक पहुंचावे में हमनी के सहयोग मिलता। तकनीक पर हमनी के साथ देवत हवन अपर्णा, साथ हवन दीपशिका हमर प्रोडक्शन असिस्टेंट और निजाम जी हमर प्रोड्यूसर जे हई कार्यक्रम के तोहर ले पहुँचावता। तो चला एगो गीत के ब्रेक लेब जा आवब जा थोड़ा घड़ी में।

0: जी हाँ, आज 2 अक्टूबर का दिन है और सत्य और अहिंसा की नींव रखने वाले गांधी जी, जिनको गांधी बापू या बापू के नाम से हम बहुत ही ज़्यादा परिचित हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है और आज के दिन बिल्कुल कई जगहों पर उनको सम्मान दिया जा रहा है और खासकर कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो आज विशेषकर गांधी डे मना रही हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में हम जुड़े हैं और आज हमारे साथ बैरिस्टर कपिल देव रघुनंदन जी है जो इस विषय पर बात कर रहे हैं, प्रोमिस दे मोयाज, यानी अगर किसी की छैका या फिर एंगेजमेंट टूट जाती है या टूटने की कगार पर है और अगर किसी ने, एक ने भी इसमें बहुत ज़्यादा अपना फाइनेंशियल इनपुट दिया होता है तो किस प्रकार से उस व्यक्ति को अब क्या किया जा सकता है, कहाँ जाना चाहिए, कानून इसमें किस तरह से उनको सलाह देता है, इस पर आज का ये कार्यक्रम आधारित है। और बिल्कुल चलिए जानते हैं रघुनंदन जी, जब कोई मान लो अभी तक टूटे के बाद, फियोंसाई जब टूटे के बाद, अब परिवार जब जितना औंगाजे कर देले होवन, पैसवा औंगाजे कर देले होवन, लेता औंगाजे कर देले होवन, इमोशनली वो औंगाजे हो गल होवन, अब कौन ची करे के चाहिला। मान ल ऐसे होवा था, छोकरी बगल से अभी जैसे तू केस समझावत होवन, छोकरी देने से सब कोई औंगाजे हो गल होवन, छोकरा नहीं है खुशी बा शादी करे के, तो अब कैसे आगे बढ़ी।
1: अरे तो बड़ी लिवन चीज बोला जाने ला, एक बार भाई बहन बा तू तो शादी कर ले होवा, तो फियोंसाई सब तो फिनी हो गल, हिया सोचा वो आदमिया है मैडम हुआ सिबोजो या माम से लुआ, अब मजे ओके रिफ्यूजे कर लग ऊ छुकड़वा शादी करे के फियांसाई तो टूट गल, ही बोले रनसन अब वो का करी ऊ। अरे तो यही हमने बोले रनसन पची लेजे, मतलब जो सुफेर होल ई है कुमा जवा सकी एगो केस लाकूर में डाले, या लाकू सिपाही में डाली, या लाकू इंटरमीडिएट में डाली, लाकू सिपाही में डाले के कुमाजी एगो केस चाहे ला मिलियों बगल से चाहे ला एगो आदमी के सिबोजो आर एंटी में जी में जैसे हई किस हुआ डाले के सिबोजो हुई 2 मिलियों तक सकी एगो रिक्लामेशन करे ऊ छोकड़ुआ के ऊ कौन कालिते रिक्लामेशन हुआ ऊ डिपॉ का करी जैसे कि डिपॉन्से कर लो 2 मिलियों से ज्यादा तो लाखों सुप्रीम सुने ला और जो कमती हुई तो ओके कुमाजी लाखों एंटी में जी में डाली। अब हिया का करी ऊ एगो केस डाली वही लाकूर में मांग करी हर पैसा जो डिपॉन्से कर ले बा फिनेंशियरमेंट डिपॉन्से कर ले बा ओके मांग करे के सकी पुष्विव करे वो मिशेवा के बस ओके पुष्विव करके लाकू में बोले कि देख इतना इतना चीज हम कुमाजे है डिपॉन्से कर ले है और ई में फासिल है ओके कुमाजे है बताई के कि कौन कौन डिपॉन्स कर ले बा अली लसाल जे बुक कर ले होई एगो अवालुओ दे ले होई तो बोल ले होई ना कितना हुआ एगो डिपॉजिट दे ले बा
0: एगो प्रेव रही
1: एगो प्रेव रहे बा एगो रेसी बा कितना गातो के रहल बाग के कितना रहल साड़ी कर ले बा कौन कौन चीज कुमाजे अपन किन ले बा डिपॉन्से कर ले बा। हाँ। यहाँ देखब कि

0: एगो पैसा मिलेला और एगो कुवेर करी रिक्यूवेर करी जिसे मतलब एगो प्रेजुजिस मोरल जोन प्रॉब्लम के उकुमा जिया है बीतल बाव की उकर थाका उकर सब कुमा जा चीज में दिन रात सत सकत हुई नहीं सूते तब सोचत हुई अरे का आदमी लोग बोली होतना आदमी के बोला आ रही इतना चीज देख लन सन और गांजोज नहीं और कर ली सा
1: एगो मानसिक एगो फटका पड़ा मानसिक
0: एक रहना मोबाइल मानसिक हम देख रहे हैं ये हमने हम अभी का ये अभी तक हुआ तक नहीं आला है
1: जैसे बोलबा एगो एगो सेफ लॉन्गास में बोलबा तो साइकोलॉजिक में ओकरा तनी जस्तीए को मजा ओंगासे होगल हो
0: हां तो ओके देखबा मानसिक के लिए मोबाइल के तो ओके देखबा ओके कानून एगो पैसा देवेला एगो दुमास और हर दुमास मिलेला आवेक लैंतिरे लैंतिरे से अभी किस डाल देले होई तो कुमा जिया दे मिलियों के तो उमें मांग करी जो नोकर आवोका के दिपांसे कर ले बा ले के वो किस डाले के अभी देखब सा कौन चुकर पोस्ट जिया हुआ का वो कर फ्रे भी और जोन जोन दिपांस कर ले बा और लासा लूल के सब जोन फ्रे रखल प्रिपारेशन कर ले बा और गाजे कर ले रखल ou fiançailloua kare ke ou la seloua me. Te hiya dekh la. Ou chokariya ke ego dommage mili, dommage moral, ar dommage sab prejudis bi hol admi hansel ar jane da.
1: Kahe ke haye haye bole ke rahal ki samajik roop se bi dekhba ta ego society kahe ke ab ta dekhba ta kuma ja koi bhi hai nahi boli ki chokra kuchho kar le rahi. Chokri bagal se rahi to boli chokriyo mein kuchho rahi.
0: Chokriya ke zyada blame karela. Hamne ke bhai behan log. Ye hum kaise kaise experience bhai mein dekh rahe kahe. Bas ki hu boli chokriya to jane le nahi acha hui. Ek baar to boli aise aisan kare thal. Unhe dekha tale ghumatal hai hi kare. To kon shaadi kare okar se blamua chokriya par chalai. Ab blamua okar mein kab aavela. तब दूसरा एगो छोकड़ा ओके शादी करे के या पोमेज करे के शादी करे के बड़ी मुश्किल है बस ही बोलन सन ओकर चन चलन ठीक नहीं बा ये कोई किस जाके ओकर संगे शादी तो छोकड़वा जोनो के छोड़ देले ओ पुनिया के छोड़ देले ओके हर कालिते इमेजिनेशन
1: यानी एक तरह से देखबा त ओकर मौताल मो ओकर सोसाइटी बगल से सामाजिक रूप से और जैसे बोलबा ओकर जैसे मानसिक रूप से ओकर तनाव बढ़ गल बा और पैसा तो चल छोड़ ही द काहे के पैसा तो जितना दे पहुंचे हो गल बा हां
0: तो देखल इस सब के बा एगो कानून हमनी के कुछ सिविल बा उ देवेला एगो पैसा अब हमनी के कुछ सिविल बा एगो लॉजिक 1380 हमनी के कुछ सिविल मोरिशियन हमनी के कानून में जाने ला हमने के पहला शुरू एक दिन को आप सब प्रोग्राम से राकोंते करब से हमने के सिस्टम जुडिशिया कैसे शुरू करल मैं अपने ला फ्रांस से तीन कार कॉपी करके लिवा में तन लिस हमने के कुछ सिविल है फ्रांस से त आन के कुमा जे अब अपने बनाई ले है सर मैं कोनो एक बार अमेंडमेंट बा एक बार अभी तक हमने के स्वीप भी कर ला सर त हमने के बा लॉजिक 1380 हमने के कुछ सिविल बोली ला कोनो आदमी मिशे होई या होई होई जब एगो दुमाज सुफेर हुए ला तो जोन अदमिया ओके सुफेर कर लेबा उ दुमाजवा ओकर फोट खातिन ओके रिपारेशन करे के उ दुमाजवा के एगो पैसा मिलेला के देख ला
1: रघुनंदन जी हैजा पर मान ला हैजा त चलो छोकरियो के बात हम करत हई कबो ऐसन भी होला कि छोकरी बगल से भी कबो ऐसन होला कि छोकरा बहुत दे पहुंचे कर देले हवन और छोकरी मना करता यानी मान ले जैसे उल्टा जैसे अभी कहानी तू आंखों ते कलर कबो ऐसन भी होला कि एगो पुरुष के शादी खातिर बहुत दे पौसे कर देले हवन छोकरी के ढेर कादो दे देले हवन बहुत चीज किन के शादी के अगाड़ी दे देले हवन और बाद में छोकरी मना करता ऐसन भी होल बा
0: हो जला अभी तारेल देखब सक देवा के मैं अच्छा। खूब बोल ई दोनों कब हमनी बात कर जा सर तब वाइस वैसा हमनी के देश में या सभी देश में कभी को कानून कुमा जे है आवेला तो ऊ मिशे मैडम दोनों के कैसे अभी एगो बोली के तू कौन जगह करत हो है एगो सेतु एगो बिना लाइसेंस के तो बोले ला सिपास लोटो सेजी हुई ला मानू ने ओके तो ओ कब बोले ला एनी पर्सन ओ एनी छोकरा
1: रही छोकरी रही कोनो भी रही
0: बात है तो ये एप्लीके होवेला छोकरा होई या छोकरी होई अरे तो औसन कावा में जैसे बोला सि बुझन छोकड़वा या छोकड़िया का करी पहला जोन के सुफे होलबा ओके चाहेला रेतेनिया करे के एगो सर्विस एगो आवे और एगो आबुका के पहला चीज ओके चाहेला कब दे सीधे कर लेबा है ओके रिक्यूपेयर करे के जुन जुन पैसा डिपॉन्स कर लेबा और मोहाल के दोमाज सब के लिए एगो आबुका एगो आवे ले और कुमा पहला चीज से कुमा जब पुष्विव करे के आगे होतेनिया करे आबुका आवे बिन आगे किस डाले के लाकुर में चाहेला ओके सेवी करे के ओकर आवे बगल से एगो नोटिस मिस एन डेमेयर एगो नोटिस मिस एन डेमेयर का है एगो कानूनी बगल के एगो मजे है एगो नोटिस एगो नोटिस पहला गो नोटिस हर केस में जब एगो मिशिए या मैडम मांगेला दोमाज पैसा जोन सुफे होलबा मोरल डैमेज खातिर ओके चाहेला ओब्लिगेटोर एगो नोटिस मिस एन डेमेयर एगो पापिये भेजे के लीगल कुमा जोन आदमिया के पुष्विव करे के ओ आदमिया के जनाई के देख हमर लैतेंशियो बा एतेल केस में तोहरा पुष्विव करके दो मास मांगे के जे नहीं करलक ई मिस एन डेमेयर नहीं सर्वी करलक ओकरा अबोका से एगो पॉइंट दे दुआ एगो कुमा जे डाले लकुरुआ में फेल कर देलक ढई डाले के नोटिस मिस एन डेमेयर किसवा से आगे नहीं जाए फिर बिला जाए तो
1: हाई नोटिस कहां बनाई के चाहिला
0: हाई नोटिस वा अवेवा बनावेला
1: अच्छा।
0: अवेवा सब बनावेला तब इसे लाकुर के जरा सर्वी करेला वो अदमिया में हेलो तो देखला हिया जैसे ओके कुमा जे है एगो नोटिस मिस एन डेमेयर है भेजलक अवेवा के ले लेलक वो रिक्लामे करी वो नोटिसवा में वही नोटिसवा अनमन जोन लिखले बा वो केस जब डाले लगो प्लेंट वो प्लेंटवा डाले ला अनमन है लाकुर में जोन मिस एन डेमेयर में भेज ले रल सावे जे अब सब रिक्लामेशन करी कौन कौन ओकर डिपेंस कौन कौन ओकर दोमास मोरल रहल ओकर रेपिटेशन तेनी होल बा अब जैसे पहला सुर में बोली ना औसन कामे देखबक मजे कबे गो छोकड़ी होई सेतु तो छोकड़ा के तनिक मजे कोरे के हो जाला मैं छोकड़ी के देखबा मुश्किल हो जाला ओके कुमा जे एगो छोकड़ा फिन से मिले के यहां सब ओकर है रिपीटेशन कब तेनी हो जाला तो मांग करेला सब राकोंते करी ओ मजे प्लेंटवा में कैसे पहला शुरू में हमनी कहानियां राकोंते करली स कैसे लामिचे होल कैसे ज्वेन होल कैसे लामेर बगल सन दूसर सब उसे राकोंते करके मैं एगो बोजू आल छोकड़वा देसी दे होल बोले नई शादी करे के कि नई मज है करी सब मान्य जैसे सिया कॉन्स्टेंस कैसे ओकर फियंसाई ओकर प्रोमिस दे है मया रोंपी हो गल कुमज सब बिगड़ गल और ओकर रिप्चर कैसे होल तो देख लो हिया अब हुआ देखी ला सब वक्त भी जाता अब वो जैसे तरुलाम के बोला कादो उ सब के जाफेक का होल हैया दिखिला स ओकर जब मांग करता ओकर है प्लेंट में तो ओके बोले के चाहेला ओके पूवे करे के चाहेला कौन कौन कॉम्पेंसेशन फाइनेंशियल मांगता और कौन कौन प्रेजुडिस मटेरियल ओ कुमा जे मोरल सर्वी होलबा तो हमने अब दिखिला स कि ओकर प्रेजुडिस मटेरियल कौन छ ओके चाहेला मिशेवा के रंबूसे करे के सब पैसा जो छोकड़िया डिपॉन्से कर ले रहा जैसे के साल दे रिसेप्शन कुमाजे दिले है कुमाजे पेये कर रहा और कोनो तो का कर रहा बोले फिर हम तो डिसीडे कर दिले हैं सर है शादी करब से उतन दिन मैं दिनवा के नहीं सकब से नकुमा जे अब दिमास करके दूसरे देश में जाए के चला आवियो के है चिकित कुमा जे है ले लेके ताकि हमनी होनीमून करब से ला स्विस में तो के देख ला हिया ओकर होनीमून करे के ओकर बीए ओकर आवियो सब कुमा जे बिबान बीए आवियो वा हिया तो नहीं सके जाए और हुआ के जुन जुन लुगा कुमा जे डिपॉन्से कर ले रहल और रिजर्वेशन कर ले रहल लोटेल में कुमा जे होनीमून करे के ओ लोटेल वा में सिपेक सेमेन जाए के लामेर हिया इतो कुछ अब कोमे आजकल देख बहु सब सब के ओकर पापिये बा ओकर कते इनविटेशन ओकर गातो ओकर फियंसाई
1: ओकर जोन डिपॉन्स कर ले हवन
0: हां सब ओकर खातिन यहां देख ब ओ ओके मिली मिसलमा सब लाकू बोलेला तोर पापिये कहां बा तो बस की सब कोई
1: सब के प्रेव चाहिए
0: सब के प्रेव बस हमने के केस हमने के बा On ne peut pas aller outre un compte, un document. Mais qui tient la sub petite jeune 5000 c'est réclamé correct ou tu auras tient la bataille.
1: Sub quoi que récit raqué que sub quoi hein.
0: Alors, t'as ab, on a dit qu'il a ça. उ केसवा कब दिलेब हुआ तो उकर आवे ढगाफते करके मांगले बा उमें उकर जोन प्रेजुजिस मोरल कुमा जे सुफेर होल बा उ ममजलवा के अब उमें डिटाई में ओके लिखी आर मिली ओके एगो कॉम्पेंसेशन उकर कुमा जे उकर रिपिटेशन खातिन।

0: पहले तक मजिया सब कोई बोले ये तो कोई से नहीं जाने ला कोरे एक बात छोकड़िया अब यहाँ तक कोई कौता शो करे लंसन तो नहीं जाने ला आदमी मजिया सोचते है कभी को हाथ पकड़ के आदमी को दूसर से गए तो बुरा चीज छोड़ के कुछ नहीं सोचे ला तो यहाँ बोली कि वो आदमिया के नहीं बा तो रेपिटेशन के डिट्रेस के जैसे तरेलवा बोलक साइकोलॉजिक जोन जोन कुमा जो सुफेयर होल बा ओके भी बोली इमोशनल जोन जोन कुमा जो है कि ह्यूमिलिएशन जोन जोन सुफेयर होल बा हियाँ ओके मांग करी कि देख पब्लिक हमके ह्यूमिलिए करता अभी तो बात जैसे एक बार आदमी बोले ला ना अरे का होल ओके ज्वाइन करी इंसान काम ही करत हुई तो बोली कि या कहूँ फलना कि कुमार नहीं शादी खुशी रहे तो का होली से दिया कैसे कुमार जी हई आ रही हो गल तो यहाँ देख ला सब चीज जो रिपचिय होल बा वो भूमेश्वर के वो मांग सकी करे एगो पैसा आर ओकर पैसा ओके मिले के चाहेला अब हमने देखी ला सर जैसे पहला चीज बोली से ना सब चीज ओकर गातू ओकर जो जो दीपांश होल बा आर जे घर हो मजे नहीं अभी आजकल तीन कार आदमी के जैसे बोले थे तरह ना नहीं है सके लंसन शादी करे घर के भीरी पसी जैसे हमने के माँ बाप मजा कब शादी करे हमने के हम तो शादी कर लिए माँ बाप के घर के आगे कहाँ वो बकत मजे
1: है रहल सब रहल आज हाँ आज रहल। आज तो लामोद हो गल बा एगो बैंक्वेट बैंक्वेट में शादी करे के परिवार के तनी खुशी करे के सब कोई के प्लेज या करे के
0: हाँ तो देख लो हियाँ ई एगो फोत एगो फोजु जिसके जोन होल बा उ अदमिया के सब चीज जोन जोन ओकर संगतिया ओके कुमा जे रिपोस करी ओकी कजे से दिया नहीं होल काहे होल अब ओकरे बेचारी के चाहेला एगो एक्सप्लिकेशन दे के हाँ दे देवेला भी एक्सप्लिकेशन जैसे लाकुर के बोली कैसे पीठ है गल जोन अदमिया के बात कर लग तो बोली देख ले वो हाँ तो बा अब छुकड़वा में बलाम डाला था तो ई खातिर सब दिखिला सा हमने के कानून देवेला कुमा जे एगो पैसा ओकर मोगाल के और ओकर कुमा जे साइकोलॉजिक के जोन जोन जोन सिर भी होल बा आर चीज अब दिखिला सा कादो तो बड़का चीज हो रखल बाग तो दे दिले बा हई ऊँटा ऊँठी दे दिले बा बाघ हुआ था ऊँठी दे दिले बा एक बार कादो दिले बा अरे हमने के कुछ सिविल मोशियाँ का बोले बस कि यहाँ तक कादू तो दिया गल बा कोनो तो जोली जोली देखो मोट दले हो बड़का बड़का ओमेगा खुशी आके आगे दे दिले बा तो मोतवा उ कदवा का हुएला बड़का बड़का है बा कैसे बताना बा बताना दिल हुई बाग दिल हुई उ कदवा ऐसन ऐसन चीज का हुएला का कानून बेलवा कर तो हमने देखी ला सर हमने के कुछ सिविल मोशियाँ एनकाद्रे करेला रेस्टिट्यूशन दे कादो मतलब रेतुले करे के कदोआ आर जोन जोन जीबियाँ भी दिल हो कुमा जे एगो दूसर जो के चाहे ला रेतुले करे के आली कादो जैसे हमने बोली सा गातू गातो एगो लेपो करे लेको गातो किन ले बा दू दे मिल थ्वा मिल मिल ओपी में अभी के गातो कबिलताज के दिले बा तो भैया 10,000 से ऊपर से तोरा कमती नहीं है 10,000 फासिल नहीं बा एगो आदमी के मिले के कानून बोले ला कि ऐसन में रिस्टिट्यूशन कादो मिले ला जोन के एगो वाले बा एनवी दे मोयाज पसी उत कटले रल फियांसाई खातिन शादी खातिन अब जब दे देले होई बिजू बिजू ही बताना या कानी कुछ देले होई तब बिजू तक बान चीज है सकेला उ ओके कुमा जे देले होई अब उ बिजू जे है ला सकेला एगो बिजू ऐसन है कि उच अपन एगो परिवार के बिजू है जाने ला लागन लोग कब शादी करेला कैसे पहले तो क्वीन एलिजाबेथ सब रहल शॉल उल रहल तो क्वीन एलिजाबेथ से बोझ शादी करे तो लाहेन के कुमा जी के वही में है एकर जोन हार पेन है
1: जन बोले ला पुछते ही नहीं हार जोन है जोन अपन दादा पर दादा के दादी लोग जे दल्ले होवन वो अपन पतो खतिन रखले होवन और वो चल ले आवता
0: रत्ना जी हम इसे कैसे ज्यादा नहीं सब बोले यही बोले को जाता है तू खूब बोला कि ऐसने ओकर कुमा जा हे लूम जिसे हमने बोला सांगले में तो आई हिंदी में हमके नहीं
1: पुछते ही नहीं बोला जाला हाँ
0: तो ई देले होई होने या एगो बाघ हो या कुछ कोनो कादो देले होई या कोनो दोनाशो देले होई डोनेशन में एक तो के देखो दान नियर में देखो सब ओके चाहेला रेतू ने करे के और सेतु ओ कब भाई भाई परिवार से हौ परिवार में जैसे बोलम के तभी नहीं सको जब हम लिमिट स्पीक करे उसे तो ओके चला रेतू ने करे के तब कुमा जे ई आर कादो हुआ बोलेला तो ई देखेला छोटा छोटा सिपोजो कादो रही आ लोग बोली के

0: काल देले हो एगो पाके सोकोला बड़का पास को बिस्कुट ई के नहीं ई के कुमाजा कुमाजा नई नई से रह
1: पर जस्ती जस्ती जहां दे पौसे कर ले हवर ऊ में जस्ती है कुमाजा ओकरा चाही अगर तू ने करे के
0: दिखे ना ई में कुमाजा आके यहां कैसे वेला
1: कहाँ से शुरू हो जाला। तो बिल्कुल आज जैसे रघुनंदन जी हमनी के समझेलन कहाँ से शुरू होल बात बतवा एगो सोशल मीडिया पर जानकारी तोरा मिलल जैसे तू खुशी हो गल प्रोमेस कर देलक परिवार सब इन्वॉल्व हो गल और परिवार संगे जितना परल तोरा देपों से करे के बहुत बहुत परिवार ऐसन दिन देखले होवन जहाँ पर सब पारे हो गल बा शादी के खुशहाली सब कोई बाँटता पर ऐसन कुछ हो जाला जहाँ पर शादी नहीं होवेला तक कितना कितना मुश्किल पड़ेला। और जैसे रघुनंदन जी हमनी के समझेलन कि चाहिला ओकरा कैसे तू दिमास करब कैसे तू करब कानून देने से तोरा कैसे एडवाइस मिलेला कैसे चाहिला तोरा नोटिस विदा करे के और बिल्कुल है सब में बहुत लेता अंगाजे हो जाला बहुत इमोशनली तू अताशे हो जाइब और बहुत बहुत मुश्किल के सामना करे के पड़ जाला। तो बिल्कुल आज के कार्यक्रम में कानून देने से कैसे प्रोमिस दे मोयाज उच्च हो जाला कैसे कानून बगल से तोरा मिलल एगो एडवाइस आज के कार्यक्रम बिल्कुल इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग प्राप्त हुआ अपर्णा का जो तकनीक पर हमारे साथ बनी हुई है दीपशिका प्रोडक्शन असिस्टेंट और हमारे साथ बने रहे निज़ाम हमारे प्रोड्यूसर। इस कार्यक्रम को पुनः आप सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के अंतर्गत रेडियो मनोरंजन पर। इसी के साथ कपिल देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और बिल्कुल आज 2 अक्टूबर का दिन है गांधी जी को समर्पित आज का ये दिन इस अंतिम गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं समाप्त करेंगे फिर मिलेंगे एक अगले कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार शुभ दिन आप सभी को।

0: Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.
1: घड़ी मिला लीजिए, समय शाम के ठीक 4 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।
2: जी सभी को हमारा नमस्कार। उपभोक्ता संगठन ने ईंधन के दाम में गिरावट लाने की मांग दोहराई है। आसिम ने VAT में 2 रुपए की कमी लाने की मांग की है। 4 दिन पहले ईंधन की कीमतों में 10% की वृद्धि लाए जाने के बाद आज एक प्रेस सम्मेलन में आसिम ने ये मांग की। इसके महासचिव जयंत चिलम के अनुसार पेट्रोल पर कुल टैक्स और शुल्क मिलाकर प्रति लीटर करीब 30 रुपये की अतिरिक्त लागत आती है, जबकि डीजल पर यह अतिरिक्त लागत लगभग 25 रुपये प्रति लीटर है। शेरी सिंह से आज फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन में गवाह के तौर पर पूछताछ की गई। उन्हें मॉरिशस की ओर से पूर्व ग्रांट थॉर्नटन एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड को दिए गए एक कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में बुलाया गया।

था। मॉरिशस टेलीकॉम के पूर्व सीईओ कुछ महीनों के लिए राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर मॉरिशस की प्रशासनिक परिषद में भी रहे थे। जांचकर्ता ये जानना चाहते थे कि ये कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट किन परिस्थितियों में दिया गया था। इस मामले में पूर्व ग्रांट थॉर्नटन एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ सत्तर हाजी अब्दुल्ला को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ये अस्थाई आरोप

0: जिला अदालत में हटा दिया गया था। क्रिस्टोफर जोनाथन मैग्डलेन को श्री बालकृष्ण लक्ष्माया की सुनियोजित हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जज मेहदी मनराखा ने आज सुबह असाइजेज में ये सजा सुनाई। क्रिस्टोफर जोनाथन मैग्डलेन ने अपना जुर्म स्वीकार किया। फिलहाल वो एक अन्य हत्या के लिए 23 साल कैद की सजा काट रहा है। और विदेशी खबरों में, ब्रिटेन में डीजल की कीमत पहली बार 2 पाउंड प्रति लीटर तक पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी ईंधन निर्यात पर रोक लगाने के का विचार करने के बाद ऐसा हुआ है। मध्यावधि चुनावों से पहले ट्रंप पर डीजल के निर्यात पर रोक लगाने का दबाव डाला जा रहा था। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: चिट्ठी आई है
2: आपकी चिट्ठी मिली आपकी चिट्ठी मिली आपकी चिट्ठी मिली। इट्स ऑलरेडी 4:06 और मैं हूँ रत्न।

ना पहुंची हूँ रेडियो मनोरंजन के लहरों पर आज के इस कार्यक्रम को लेकर जहाँ कहीं से भी साथ जुड़े हैं तहे दिल से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना, आपका साथ दूंगी शाम के 5 बजे तक। और बिल्कुल आज 2 अक्टूबर एक ऐसा महान दिन, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, साथ ही साथ महाराष्ट्र भारत के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन आज ही के दिन मनाया जा रहा है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हमने इस प्यारे से गीत के साथ की, और ये गाना जो हमने अभी बजाया स्वरा होसा की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा सा गीत। और चलिए इसी के साथ, जी हाँ, जब हम महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो आप सभी को याद होगा कि उनके जीवन के कुछ ऐसे सिद्धांत थे जो आज भी कई सारे लोग इन्हीं सिद्धांतों पर चल रहे हैं, सत्य अहिंसा। ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बिल्कुल एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ है जहां पर हमारे साथ एक ऐसे दोस्त ने ये बात शेयर की है। जब वे भारत गए थे पढ़ने के लिए और वहां पर एक ऐसी घटना हुई जिसका अनुभव उन्होंने हमारे साथ बहुत ही प्यार से साझा किया है, जो आज के इस कार्यक्रम में हम ज़रूर शामिल करना चाहेंगे। और बिल्कुल ये भी सत्य और अहिंसा की ताकत पर बेस्ड एक छोटी सी कहानी तो हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल ये एक ज़िंदगी का अनुभव है जो उन्होंने हमारे साथ साझा किया है। आप बताते हैं कि जब आप कुछ सालों पहले भारत गए थे पढ़ने के लिए तो एक ऐसी घटना ने आपको पूरी तरह से हिला के रख दिया, बदल के रख दिया। तब आप कॉलेज के दूसरे वर्ष में थे और अपनी डिग्री समाप्त करनी थी आपको, और बहुत ही ज्यादा प्रेशर बढ़ा हुआ था। हॉस्टल में आप रहते थे अपने दोस्तों के साथ और पढ़ाई का समय चल रहा था, एग्ज़ाम्स सर पर थे, इसीलिए आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ही जी जान लगाकर कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। पर तभी एक ऐसी घटना हुई कि अचानक से आपको याद आया कि आपकी घड़ी आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही, और आपने सभी ओर ढूंढा इसको पर आपको कहीं आपकी घड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। तब आपने इस बात को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया और कुछ ऐसा हुआ वहां पर, सभी ने बहुत हंगामा मचाया, काफी शोर हुआ और सभी ने कहा कि हो सकता है कि वार्डन का जो सहायक, जो काम कार्य करता है, जो साफ सफाई करता है, हो सकता है कि उसने चुराया हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही है, किसी के पैसे गायब हो रहे हैं, किसी की कुछ कीमती चीज़ें गायब हो रही हैं, और आज आपकी घड़ी गायब हो गई है। तो हो सकता है कि जब वो लड़का सफाई करने आया हो तब उस लड़के ने, हो सकता है कि आपकी घड़ी चुराई हो। हॉस्टल के कुछ लड़कों ने गुस्से में आकर उस लड़के को पकड़ा, रामू नामक उस लड़के को बहुत ही डरा धमका कर पीटने लगे, हिंसा पर वे उतारू हो गए। और कुछ ऐसा ही होने वाला था तभी आपका एक बहुत ही अजीज दोस्त आया और उसने सभी को, सभी के बीच में जब वो लड़ाई हो रही थी तब बाहर आकर उसने बड़ी ही हिम्मत से सभी को रोका और उस रामू को एक कोने में ले जाने की इजाजत ली। रामू को उस कमरे में लेकर आपने बताया है यहाँ पर कि आपके दोस्त ने उसे पानी पिलाया और बिना किसी गुस्से से रामू से ये कहा कि मैं जानता हूँ कि तेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है, अभी बहुत मुश्किलों का सामना तू कर रहा है, पर ये जो तू कर रहा है ये सही नहीं है, और इस वक्त सभी गुस्से में हैं, हो सकता है कि तुझे पुलिस के हवाले कर दे, पर तू अगर सच बताएगा तो मैं इनको रोक लूँगा। और जब आपने ये कहा तो बहुत ही हिम्मत के साथ रामू बहुत ही

ढीला पड़ गया और फूट फूट के रोने लगा। ये सारा आपके सामने हो रहा था, ये सारा किस्सा आपके सामने, आपकी आंखों के सामने चल रहा था। और उसने अपनी जेब से वो घड़ी निकाली और आपके दोस्त के हाथ में रख दी और उसने बताया कि उसकी माँ बहुत ही बीमार थी और दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। सख्त बहुत समय बहुत बुरा चल रहा था, इसीलिए उसने सोचा कि ये घड़ी वो बेच कर हो सकता है कि अपनी माँ का इलाज करा सके। और तभी ही उस दोस्त का ये शांत स्वभाव देखकर सभी ने रामू को भी माफ किया और सभी ने पैसे इकट्ठा करके रामू को थमा दिए। हालांकि ये वाकयात काफी फिल्मी भी हो सकता है, क्योंकि कई बार हमने फिल्मों में भी ऐसी घटनाओं को कई बार देखा होगा, अनुभव किया होगा। पर इस घटना ने मुझे एक बात बहुत गहराई से सिखाई, जहाँ पर मेरे दोस्त के इस बर्ताव ने मेरे अंदर वो परिवर्तन लाया कि कई बार गुस्सा करने से, हाथापाई करने से, मारपीट करने से या फिर अपनी बात मनवाने से हो सकता है कि आप अपने ईगो को सैटिस्फाई कर लो, हो सकता है कि आप की बात सच भी हो जाए, पर कहीं ना कहीं वो सामने वाले के दिल में नफरत और कड़वाहट का बीज बो देता है। यही बात अगर आप प्यार से सुलझा दें तो काफी हद तक उस इंसान को अपनी गलती का एहसास भी होता है और इंसानियत का मान भी बना रहता है। और थैंक यू सो मच अगर आज के इस कार्यक्रम में आपने हमारी चिट्ठी को शामिल किया हो। सो विद दिस, बिल्कुल ये एक प्यारी सी, ये प्यारा सा मैसेज आया और हमने इस चिट्ठी को आज के दिन के लिए बचा कर रखा, क्योंकि आज बिल्कुल एक बहुत ही ख़ास दिन है, 2 अक्टूबर, जहां पर हम अहिंसा की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं। कुछ लोग बिल्कुल आज के ज़माने में मानते हैं कि ज़माना बदल चुका है और ये गांधीवादी जो है, ये जो कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल्स आज के ज़माने में नहीं चलते। मैं समझती हूँ अभी इस वक्त बहुत सारे लोग रेडियो सुनते हुए भी इसी बात पर टिप्पणी कर रहे होंगे, डेफिनेटली। पर सच में देखा जाए तो आज भी सच का साथ बहुत लोग देते हैं और अहिंसावादी बनना पसंद करते हैं। जहां पर कुछ बातें शांति से अगर सुलझाई जाए तो फिर झगड़ा क्यों करना है भाई। और अगर ये बर्ताव ने आपको अंदर तक हिला के रख दिया है तो मतलब ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी क्वालिटी है जो आज कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास में ही कुछ ऐसी बातें होती है जिसके लिए हम चाहते हैं कि भाई हम उस इंसान को 2 बातें सुना दें या तो फिर उसे जाकर 2 झाड़ लगा दें, पर ऐसा होता नहीं जी। कई बार बस इग्नोर करना, शांत रहना, यही सबसे बड़ा सलूशन है। और वैसे भी मौन कहते हैं ना, साइलेंस में बहुत ताकत होती है। सो थैंक यू दोस्त फॉर जस्ट शेयरिंग योर आइडियाज, योर व्यूज और आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस जो आपने आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शेयर करने की हिम्मत बताई है, दाद देते हैं आपके हिम्मत की। एंड देर आर मेनी अराउंड जो अपनी बातें हमारे इस कार्यक्रम में रखना चाहते हैं, सो डोंट हेजिटेट, 4028070 पर दिल खोल कर आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। अगेन 5250620 पर अगर बात ना भी करना चाहें तो मैसेज के द्वारा भी, जस्ट अ हाई, ए हेलो, लविंग द शो, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसा लग रहा है प्रोग्राम, यू कैन डेफिनेटली join in with us on 5250620 नंबर है रेडियो मनोरंजन का। मैं हूँ रत्ना, आपका साथ दे रही हूँ। सो होप यू विल हैव अ ब्यूटीफुल टाइम विद अ ब्यूटीफुल म्यूजिक ऑफ कोर्स।

0: RM3 Radio. Radio.
1: आपकी चिट्ठी मिली एंड विद दिस बिल्कुल प्यारा सा ये गीत था फ्रॉम द मूवी जिगर और अभिजीत और साधना सरगम की प्यारी सी आवाज. एंड डेफिनेटली इस वक्त रास्तों पर भीड़ जमा होने लगी है भाई. कई बार आधे घंटे का सफर एक घंटे जितना लंबा हो जाता है. इसमें करना कुछ नहीं है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है और बिल्कुल संयम और नियम के साथ थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है. मूड को ख़राब नहीं करना, बिल्कुल भी मूड को ख़राब नहीं करना. कई बार होता है ना कि रास्तों पर गाड़ी चलाते चलाते मूड हमारा ख़राब होने लगता है, चिड़चिड़े होने लगते हैं. आपको एक सच बात बताएं, ये जो मूड ख़राब होना मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को ड्रेन कर रहे हो, एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है. कभी मूड खराब हो जाए तो चॉकलेट खाया करो यार, मूड एकदम टकाटक हो जाएगा बिल्कुल. एंड विद दिस कहते हैं ना कि चॉकलेट में डोपामाइन होता है, तो डोपामाइन आपको ज़रूरी है. डोपामाइन लेने से ही आपका मूड एकदम बूस्ट हो जाता है. एनीवेज ये तो कुछ बातें ऐसी हम शेयर करते रहते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ एंड विद लवली मिक्स ऑफ म्यूज़िक आपके लिए हम लेकर आए हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन. इस वक्त मैं हूँ आपका साथ देने के लिए विद नेक्स्ट चिट्ठी. एंड ये जो हमारी नेक्स्ट चिट्ठी आई है ना, हाय दिल भारी हो जाता है कुछ ऐसी चिट्ठियों को पढ़कर, क्योंकि आपकी जो आप बीती है, आप पर जो बीत चुकी है उसे आप हमारे साथ शेयर करते हैं. डेफिनेटली कुछ आप बीती कहानियाँ, कुछ ऐसी चिट्ठियाँ हैं जो सच में हमें बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाती है. और आज एक चिट्ठी आई है यहाँ पर, आप लिखती हैं, हेलो दीदी, अगर आप इस कार्यक्रम में हमारे इस कहानी को रखती हैं, थैंक यू सो मच. एंड अगर मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, बट ये एक ऐसी सच्चाई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. एंड मैं बोलना चाहती हूँ दैट यस, आप लिखती हैं कि आपके जो मंगेतर हैं, ओके, फियांसे आपने लिखा है, यस, आपके जो फियांसे या मंगेतर हैं उनके बारे में आपने लिखा है. लिखती हैं कि कुछ साल पहले हमारी मंगनी हुई और बिल्कुल मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं उस इंसान के साथ जुड़ने वाली थी जो जिसे मैं बहुत प्यार करती थी. और बिल्कुल उसी दरमियान मुझे काम भी मिला जो मेरी खुशी में एक तरह से बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि बिल्कुल

शादी करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और मैं चाहती थी कि मैं अपने पिता को हेल्प करूं। यहां पर काम मिलते ही मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मेरा जो काम था, मेरे जो वर्किंग आवर्स थे, वो कई बार ऐसा होता था कि मेरा जो काम है काफ़ी देर तक फिनिश होता था, कई बार 9 बजे, कई बार 10 बजे, और मुझे ट्रांसपोर्ट प्रदान किया जाता था, काम की ओर से मुझे प्रोवाइड किया जाता था, और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आए दिन हमारे बीच में कुछ ना कुछ अनबन होने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि जब एंड ऑफ योर पार्टी थी, मेरे माता पिता ने मुझे बिल्कुल परमिशन दी थी इस पार्टी को अटेंड करने के लिए, क्योंकि ये हमारे काम में जितने भी लोग थे साथ मिलकर एंड ऑफ ईयर मना रहे थे और इसमें मैं भी जाना चाहती थी। जब मैं वहां गई रात के 9:30 बजे लगभग, मेरे मंगेतर का फोन आया और बहुत ही उखड़ कर मुझसे कहने लगा कि वो मुझे लेने आ रहा है। जब मैं थोड़ा सा घबराई हुई थी, वो मुझे लेने आया लगभग 10:15 बजे के करीब। वो मुझे लेने आया और बिल्कुल मूड उनका बहुत ही उखड़ा हुआ था, बहुत ही नाराज़गी भरी आवाज़ में उन्होंने

था, बहुत ही नाराजगी भरी आवाज में उन्होंने पा रही थी कि इसका बर्ताव क्यों ऐसा है। घर ले जाने के बजाय वो मुझे खेतों में ले गया, गाड़ी में लॉक डालकर उसने मुझे कस के दो तमाचे मारे, और ऐसे में ना मैं चीख पाई ना मैं चिल्ला पाई। मेरा चेहरा लाल हो गया, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, मेरी धड़कनें इतनी ज़ोरों से तेज़ हो गई, मेरे पैर कांपने लगे, मैं सुन्न सी पड़ गई। मैं नहीं समझ पा रही थी कि ये क्यों मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद उसने कहा, चलो अब मुँह ठीक करो और मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ। जब वो मुझे घर छोड़ कर निकल चुका था, तब मेरे पिता ने मेरी हालत को देखकर मुझसे ये पूछा कि मैं क्यों इस तरह का बर्ताव कर रही हूँ, क्या कुछ हुआ है, क्या किसी ने कुछ कहा या फिर किसी ने कुछ कह दिया या कर दिया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मैं फूट फूट कर रोने लगी, कांपने लगी, और मैं अपने आपे में नहीं थी, मैं अपने बस में नहीं थी। कहीं ना कहीं मेरे चेहरे पर इतना पसीना, मेरी ये हालत देखकर मेरे पिताजी और परेशान हो गए और उन्होंने मुझे शांत किया। लगभग डेढ़ घंटे तक मैं यूं ही रोती रही। बहुत ही मुश्किल से मैं शांत हो पाई हूँ और मैं बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ऐसी हालत में मेरी माँ ने मुझे बहुत बहुत संभाला और मुझसे बिल्कुल कहा कि क्या हुआ था। मैं बहुत हिम्मत करके ये बात अपने माता पिता से शेयर कर पाई। जैसे ही मैंने ये बात शेयर की, मेरे पिताजी बौखला उठे और उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम अपने मंगेतर को कभी नहीं मिलोगी, मैं यहीं पर तुम्हारी शादी उससे तोड़ता हूँ, तुम्हारी मंगनी उससे तोड़ता हूँ, और बिल्कुल मुझे तुम किसी भी कीमत पर मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा उस लड़के को मिलो, उससे कोई संपर्क रखो। और अगले ही दिन मेरे पिता ने वो सारी चीज़ें उठाई, एक बड़े से थैले में डाली जो वो मुझे दिया करता था, मेरे तोहफे, मेरी चीज़ें, और अगले ही दिन मैं पहुंच गया। अब लिखती हैं कि मेरे पापा गए आपके ससुराल और वो सारी चीज़ें उस लड़के की माँ को लौटा कर बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही शांति से आपके पिता ने उस रिश्ते को वहीं पर ख़त्म किया। मैं नहीं जानती थी कि इसके बाद मेरा क्या होगा, ज़िंदगी कैसा रुख लेगी। कुछ समय तक मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, परिवार का सामना करना पड़ा, और यही नहीं, मेरे यहाँ मेरा परिवार काफ़ी कंज़र्वेटिव है, बहुत ही पुराने ख्यालों वाला है। बहुत समय तक मुझे उनकी ताने, उनकी बातों को सुनना पड़ा, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा असहनीय था। मेरे माता पिता के लिए ये असहनीय था, पर एक बात की तसल्ली है कि मेरे माता पिता ने मेरा साथ दिया। मेरे छोटे भाई तक ने अपने आपे को संभाल कर रखा। मेरे भाई ने तो ये तक कह दिया था कि मेरे बस में होता तो मैं उनका मुंह तोड़ देता। पर जो भी हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। मैं इस बात को समझ नहीं पा रही थी पहले, पर आज इतने दिनों के बाद हिम्मत जुटा पाई हूँ कि आपके इस कार्यक्रम में मैं अपनी बात को रख सकूं। सुनिए
सो गाइस आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल बहुत ही भारी भरकम चिट्ठी थी ये।

थैंक यू डार्लिंग, आपने बहुत ही हिम्मत दिखाई है और सच में मैं समझ पा रही हूँ कि एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है एक ऐसी सिचुएशन से गुजरना जहाँ पर उस व्यक्ति से मार खानी पड़ रही है, बातें सुननी पड़ रही हैं जिसको आप दिल से चाहती हैं। और हमारे समाज में आज भी बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनके बीच में कुछ ऐसी अब्यूसिव हरकतें हो जाती हैं जो उनके रिश्ते को इतना कड़वा, इतना हद तक टॉक्सिक बना देता है कि आगे चलना नामुमकिन हो जाता है। और आपने जो भी किया, आपके पिता ने जो भी किया, बहुत ही सही किया, काबिले तारीफ है। एंड डेफिनेटली जिंदगी ने हो सकता है आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रिजर्व करके रखा होगा, आई एम श्योर विद दैट। और बिल्कुल आप अपने काम पर फोकस रखें, अपने आप पर फोकस रखें, अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा सा समय आप बिता रहे हो, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है और पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे कभी भारी नहीं होते, कभी मुश्किल नहीं होते। सो आई एम श्योर आप बस हिम्मत रखिए और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए क्योंकि जिंदगी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, एंड लाइफ गोज ऑन। बिल्कुल आपकी चिट्ठी मिली, प्रोग्राम हैपनिंग राइट ओवर हियर रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। मैं हूँ रत्ना, आपका साथ दे रही हूँ शाम के 5 बजे तक और इस वक्त इट्स ऑलरेडी 4:35। और चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ प्यारा सा गीत लेते हैं।

आपकी चिट्ठी मिली रेडियो मनोरंजन की लहरों पर और इस सफर में बहुत ही प्यारे प्यारे गीतों के साथ प्यारी प्यारी बातें आपकी ओर से हम शेयर कर रहे हैं। दोस्तों कहते हैं ना जिंदगी में बहुत दूर तक आपको चलना है साथ, तो बहुत बार एक दूसरे को माफ करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। एक दूसरे का साथ पाने के लिए साथ देना भी पड़ता है। चाहते हैं कि कोई आपको बहुत प्यार करे तो उस प्यार को पाने के लिए प्यार भी देना पड़ता है, इज्जत देनी पड़ती है, सब्र रखना पड़ता है, तब जाकर एक रिश्ता मजबूती से जुड़ पाता है। और आजकल देखा गया है कि रिश्तों को जोड़े रखने की मेहनत कोई नहीं करता, तोड़ने के बहाने हजारों ढूंढते हैं, पर जोड़े रखने की हिम्मत दिखाने वाला बहुत कम होता है। जिंदगी के सफर में रिश्ते जोड़ना, जुड़ जाने के बाद उसे बस संभाले रखना, यही असली अहमियत होती है जिंदगी की। और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर थोड़ी ही देर में बस लगभग हम अंत तक आ चुके हैं। कई बार कहते हैं ना कि दोस्तों के साथ, अपनों के साथ चाय पीने का जो मजा है वो भी कितना लाजवाब होता है। भाई चाय मजेदार नहीं होती, वो साथ मजेदार होता है, वो रिश्ता मजेदार होता है, इसीलिए हर चीज अच्छी लगती है। इसीलिए रिश्तों को नमकीन बनाए रखें, रिश्तों को मीठा बनाए रखें, रिश्तों को स्वादिष्ट बनाए रखें, क्योंकि यही है वो सीक्रेट जो आपकी जिंदगी को हसीन बनाए रखता है। और जिंदगी में कहते हैं ना कि लोग बहुत मिल जाएंगे पर प्यार करने वाला वो इंसान बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है ऐसा नसीब, और जिसे मिल जाता है बस आज के जमाने में तो हम कहेंगे आपकी लॉटरी लग गई। अगर आपकी लॉटरी लग गई है तो भाई इस लॉटरी को संभाल के रखिए, क्योंकि बार बार लॉटरियां नहीं लगती, लॉटरी बस खुशकिस्मत वालों को ही मिलती है। एंड विद दिस कमिंग

राइट अप टिल द एंड. आज के इस प्रोग्राम को इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ जोड़ेंगे. कुछ गाने होते हैं ना बहुत ही कह सकते हैं कि जिंदगी में एक तड़का देते हैं, और कुछ गाने इतने प्यारे इतने मज़ेदार जैसे मानो बस इनको सुनते ही रहें और इनके साथ हमारी शाम ढले. बस और कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी बस एक सुकून का पल ढूंढती है, और आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुकून के पल मिलना बहुत ही मुश्किल. आज की ये शाम अपनों के साथ बिताइए. बिल्कुल ऑफ कोर्स, बिकॉज आज है फ्राइडे की शाम, एंड फ्राइडे के बाद आता है एक ब्यूटीफुल सा वीकेंड. सो एक अच्छा सा वीकेंड प्लान करें, अच्छा सा समय बिताएं. डेफिनेटली अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे जो हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं. सो आपको हम कहेंगे बेस्ट विशेस, और बिल्कुल मन लगा कर पढ़िए. और जिनके एग्ज़ाम्स नहीं हैं वो अपने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ एक बेहतरीन समय बिताएं. और बस आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं पर फुल स्टॉप लगाएंगे अभी थोड़ी ही देर में. और हमारे बाद आ रहे हैं चुलबुली सी बातों को लेकर रोशन हर नाम, जो हमेशा मज़ेदार कार्यक्रम में एक बहुत ही प्यारा सा तड़का मारते हैं. तो प्यार से आप उनका साथ दीजिए और हमें दीजिए इजाज़त. भूलिएगा नहीं, अगले शुक्रवार को एक बार फिर हम मिलेंगे आपकी चिट्ठी मिली प्रोग्राम में, जहां पर आप ही के जज्बातों को, आप ही की बातों को हम रखेंगे इस कार्यक्रम में. और बेशक आज की जो भी चिट्ठियाँ आपने हम तक पहुँचाई हैं, दिल से हम आपको कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर करने के लिए. और इस कारवां को बस यूं ही हम आगे बढ़ाते रहेंगे, जिंदगी के हर मोड़ पर हम बस आपका साथ देते रहेंगे, कोशिश यही जारी रखेंगे. तो चलिए इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे चलते चलते. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, जिंदगी बहुत हसीन है.

0: 94.6, 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अब प्यार मोहब्बत के बात करबा तो खाली एक के गो आदमी के याद करबा, अगर वो मिल जाए तो पूरा जमाना के भूल जाएबा। कैसे ऐसे ऐसे केला हो, ये तो खाली फिल्मी बात है। तो चलो, रत्ना जी द्वारा बहुत ही सुंदर सा प्रोग्राम आप सुन ल, आपकी चिट्ठी मिनी प्रोग्राम। अभी 5:06 हो गए बा और तोहर खातिर धमाकेदार कार्यक्रम कलाकार के बाद।
2: कलाकार के बाद

नमस्कार प्यारे श्रोतागण, भाई बहन लोग, संघत्यालो गण, कैसे हो अजा आज शुक्रवार के सांझ और 5:07 हो गल बात और लोग तो बहुत उत्सुक हो वसा कलाकार के बार प्रोग्राम सुने खातिर। और हमनी के संगे आज एगो नहीं, दूगो नहीं, बल्कि तीन तीन कलाकार हो अंजा।

0: और ऊपर से नारी शक्ति यानी महिला कलाकार एक होवन बहन शोभा जी जो इन आरलन आजोकर पॉटू है साथ ही साथ आल होवन सुनीता जी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आल होवन जा नेहा जी चल हमनी शोभा जी से बात करी ले जा पहले शोभा जी कैसे हुआ जा
1: ठीक है जा प्रणाम सभी को
0: प्रणाम ठीक हुआ जा
1: जी सब कोई ठीक बा भी
0: हां सब कोई ठीक बा अभी
1: सभी को प्यार भरा प्रणाम करता हूं
0: हां बहुत धन्यवाद हमनी के आमंत्रण स्वीकार कर ल एकर खातिर दिल से तोहरा शुक्रिया करत हई
1: बहुत
0: तो चला शोभा जी तोहरा स्वागत तो होगल बा अब चला हमनी बढ़ब जा सुनीता जी की ओर नमस्ते सुनीता जी
2: नमस्ते भाई रोशन
0: कैसे हो सुनीता जी
2: अभी ठीक ठाक
0: ठीक ठाक हो
2: हाँ।
0: और तोहरा कैसे पूछा था जा स्टूडियो में आके पहली बार आल हुआ जा
2: वैसे तो रेडियो प्रोग्राम पहला हला
0: हाँ। हुआ परंतु टीवी के प्रोग्राम में अनेकों बार आल हुआ जा
2: हाँ, हाँ।
0: ओके तो चला अब तोहर उपरांत हमनी स्वागत करब जा नेहा जी के कैसे हुआ जा नेहा जी
3: नमस्ते भाई
0: हाँ नमस्ते
3: अभी तक
0: सब ठीक बा काहे सब लोग बोले तो अभी तक चला बोले कि हमेशा सब ठीक रही ना
3: पहली बार आ रहे
0: ना कोई बात नहीं लेकिन पहली बार आके तो धमाका मचा दिला बहुत अच्छा तो हमनी के जो तीन कलाकार है श्रोतागण ये तीन कलाकार के आवाज में सरस्वती माता बसल हुआ जब बोलो के तू गाना सुनबा तो तोहर मन बहल जाए तो चल हमने आज सुनीता जी से शुरुआत करी ले जा शुभ आरंभ हमनी के कलाकार के बाद हमने सुनीता जी से करब जा रेन्यू मनोरंजन और रैम फ्री जो न चैनल है ये तोहर अपन मन पसंद चैनल है जहाँ पर अनेकों प्रकार के प्रोग्राम चलते रहेला तो सुनीता जी तोहर स्वागत बा और जिंदगी में का करेला कहाँ रहेला और हमनी के तनी अपन परिचय दिया सुनीता जी
2: हाँ जी
0: बताओ
2: बहुत धन्यवाद भाई रोशन हम सुनीता एमगाज गनुआ हैं थंगबा पोलवी से आल हैं
0: अच्छा और जिंदगी में का करेला
2: जिंदगी में हम काम करेला फिर बाद में काम के बाद में हम गायला
0: अच्छा गावेला
2: हाँ
0: बहुत अच्छा तो जिंदगी में काम करेला जिंदगी में तो हर एगो परिवार बा जिंदगी में गावेला और जिंदगी में भी स्टूडियो में हुआ बहुत बहुत धन्यवाद और हमनी बरब से नेहा जी की ओर नेहा जी अपन बारे में तनी हमनी के सुनावा जा
1: भाई जी हम नेहा मुक्का से हाय हाँ हम काम करीला सालों में एस्थेटिशियन है
0: अच्छा
1: हाँ
0: एक दिन थोड़ी आप तब हम
1: हाँ जरूर जरूर
0: आगे तनी अपन के सज संवार ले
1: जरूर जरूर
0: महिला के खाली संवारे ला कि पुरुष लोग के
1: नहीं नहीं सिर्फ महिला लोग के
0: तने सका पाए तब
1: नहीं तो भाभी के लेके आइया
0: अच्छा तो बहुत बढ़िया तब भाभी जी के हम लेके चला तब
1: हाँ हाँ बढ़िया रही
0: तो नेहा जी तू भी संगीत में रुचि रखेला जा
1: हाँ हाँ हमार शुरुआत अभी गल साल से होल
0: गल साल से
1: हाँ
0: अच्छा
1: हाँ, हाँ। दिन से नहीं
0: संगीत के शिक्षा अभी पावत हुआ संगीत के शिक्षा
1: हाँ हाँ हाँ
0: अच्छा तो गत साल से ई शिक्षा शुरू होल लेकिन हाँ। गाय के जो मामला बा जो हमने बोला था गायकी के क्षेत्र में वो बहुत पहले से
1: रहल वैसे हाँ। मौका नहीं मिला था
0: नहीं मौका मिला था हाँ, हाँ। काम धाम के पीछे
1: हाँ।
0: काम काजुओं के पीछे
1: हाँ।
0: तनी समय बट जाला ना
1: हाँ।
0: लेकिन फिर भी तो लोग के हमने दाद देवत हैं जा बधाई देवत हैं जा कि इतना बहुत टाइट स्केड्यूल में भी समय निकाल के संगीत में रुचि रखेला जा ना
1: हाँ जरूर
0: तो बहुत धन्यवाद नेहा जी अब हमने बढ़ब जा दीदी शोभा जी की ओर शोभा जी
1: जी भाई जी
0: तू तो अलत हमने के प्रोग्राम के शोभा बढ़ा दिला सहेली लोग के ले ले आई ला जा तब बोला शोभा जी एक बार फिर हमने के श्रोतागण के बता दे कि कहाँ रहेला जिंदगी में का करेला और का करे कि ये राधाबाई तक बाद में हमने थोड़ा से पूछ अब जा बोला
1: संभावती दुमन है शोभा दुमन

0: हमारे घर के नाम हो संभावती डुमन, हमारे कागज के नाम सबको ही हमारा जस्ती शोभा डुमन से जाने लग जा।
1: और बहुत और हम, गाना बातोहर एमबीसी की सभा में देखा था।
0: हाँ, हाँ भाई जी, सरस्वती माँ के कृपा से भैया।
1: बहुत अच्छा। हमेशा जब कलाकार लोग से हमने बात करी ला जा, हर बार जब हर सप्ताह वे लग जा तो हम लोग के सराहना करी ला, परंतु लोग बोले नहीं तो ईश्वर का आशीर्वाद है, सरस्वती माता के कृपा है, हमने तो कुछ नहीं है सब। तो ये कलाकार के ओकर शान है, ये कलाकार के बहुत ही बढ़िया जो गुण है सब अपन में नहीं ला जा। काहे कि अहंकार में तो लोग कभो विश्वास नहीं रखेला जाना, हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखेला और सब कुछ जो होला ओकर मर्जी से होला,
0: ओकर कृपा से।
1: हाँ, तो सुनीता जी, आज हमनी के बतावा कि भोजपुरी में तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया बात करेला। देखा था जब प्रोग्राम से पहले अपन सखी लोग से बात कर रहता तब ढेर हंसत रहा भोजपुरी में। कैसे हंसे रहा भोजपुरी में? हाँ, ऐसे हंसे जा रहा भोजपुरी में।
2: गांव में पैदा हुआ ना, शहर में गईली शादी करी।
1: अरे बाप का बाप,
2: शहर में गईली शादी करी।
1: गांव हो या शहर ही तो कोई बात नहीं, परंतु के भोजपुरी के छला कायम रखे के। हाँ, बोला भोजपुरी के जो भाषा हो कैसे तुम्हारा लगाव कैसे हो?
2: भोजपुरी तब बचपन से हम दादा के सुनत रही, दादी के सुनत रही, माता पिता बोलत रहन भोजपुरी में, तो हमरो में चलाल भोजपुरी।
1: हाँ, हाँ, भाषा से बहुत प्रेम करेला।
2: हाँ हाँ, हमनी के भाषा।
1: हाँ,
2: चहेला बोले के, चहेला बच्चाई के।
0: अच्छा। चहेला बढ़ाई के।
1: हाँ, हाँ, भाषा बोलत हुआ चहेला बच्चाई के, चहेला बढ़ाई के,
2: बढ़ाई के।
1: तो ऐसने चाहना तुहरा करे के, और तुहरा जो संगीत के सफर है वो कैसे शुरू हो?
2: वो हम एको 11 बरिस के रली,
1: 11 बरिस के। हाँ,
2: 11 बरिस के रली, तो लगली जाए सत्संग में।
1: अच्छा।
2: सत्संग कीर्तन बैठका में जात रली, तो हुआ जाते जाते वो लोग कीर्तन भजन करे, तो हमरो मन चलाल गाय के, तो लगली गावे कीर्तन भजन, तो हमर में चलाल।
1: अच्छा।
2: अब खुशी से अब चाहत है भोजपुरी सीखे के, भोजपुरी गाय गाय के, तब हम एगो ग्रुप में हिली।
1: अच्छा, जो कीर्तन भजन बोलत हुआ। हाँ, सुनीता जी, वो भोजपुरी में रहा?
2: नहीं, वो कीर्तन साई बाबा भजन।
1: अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया।
2: लेकिन गावत रली,
1: गावत
2: गावत रली।
1: हाँ,
2: हुए से शुरू होल बैठका में, शिवाला में शुरू होल।
1: हाँ, और जैसे तो हर सफर शुरू होल।
2: हाँ,
1: म्यूजिकल सफर जैसे बोली रजा।
2: हाँ,
1: तो बहुत अच्छा। जब तुम्हारे गो ऐसा सुनहरा म्यूजिकल सफर है तो जिंदगी में कभी सफर नहीं करब, नहीं सुफे हुए बा।
2: हाँ,
1: हमेशा इसने चला रहे के हमेशा संगीत में ध्यान दे बा, तब बहुत ही मस्त जीवन ले जाए बा, है ना सुनीता जी?
2: हाँ जी।
1: तो चला हमने के बतेला कि भजन कीर्तन से तू शुभ आरंभ कर ला।
2: हाँ,
1: नेहा जी के यही हाल है, तोहरो संगीत के सफर इसने शुरू हो नेहा जी?
0: हाँ, तनी इसने
1: भजन कीर्तन से ही, ईश्वर की भक्ति से,
0: थोड़ा बहुत
1: ईश्वर की भक्ति से ही।
0: हाँ, हाँ।
1: बहुत अच्छा। और शोभा जी तोहर?
0: हम भी छोटा से खुशी रहली गीत गाए के, हम भी एगो आलमा के छोकरी हई,
1: आलमा के
0: गांव से निकल के हम।
1: अच्छा,
0: सफर में आईली बाको
1: आलमा
0: के, तो हमनियो एगो बैठका रह जाते जा हिंदी सीखे कीर्तन सीखे, और हम छोटा से खुशी रहली गीत गाए के छोटा से।
1: बहुत अच्छा। तो आलमा से हमके एक याद आवता, मैं हूँ तेरा बलमा। बलमा एगो फिल्म के नाम, और एगो फिल्म के नाम रहल चालबाज शक्ति कपूर आओ मेरा ना। तो मैं बोले ना मैं हूँ तेरा बलमा, वो श्रीदेवी के ने बोले ला। अब हाई बात बोली बलमा, तो एगो गाना बस संभावती जी के बलमा है। तो चला है गाना आप सब पहले तो लोग की अनुमति से अगर चाहे ला जा तब चला दे सर।
2: हाँ, जरूर।
1: अच्छा,
2: जरूर।
1: तो हम चलावत है ये गाना बलमा, तो एक बाद में हमनी ये तीन देवियां से बात करब सर। एक था सुनीता जी, दूसर है नेहा जी, और तीसर का है तीसर की है शोभा जी। लेकिन भोजपुरी जो है बहुत ही आसान है, हिंदी की तरह ने

तक वह आकोड करे सिपा मैं बोलती हूँ मैं बोलता हूँ ऐसा सकबा बोले कि सरका जो ना हमने के बहन है सकबा ये बोले है ना ये मैं कोनो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है तो चला बलमा सुना जा एकर उपरांत हमने बात करब जा

0: बेदर्दी बालमा बहुत ही सुंदर सा गाना शोभा जी की मधुर आवाज में सुनत हो जा और के कर आवाज आओ था कौन श्रोता हमने से बात करे खुश
1: है रोशन भाई नमस्ते
0: नमस्ते भाई उदय कैसे हो
1: रिजो ऑन बा में हम गली अपन बेटी क्या ने
0: अच्छा अच्छा बहुत अच्छा
1: अभी आवत इधर
0: बहुत अच्छा था सब कोई तोरा सुनत अभी तोहरा सुनत है सर सब कोई तोहरा से बात करे खोजता अभी तू बात
1: अच्छा अच्छा
0: तीनों तोहरा
1: तीनों तीनों दिव्यों के नमस्ते बोला
2: नमस्ते नमस्ते नमस्ते भाई जी
1: भाई देवानंद के यार दिला दिलन देव भाई ये ना
0: अच्छा अच्छा तो देवानंद भाई के याद दिला दिला
1: तो ओने है
0: हाँ बोला बोला बोला भाई
1: बोला चाहिए नमस्ते सबको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा बा
2: नमस्ते भाई जी
1: मैं अभी हम तो लोग के किसी बोल जरा ज्वाइन बोल ज्वाइन कर दी ना
0: हाँ कोई बात नहीं लेकिन उकर आवाज सुनो
1: कौन विषय आज कौन विषय को हम की बोला कौन अच्छी पर आज प्रोग्राम
0: आज तो हमने के तीन को बहिनाल हुआ जा शोभा जी नेहा जी और सुनीता जी तीनों कलाकार हुआ जा भोजपुरी में गावे लंजा बॉलीवुड के गाना भी अभी गयन जा तो लोग के जो संगीत के सफर है भोजपुरी में जो लोग के झुकाव है वो लोग पर तनी बात करते हैं जा
1: अच्छा
0: अच्छा धन्यवाद भाई
1: नमस्ते सबकी प्रोग्राम सुनते रहे
0: नमस्ते नमस्ते
2: नमस्ते भाई जी
1: नमस्ते

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. कलाकार के बाद
1: जी हाँ, कलाकार के बाद शोभा जी, सुनीता जी और नेहा जी के साथ

0: और अभी अभी सुन ला जा बेदर्दी बालमा का है बालमा लोग बेदर्दी रहे लंजा इता शोभा जी बाद में बतायन बतावो शोभा जी का है बालमा लोग बेदर्दी हुआ इनसे बेदर्द हुआ इनसे
1: तनी धोखा दे देलन ना
0: अच्छा धोखा दे कैसे ऐसे धोखा दे वेलन जा
1: जी सर संगे चल गई लन
0: त जाय दे वेला
1: त हमर झोपड़ी नहीं बनला खौजा महल बनावत हो ना
0: चाहेला झोपड़ी हो या महल अगर दिल गरीब हुई तो सगरो गरीब रहब ना परंतु तुहार दिल जो है अमीर है बहुत ही धनवान काहे के ऐसा ऐसा गाना निकालत हुआ और सब जो ना बोल है तोहरे है बहुत अच्छा अभी सुनीता जी बतले रलन की ओकर जो न सफर हो जो न संगीत के सफर है वो शुरू होल भजन कीर्तन के साथ वही बात बा नेहा जी के और शोभा जी के वही हाल बा तो चलो हमने तीनों से बारी बारी से सुनब जाए को छोटा सुन टुकड़ा भजन के अगर तो लोग तैयार हुआ जाता सकबत नहीं प्रस्तुत करें तो सुनीता जी से शुरू करी ला सा
2: ओके
0: अच्छा अगर अगर तैयार हुआ तो शुरू करो
2: एक छोटा सा कीर्तन हाँ जो हमेशा मैं गावट रही
0: अच्छा गाओ
2: हाँ भजो

0: अति सुंदर। देखा तो हम तो अति सुंदर बोली कितना लोग है जाओ इनसे तफरी बजाओ थो इनसे देखा तो बहुत धन्यवाद सुनीता बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। चला अब हमने बढ़ाब जा शोभा जी की ओर। शोभा जी, तू खाली फिल्म के गाना गावेला या भजन में अभिले गावेला?
1: नहीं, भजन
0: भी गावेला। अच्छा, शुरुआत तक कर ले रहा भजन कीर्तन के साथ ही, लेकिन अब तक याद बाना। अच्छा गाओ।
1: चित्रकूट के घाट घाट में सबरी देखी वाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट में सबरी देखी वाट, राम

0: टूटा घाट घाट पर सब बिछा पुराना ठाट राम मेरी आ जाओ राम मेरी आ जाओ।
1: बहुत ही बढ़िया राम मेरे आ जाओ। बहुत अच्छा तो शोभा जी और सुनीता जी ऐसन सुंदर सुंदर गाना गावत हुआ तो और ऐसन भजन प्रस्तुत कर ल आप दोनों मन मोह ले ल जा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कितना हम तारीफ करब उतना ही कम हो। नेहा जी बोले थोन अभी भजन नहीं गयन बाद में कोई बात नहीं है तो चल तो राम जी पर गए ल कृष्ण जी पर गए ल

0: तो हमने के श्रोतागण के बुलंद जा और रुक संगी सवाल करे कि हमने के समय अगर बात 402-8070 402-8070 पर हमने के जवाब दे कि जो प्रश्न जो अभी कितना भजन सुनिंदा जी प्रस्तुत कर लन श्री कृष्ण जी पर और जो भजन अभी शोभा जी प्रस्तुत कर लन श्री राम जी पर ओ लोग कृष्ण हो या राम दोनों त विष्णु के अवतार हुआ जा हाँ आठवां अवतार श्री कृष्ण रलन सातवां अवतार श्री राम रलन त छठा अवतार श्री राम से पहले के रलन कौन अवतार लेके विष्णु जी धरती पर आ रलन हमने के जवाब द 402-8070 पर हमने बतावा था तो जोन हमने के श्रोता हमने के कलाकार बात करियन जोन गाना गयन ओकरे सम निकाल के तोहरा प्रश्न पूछब देखब सर तोहरा अपन संस्कृति के जाने ल जा कि नहीं 402-8070 पर बताओ कि जोन छठा अवतार है श्री विष्णु हरे विष्णु जी के उ के रलन तो हमने बढ़ाप सब अपन है जाके जो बातचीत हमने के कलाकार लोग संगे हाँ बोला तरह हमने के सुनीता जी की देखा हम तब बात करे लगी तब जा तब फोन बज भी लगा तो चलो पहले फोन ले ले लेसा का बोले लजा ले ले लेसा फोन अच्छा चलो फोन ले ले लेसा हेलो
1: हेलो नमस्ते रोशन जी
0: नमस्ते तो आशा जी हुआ कॉटेज से
1: हाँ जी
0: हमने के कलाकार से बात नहीं कर बा
1: तो हवे तो कैसे था बोला मन तो गदगद हो गया आत्री देवी के सुन के
0: तीन कलाकार
1: तीन देवी के सुन के
0: अच्छा।
1: जैसे जैसे त्रिवेणी के धारा बहेला
0: हाँ।
1: उसने हमें के इन तीनों बहनों की मधुर आवाज में सुने थे जब मधुर मधुर गीत उन सब के भजन तो सच्चे के आते सब श्रोता लोग खुशी
2: आशा
0: जी तो हर बहुत ही सुंदर शब्द से हमने के जो इन तीनों कलाकार हुआ जा एकदम प्रसन्न हो गल हुआ जा
1: काहे के नहीं रोशन जी हमी के कलाकार लोग हमी खातिर इतना बढ़िया बजा भोजपुरी गीत गावे लंजा तो हमी के कर्तव्य उन सब के प्रोत्साहन करके उन के हौसला बढ़ाए के
0: बहुत अच्छा
2: शुक्रिया बहन बहुत बहुत शुक्रिया
0: और आशा जी बहुत अच्छी तरह से भोजपुरी में बात करेला ना नो बहुत अच्छा तो हमने के बतावा ये जो प्रश्न पूछ ली ये कलाकार लोग के प्रश्न है हम पूछ लियो लोग के वो लोग की ओर से हमने के बतावा कि तोहर जवाब का है
1: तो श्री विष्णु भगवान के छठा अवतार है श्री परशुराम जी
0: अच्छा जवाब बा अच्छा हाँ
3: बिल्कुल अच्छा जवाब
0: बिल्कुल अच्छा बोलत हुआ है अच्छा लोग जवाब के लॉक कर देलन सा और कंप्यूटर महाशय बोलत हुआ कि सही जवाब बहुत बधाई आशा जी हमेशा हमने जानी ना जब भाई प्रोग्राम में आल हुआ हर हमेशा जब आवेला कलाकार के बात में तो हर एक को जो जवाब है गलत नहीं है सब सही है
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतमा सरस्वती की कृपा बाते रोशन जी
0: अच्छा
1: फिर से आपके धन्यवाद और तीनों बहन के फिर से बुलाते बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद
2: शुक्रिया
0: अच्छा आशा जी बहुत धन्यवाद तो छठा जो अवतार है श्री हरि विष्णु जी के ऊपर परशुराम जी रलन ओकर उपरांत श्री राम जी एलन और एकर बाद में श्री कृष्ण जी और बाद में गौतम बुद्ध तो हमने के बतावा सुनीता जी के हाँ। एगो ग्रुप में तू दाखिल हो रहा
2: हाँ।
0: है ना
2: हाँ।
0: और ग्रुपवा में के लीडर रहल के नेता रहल बोलो
2: हाँ। हम ग्रुप संतोष महादेव के ग्रुप में रही
0: बहुत प्रसिद्ध कलाकार
2: हाँ हाँ बहुत पहले के बात बोलत हैं शादी से पहले हम सैंपिया रहत रही सर्कमस्टांस तो भाई जी पास ही में रहत रहलन हाँ तो वो हमरा देखलन गावत शिवाला में भजन कीर्तन
0: हाँ।
2: तो एक दिन घरे आल हमर माता पिता से बोललक कि सुनीता के देखली वो भजन कीर्तन गावेला तो हम खुशी हैं हमर संगे आई भोजपुरी गाना सीखी भोजपुरी गाना हमर से गाय तो माता पिता हमरा आज्ञा दिलक तो ओकर ग्रुप में गईली हाँ जब गईली हुआ तब बहुत कुछ सीखली संतोष भाई से हाँ आज हैजा है भोजपुरी गायला संतोष महादेव।

0: की कृपा से
1: बहुत
0: और,
1: अच्छा
0: हाँ और संजय शत्रुघ्न गुरुजी संजय शत्रुघ्न से भी
1: अच्छा ओके से भी शिक्षा
0: हाँ
1: संगीत के शिक्षा पावत
0: हाँ सीखिला
1: अच्छा सीखत हुआ बहुत अच्छा तो संतोष जी के तो बहुत ही नमन करत हुआ जा ओकर बदौलत और गुरुजी शत्रुघ्न जी के भी नमन करत हुआ
0: प्रोग्राम कर ले है इस संतोष भाई से भी हाँ रेडियो पर टेलीविजन पर गमत में भी गए ले हैं ओकर संगे
1: गमत में भी
0: हाँ
1: अच्छा
0: हाँ संतोष महादेव से
1: बहुत रोचक बात बतावत हुआ
0: हाँ गमत में भी गए हैं रेडियो में भी गए ले
1: हैं तो दिखले हुआ जा कैसे गमत में
0: हाँ तो हमार शादी में तो वो बड़का गमत कर ले रहा
1: अच्छा
0: तीन तीन गो चार चार गो कलाकार ले ले आए हाँ हमार शादी में
1: तो हो जमाना में तो गमत के खूबे बोलबाला रहा
0: हाँ
1: ना?
0: हाँ
1: हाँ
0: और जब भाई फुकन जा रहा प्रोग्राम करे भाई ज्ञानमय पटलाल जब जाए प्रोग्राम करे तो संतोष भाई से पूछी सुनीता बहन को विदा कर
1: या
0: हाँ, हाँ। तो
1: कि गमत में खाली पुरुष कलाकार ढेर
0: हाँ।
1: महिला कलाकार तनी कम
0: हाँ तो ढेर नहीं गईली एक हाँ। दो हाला गईली
1: तोहरा अनुभव होगा तोहरा
0: हाँ।,
1: हाँ
0: लेकिन फोकन भाई से भी कोरस कर ली गईली ओकर साथ भी ज्ञानमय पटलाल से भी गईली हम भोजपुरी सीखली
1: अच्छा
0: हाँ
1: बहुत अच्छा तो बड़ा बड़ा नाम लेवत हुआ भोजपुरी जगत में जो चमकता हुआ सितारा हुआ जा हाँ। जो आज इस दुनिया में नहीं हुआ जा जैसे हाँ। कि ज्ञान जी हुवन रुद्रदत्त फोकन जी हुवन
0: हाँ
1: वो लोग के तू श्रद्धांजलि अर्पित भी करत हुआ ये
0: हाँ।
1: प्रोग्राम से हमने कलाकार के शान और मान तब बढ़ाई ला जा
0: हाँ।
1: जो कलाकार हमने के छोड़ दिले हुआ जा वो लोगों के याद हमने करते रही ला सब है ना
0: जो भी है उन लोग के कृपा से उन लोग के आशीर्वाद से
1: उन लोग संगे सीखले हुआ जा
0: हाँ हाँ सीखले हाँ ऐसा
1: हाँ। अच्छा हाँ। बहुत अच्छा तो हमने बढ़ब जा नेहा जी की ओर नेहा जी
2: हाँ
1: आप जब प्रोग्राम से के शुरू हुई से पहले एक हाँ। बहुत सुंदर सा गाना फिल्मी गाना गावत रहा तो हमने के बतावा कि है जो बॉलीवुड गाना है
2: हाँ।
1: बहुत दिन से तू गावेला
2: हाँ।
1: और तुहर जो प्रिय कलाकार हो के हवन प्रिय गायक कलाकार या अभिनेता अभिनेत्री सब कोई
2: हाँ इसके सब कोई हाँ
1: सब कोई
2: हाँ।
1: एगो छोटा सुन टुकड़ा में के लिए सब गाए छोटा सुन टुकड़ा कोनो भी गाना अगर याद आवता तन याद करके हमने के ये गा दिया तो हमने शोभा जी की ओर बढ़ा था ऐसा तब तक शोभा जी
2: हाँ भाई जी
1: हाँ तो हर दिमाग में कोनो गाना हुआ था जो फिल्मी गाना है बहुत सब बहुत ना हाँ हम तो एगो सरप्राइज के तौर पर तोहला हम पूछे थे एगो प्रश्न अभी तो हमने के एगो सुंदर सा गाना सकब सुनाई के सुनाई नेहा जी सुना अच्छा नेहा जी सुना हुआ
2: एगो टुकड़ा
1: हाँ सुना हुआ
2: हाँ

0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर सा गजल गैला भी है ना। हमके याद बा ये जो ना गजल गैले हुआ ये गो प्रतियोगिता में भाग ले रहे रहे जानो।
1: हाँ बिल्कुल, हाँ एगो कॉम्पिटिशन में ले रहे रहनी हिस्सा। ए हमार गुरुजी संजय शत्रुघ्न के बदौलत।
0: हाँ तो हर गुरुजी हुआ संजय जी।
1: हाँ हाँ, उनकर बारे में कुछ बतलाई खोजत है
0: बताओ
1: चाहब। हाँ वैसे तो देखबत हम छोटा से गाय गाय के खोजत हनी, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला था। हाँ एक दिन हम देखनी गुरुजी हमनी लगे कालीमाई में आ रहा मौका।

0: गांव में तो ओकर कीर्तन मंडली से आ रहा हाँ सब सहित तो जब देख ले रहनी तो हमार मन
1: गद गद
0: हाँ होगा रहा तो हम ओके खोजनी फेसबुक के द्वारा
1: अच्छा
0: हाँ ओके खोजनी तब पहचान हो तब सुने करनी तब गुरुजी हमरा बोलन जैसा कब आवे हम ओके बोलनी हम कबो हमार जीवन में कबो गैले नहीं है नहीं जानीला गाना के ए बी सी डी ओ नहीं जाना था नी लेकिन हुआ गैनी तो गुरुजी के भाग्य से हमरा गजल में
1: भाग लेके
0: हाँ
1: तोहरा सुनहरा अवसर प्रदान कर लंजा
0: हाँ और उमें हम सेगों भी निकलनी
1: बहुत अच्छा हाँ, ये प्रतियोगिता में सेगों निकल गेला
0: हाँ और हुआ परी हमरा मौका मिलल कीर्तन भजन बॉलीवुड सॉन्ग सब गाय के
1: सब प्रकार के जो गाना है
0: हाँ हाँ
1: जो भारतीय संगीत
0: हाँ,
1: जैसे बोली ला जा
0: हाँ बिल्कुल
1: बहुत अच्छा नेहा जी तो देखा अपन पर तू विश्वास रखला है जे नहीं रुकला हाँ, आगे बढ़ला
0: हाँ,
1: बोला कि तू है क्षेत्र में सकब आगे जाए बहन है ना
0: हाँ सकब जाए
1: हाँ देखा मन से हारे हार मन से जीते जीत
0: हाँ और हम हमार गुरु जी संजय शत्रुघ्न के बहुत आभारी हैं गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद
1: बहुत धन्यवाद नेहा जी अपन गुरुजी के बहुत ही याद करत हुआ तू तो काहे नहीं गुरुजन होवन कैसे बोलब जा माता पिता के जो स्थान हो कर से भी ज़्यादा हो कभी कभार गुरुजी तुम्हारा अच्छा रास्ता पर चला दे तो जीवन भर उके याद करते रह
0: हाँ,
1: गुण गाते रह
0: सच बात है
1: हाँ और सुनीता जी आप भी बहन आप भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो जा हाँ बतावा तनी अपन हाँ, प्रतियोगिता के बारे में
2: हाँ पहला कॉम्पिटिशन में हम जिसने 85 में गए ले रली राग रंग प्रोग्राम हाँ तो वो गाना जाए से पहले भाई संतोष ने हमें साहस दिया
1: अच्छा
2: हाँ सिखाया और रिहर्सल भी ओकरे लगे होल हाँ तब गईली एम्बे से तो गईली तो पहला प्राइज मिलल
1: राग रंग में बहुत अच्छा
2: हाँ जिसने अच्छा। कथो वैसा है
1: अच्छा
2: सकब एक बुट बोले कौन गीत
1: कौन गाना गए रेला हाँ, बोला हमने हाँ, के

बहुत अच्छा नेहा बहन और सुनीता बहन एगो गजल गेला नेगो फिल्मी गाना गेला जा बहुत अच्छा और ऐसे हम तोहरा बोलब की संगीत के क्षेत्र में और आगे बढ़ते जाएब और निखार तोहरा आवाज में आते रही शोभा जी हम तोहरा नहीं भूले ले हैं अब तेरा क्या होगा रे कालिया अब बोला तोहर बारी बाई को गाना गाए के चाहे वो गजल हो या फिल्मी गाना जोन तोहर मन करी।

0: बहुत अच्छा तोर सखी लोग बहुत खुशी हो गल है गाना सुन के तो
1: मन मोह लेला
0: तीनों जो हमने के आज के कलाकार हुवन बहुत ही बढ़िया और एगो कलाकार हुवन जो आज बात नहीं करियन अभी खाली फोटो लेवत हुवन खाली रिकॉर्ड करत हुवन अपन सखी लोगन के श्रोतागण 402-807-0 पर हमने के जल्दी जल्दी बतावा कि सुनीता बहन जो गाना गैलन याद किया दिल ने कहा हो तुम और जोन शोभा बहन गैलन फूल तुम्हें भेजा है खत में ई दोनों गाना जोन है ई दोनों गाना कौन फिल्म के गाना है जल्दी जल्दी अब बोला हम नहीं था तो हर जानकारी बढ़ाए खोजी रह जा यही कहती तब प्रश्न उत्तर होला ना तो जल्दी बतावा कि ई दोन जोन दुगो बहन गैलन फूल तुम्हें भेजा है खत में और याद किया दिल ने कहा हो तुम जैसे हम इशारा कर लिया जाता फोन की त्रिंग त्रिंग बजे लगा हमके तो समय में नहीं मिला था हमने के श्रोता हमने के कलाकार से बात करी के का करी कुछ ही हमने ओकर जवाब सुने ला जा हमने के श्रोता गण के चलो जवाब सुने ला जा पहले हेलो
2: हेलो रोशन भाई
0: नमस्ते तो राधा बहन हो
2: हाँ, नमस्कार
0: कैसे हुआ जा मोशिदा के
2: बहुत अच्छा है मोशिदा के हाल बहुत अच्छा बा रोशन भैया
0: अच्छा
2: और जन तीनों कलाकार आ रहे हैं तीनों के हमारे बहुत बहुत प्रणाम बा
1: प्रणाम राधा बहन आपको भी बहुत बहुत प्रणाम
2: की हाँ बहुत प्रणाम बहुत आशीर्वाद कारण की हर एगो कलाकार के हमने चाहिए आदर करेगी क्योंकि हमने भी कलाकार हैं सब
0: वो कारण
2: से सबको के चाहिए
1: बहुत बहुत धन्यवाद बहन
0: और तीनों के जो गाना सुन ले नेहा जी के और सुनीता जी और शोभा जी के कैसे लगा तुम्हारा ये सब जो गाना है
2: बहुत बहुत अच्छा बहुत मधुर आवाज और बहुत ही और भजन हमके कीर्तन हमके खास के बहुत अच्छा लगल बहुत अच्छा रहा कृष्ण भजन जो गई लंजा बहुत ही कमती मिलेला सुने के ऐसे ऐसा भजन बहुत अच्छा लगल
1: बहुत धन्यवाद बहन जी
2: बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के भी
0: राधा जी हम तो जानी ला जब हम संस्कृति के बारे में प्रश्न पूछी ला चाहे वो रामायण हो महाभारत हो तो झट से फटाफट जवाब देवे जा अभी तो फिल्म के प्रश्न पूछी उभे में चले ला
2: हाँ तो सुना ना तो पुराना पुराना फिल्म की हमने वैसे भी आपसे कहे थे ना
0: अच्छा अगर नया गाना के प्रश्न पूछती तो नहीं जवाब देता
2: नया नहीं
0: हमने पुराना आदमी से हमने कितनी सब कोई हमने नया है सर बोला राधा जी कौन जवाब देबा अगर हम तुहरा बोला सुनीता जी के चुन गाना रन याद किया दिल ने कहा
2: पतिता देवानंद और उषा किरण
0: अरे वाह हम तो खाली
2: सरस्वती चंद्र जो मैं नूतन
0: तो हम बोले थे तोरा खाली फिल्म के नाम पूछ ली तू तो फिल्म के हिस्ट्री बता दे ना
2: नहीं जवाब हम आदत जाने ला ना हम जब मेरे को पूछे ला तोरा इतिहास सुना दे ला पूरा
0: तू तो आदत से मजबूर हुआ
2: हम मजबूर है
0: तो हम भी आदत से मजबूर है जाने का है कहती थपड़ी बजा
2: बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद राधा जी
2: सब कोई के खूब खूब आशीर्वाद आगे इसने बढ़ते रहिए जा
0: अच्छा धन्यवाद
1: बहुत धन्यवाद राधा बहन
2: बहुत धन्यवाद
0: चलो एक दूसरा श्रोता के सुनी ला जा हेलो हेलो
3: नमस्ते रोशन जी
0: नमस्ते जी के होवन
3: शोभा
0: जी होवन हाँ एगो शोभा जी है जा होवन दूसरा शोभा जी फोन के उस पार होवन बहुत धन्यवाद आप ये प्रोग्राम में प्रवेश कर ले जा
3: और मेहमान लोग तीनों बहना के भी नमस्ते
1: नमस्ते शोभा बहन मैं भी तो शोभा ही हूँ फिर भी मुलाकात नहीं हुआ बाकुआ ही में रहते हैं हम लोग
0: दोनों बाकुआ में रह जा दोनों के नाम
3: है और पहली प्रोग्राम भी मैंने आपकी सुनी थी रेडियो पर
1: बहुत धन्यवाद
0: सुनते रहे कलाकार के बात तो
3: हाँ हर सप्ताह
1: धन्यवाद
0: अच्छा हमने के कलाकार के जबरदस्त फैन हुआ हमने के जो सभी श्रोतागण हुआ ना हमने कलाकार के फैन हुआ जा बोला जा शोभा जी कौन जवाब दे
3: हाँ तो पहला गाना याद किया दिल ने कहा हो तुम फिल्म का नाम है पतिता
0: अच्छा बहुत अच्छा और दूसरा
3: फूल तुम्हें भेजा है खत में सरस्वती चंद्र
0: सरस्वती चंद्र बहुत अच्छा तोहरो जवाब सही है लेकिन तोहर खातिर थपरी तब बजा खाली को गो और एगो प्रश्न बा तोहर खातिर जन ब काहे के सरस्वती चंद्र में मुकेश जी के और गाना बा जाने ला
3: नहीं नहीं याद आवत अभी तक
0: चंदन से शुरू होला

0: चंदन की बदन,
1: चंदन सा बदन,
0: चंचल चितुवन।
1: और एक फिल्म पतिता में जिनमें मिथुन है और रंजीता है। छोला बुढ़ापता भाई समय समाप्त हो जाए अभी, छोड़
0: धन्यवाद शोभा जी।
1: तो चला तुहर कहती है थपरी।
0: ओके
1: धन्यवाद
0: और शुभ दिन सभी लोगों को, शुभ संध्या,
1: शुभ संध्या,
2: शुभ दिन।
1: तो चला हमने के हजा जवाब मिल गल और तोहरों के गाना पर देखा कितना लोग प्रसन्न होके जवाब दिलन जा। और जाते जाते अभी तक देखा था समय हो गल 5:27 28 मिनट हुई के बाद 48 मिनट यानी केवल 2 मिनट रह गए बाब। कहे कि अब हमारी धरोहर प्रोग्राम हमने के प्रस्तुत करे के बाद किरण जान की जी चला हूँ अंजा। तो चला जल्दी जल्दी हमने के बतावा जोन तोर संदेश बा मन में, जोन चाहत हुआ कैसे संगीत के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ी और जोन तोहर मन में बा संदेश के रूप में हमने के बताओ हमने के मॉरिशस वासी लोग के, हमने के नई पीढ़ी लोग के। चल हमने शोभा जी से शुरुआत करते हैं सर। बोला शोभा जी।
2: हमने के नवा पीढ़ी का यही हमने के सलाह कि सब हमने के साथ चले के अभी जैसे हमने के भोजपुरी कलाकार उठाता हवे में भाग ले के उन लोग के एगो शिक्षा मिली कैसे भोजपुरी में आए के कैसे गाए के।
1: बहुत अच्छा शोभा जी, बहुत ही सुंदर सा संदेश दिला। चलो हमने सुनीता बहन की ओर बढ़ब सब। बोला सुनीता बहन।
3: हम भाई मांग करत हैं कि सब लेकुल में चाहें आप भोजपुरी शिक्षा देवे की। हमने के लड़का जमे सीखी घरे जायन सतब बात करियन सब भोजपुरी में। हाँ ऐसे हमेशा भोजपुरी बोलियन सा सकियन सा बात करे जहाँ भी जायन सा।
1: हाँ भोजपुरी में बात
3: घर,
1: करते
3: घर में चाहे
1: घर भोजपुरी
3: बचाए
1: काम के स्थल पर रास्ता पर दोस्त लोग संगे लड़का फैका संगे सब संगे। बहुत अच्छा परिवार के सदस्य
3: घर में शुरू हुए ला ना।
1: बिल्कुल
3: हाँ माता पिता फुदे सब बोली लड़का लोग से तब सीखियन सा।
1: हाँ चला नेहा जी की ओर बढ़ा था सर। एगो अंतिम दो गो शब्द हमने के बतावा नेवाजी नेहा जी।
4: हाँ हम बोलती चाहे ला नहीं सरमार के हमने के भोजपुरी भाषा बतियाई के बस कि हमने के भोजपुरी भाषा हमने के धन उधर है हमने के पूर्वज के निशानी आशीर्वाद है चाहे ला मिलजुल के घर से आगे बढ़ाई के।
1: बहुत अच्छा। शोभा जी सुनीता जी और नेहा जी बहुत बहुत हृदय की गहराई से तो लोग के हम धन्यवाद देवत हैं जा एमबीसी की ओर से तो लोग के बहुत बहुत आभार और ऐसे ही संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते रह जा तीनों बहन और आज जब जब मन करे तह जा चलैया।
0: धन्यवाद
1: के रेडियो के रेडियो सेट से जुटे रहिया एमबीसी से वफादारी निभाते रहिए और संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए।
0: बढ़ते रहेंगे
2: दिल से तोरो धन्यवाद भाई रोशन जी।
1: धन्यवाद
2: आप नहीं रहते तभी हम नहीं जा कहाँ रहती जा।
1: हम नहीं तो दूसरा रहता ना लेकिन लोग कलाकार हुआ जा तो लोग के हमेशा हम निशान बढ़ते रह तो मान सम्मान करते रह।
0: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोतागण इरल हमने के तीनों बहन शोभा जी सुनीता जी और नेहा जी और यही के साथ हमने के आज के कलाकार के बाद प्रोग्राम संपन्न हो गल। तो लोग हमने के बहुत ध्यानपूर्वक सुनना जा हमने के प्रश्नोत्तर में भाग ले जा बहुत ही धन्यवाद। 5:51 हो गल बा और तोहर कहती रभी प्रोग्राम हमारी धरोहर किरण जानकी जी द्वारा।
5: Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2
6: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
7: Hamari Dharohar Kiran Janki ke saath हमारी धरोहर।
8: नमस्ते हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के दिन से भी जानल जाला युग पुरुष महात्मा गांधी से हमने के धरोहर के रूप में दुगो सिद्धांत मिलल बा और वह सत्य और अहिंसा। अहिंसा खाली भारत

0: भारतीय या गांधीवाद खातिर नहीं है, बल्कि अहिंसा पूरा विश्व खातिर शांति स्थापित करे के एगो मार्ग है। यही खातिर संयुक्त राष्ट्र संघ 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के ऐलान कर लेबा। महात्मा गांधी द्वारा अहिंसा परमो धर्म अपनावा गल सिद्धांत स्वराज के संवाद जनता तक अनलक। इस सिद्धांत से ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम जीतल गलबा। उनकर बिना 15 जून 2007 से घोषित ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के कोनो मायना भी नहीं रहत। और उनकरे याद में 2007 से हर बरिस ई अहिंसा दिवस मनावल जाला। और संयुक्त राष्ट्र में अपनावल गल ई प्रस्ताव अहिंसा के सिद्धांत विश्व भर में कहाँ तक लागू हो सकी, कहाँ तक ओके लागू करल गल बा, एकर पर विचार करे के एगो मौका है। और एकर से कैसे दुनिया भर में शांति सहनशीलता आपसी समझबूझ और अहिंसात्मक माहौल कायम करल जाए, ई पर भी विचार करल जाला। और ये रिजोल्यूशन पर 140 गो सदस्य देश अपन समर्थन दिले हवन जा। और ये बात के प्रमाण है कि महात्मा गांधी के कैसे विश्व भर में सम्मान देवल गल बा और उनकर सिद्धांत के उनकर फिलोसॉफी के मान्यता देवल गल बा। महात्मा गांधी बोलले रहलन कि अहिंसा मानवतावाद के सबसे बड़ा हथियार है। एकर शक्ति इंसान द्वारा बनावल गल सबसे ताकतवर हथियार से जस्ती सशक्त बा। गांधी जी 21वीं सदी के एगो ऐसन मसीहा हवन जिनकर धर्म जाति और देश के कोनो सीमा नहीं बा। दुनिया भर में उनकर उसूल उनकर आचार व्यवहार धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय और राजनीतिक विचारधारा के सम्मान करल जाला और उनके अपनावल गल बा। वो चाहे अमेरिका अफ्रीका या फिर एशियाई लीडर ही काहे नहीं रही, सब कोई गांधी जी के एगो मिसाल एगो रेफरेंस माने लन जा। गांधी जी ऐसन परिस्थिति में जीवन भर अहिंसा के राह पर चलन जब भारत में बरतानी शासन के अत्याचार चरम सीमा पर रहल, जहां हर तरह से भारतीय लोग के अधिकार मार के उ लोग के दबावल जात रहल, बहुत बड़ा बड़ा चुनौती के सामना करलन गांधी जी। उ मानत रहलन कि भारत के स्वराज खातिर भारतीय लोग के नफरत और हिंसा से नहीं चाहिए काम लेवे के, बल्कि अहिंसा से और सच्चाई से। और यही खातिर आज उनकरा श्रद्धांजलि देवल जला 2 अक्टूबर के दिन। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना बहुत धन्यवाद। आप सब कोई के अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जी के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ
2: You're listening to RN3 Radio मनोरंजन।
1: हमारी धरोहर
2: You're listening to RM3 Radio Mano

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन. सबसे पहले सुर्खियां. भले ही स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन रोज राशन चावल 2.5 किलो के 15,000 पैकेट बाजार में भेज रहा है, लेकिन अगली खेप में देरी के ऐलान के बाद मांग बढ़ने से कई दुकानों पर राशन चावल उपलब्ध नहीं है. एयरलिंक की पहली नॉनस्टॉप उड़ान 124 यात्रियों के साथ केप टाउन से मॉरिशस पहुंची, जिसका पारंपरिक स्वागत किया गया. मंगलवार और शुक्रवार को हफ्ते में दो उड़ानों की इस नई सेवा से दक्षिण अफ्रीकी पर्यटकों और निवेशकों के लिए मॉरिशस आना और आसान हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में पोर्टविस में 90 वर्षीय बालकृष्ण लक्ष्मया की हत्या के मामले में क्रिस्टोफ जोनाथन मैग्डलेन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और वो पहले से ही एक अन्य हत्या के लिए 23 साल की सजा काट रहा है. और आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही है. भारत की तरह मॉरिशस में भी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर शांति और अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए मोका स्थित महात्मा गांधी संस्थान और रिविया चौपा के गांधी चौक पर कार्यक्रम आयोजित किए गए. और अब समाचार विस्तार से. दुकानों में राशन चावल की उपलब्धता इन दिनों कई सवाल खड़े कर रही है. हालांकि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कहना है कि वो बाजार में रोजाना औसतन 2.5 किलो के 15,000 पैकेट उतार रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कई बिक्री केंद्रों पर ये खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है.

जिन दुकानदारों से हमारी टीम ने मुलाकात की उनके अनुसार अगली खेप के आने में देरी होने की बात कहने वाले एसटीसी के बयान के ठीक बाद पिछले एक हफ्ते से राशन चावल की मांग बढ़ गई है। आसिम का मानना है कि मध्य पूर्व की स्थिति के प्रभाव कई देशों को प्रभावित कर रहे हैं जो मॉरिशस में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को उचित ठहराते हैं। ऐसा संगठन का कहना

0: जनता को सूचित किया जाता है कि दिवाली रविवार 8 नवंबर को मनाई जा रही है, इसलिए सोमवार 9 नवंबर को आम छुट्टी का दिन होगा। 13 अगस्त को पब्लिक हॉलीडेज एक्ट में लाए गए सुधारों के तहत ये कदम लागू किया गया है। पहले मॉरिशस नेशनल फॉर्मुलेरी को अंतिम रूप देने के लिए एक वैलिडेशन कार्यशाला आयोजित की गई। ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन और जेएसएस अकादमी के सहयोग से तैयार किया गया एक रेफरेंस मेडिकल गाइड है। ये दस्तावेज मॉरिशस में अधिकृत और उपलब्ध 8000 दवाओं की सूची, उनके सटीक संकेतों के साथ साथ अदला बदली के नियमों को सूचीबद्ध करता है। दवाओं के गलत इस्तेमाल से होने वाले वित्तीय नुकसान और स्वास्थ्य संबंधी खतरों की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए इस दस्तावेज का उद्देश्य इस साल दिसंबर से स्वास्थ्य पेशेवरों के तौर तरीकों में एक रूपता लाना और जनता के लिए पारदर्शिता प्रदान करना है। ज्यादा जानकारी याचना मिश्रा के साथ।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दवाओं के इस्तेमाल में होने वाली गलतियों से दुनिया भर में हर साल $42 बिलियन खर्च होते हैं। मॉरिशस में भी ऐसी गलतियों के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च का बोझ बढ़ता है। इसी समस्या से निपटने के लिए अधिकारियों ने देश के पहले मॉरिशस नेशनल फॉर्मुलेरी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। एक औपचारिक दस्तावेज जिसमें मॉरिशस की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए स्वीकृत, सुरक्षित और आवश्यक सभी दवाइयां शामिल हैं।
2: Ça formulaire là pour guide ben professionnel comme un médecin, ben pharmacien, ben nurse pour prescrire un médicament.
1: ये दस्तावेज डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट आदि को प्रेस्क्रिप्शन में मदद देगी। दवाइयों के प्रभाव पर वे जान पाएंगे, जिसे मरीज रिपोर्ट भी कर पाएंगे।
2: साइड इफेक्ट है ना, et ça peut aider pour reporter ce side effect là pour ce médecin traitant.
1: इस दस्तावेज को तैयार करने में करीब 1.5 साल लगे। इस दौरान गहन शोध, आंकड़ों का संकलन और कड़ी जांच पड़ताल की गई, जिसमें जेएसएस अकादमी का सहयोग रहा।
3: Mais c'est un projet, nous ban étudiants docteurs en pharmacie qui nous préparait. Ici, c'est la première fois qu'ils nous font la liste tout ban médicaments.
1: फार्मेसी के डॉक्टर विद्यार्थियों ने ये तैयार किया। पहली बार के लिए ऐसी गहन दस्तावेज तैयार की गई है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं आदि के लिए इसमें ज्यादा जानकारी है। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार ये दस्तावेज स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी पेशेवरों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगी। चिकित्सा क्षेत्र के हर एक कर्मचारी को इससे मदद मिलेगी। मरीज भी जानना चाहते हैं अपनी दवाइयों के बारे में, ये सभी के लिए सहायक हैं। मॉरिशस नेशनल फॉर्मुलेरी में कुल 8000 दवाओं की जानकारी है। दिसंबर से इसे लागू किया जाएगा।
0: शाम के 5:15 एयरलिंक का विमान मॉरिशस की जमीन पर उतरा। इस पहली उड़ान के लिए पारंपरिक जल छिड़काव के साथ स्वागत किया गया। इसमें 124 यात्री सवार थे। ये नई नॉनस्टॉप उड़ान सेवा केपटाउन और मॉरिशस को सीधे आपस में जोड़ती हैं। अब हर हफ्ते 2 उड़ानों मंगलवार और शुक्रवार के निर्धारित होने के साथ देश दक्षिण अफ्रीकी पर्यटकों और निवेशकों दोनों के लिए अपनी सुलभता को मजबूत कर रहा है। इस उद्घाटन उड़ान के लिए इस शुक्रवार देर शाम सिसिसागर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पर्यटन क्षेत्र, विमानन और मॉरिशस में स्थित दक्षिण अफ्रीकी व्यापार समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद थे। भारत की तरह मॉरिशस में भी आज 2 अक्टूबर शांति और अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी की स्मृति को समर्पित हैं। गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में कई स्मृति समारोह और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की गईं। मोका स्थित महात्मा गांधी संस्थान और रिवियर जोगोंपा के गांधी चौक में फूल चढ़ाने का समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कई महानुभाव उपस्थित थे। पूजा सुकालू को सुनते हैं।
4: मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें दुनिया महात्मा गांधी और प्यार से बापू के नाम से जानते हैं, का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाया और इन्हीं सिद्धांतों के बल पर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। गांधी जी के प्रमुख जीवन सिद्धांतों में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सादगी, आत्मानुशासन और सर्वधर्म सम्मान शामिल थे।

0: भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज मॉरिशस में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूल के स्तर पर गांधी जयंती को विशेष रूप से मनाया गया। मुका स्थित महात्मा गांधी संस्थान में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए।
1: महात्मा गांधी और मॉरिशस का संबंध है, ये बहुत विशेष संबंध है और इस संबंध का प्रभाव आज भी हम इस देश में देखते हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी का प्रभाव हमारे ऊपर आज भी कितना ज़्यादा है। इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि उनकी टीचिंग्स का, उनके आइडियल्स का हमारे ऊपर कितना ज़्यादा प्रभाव रहा है।
0: सम्मानित अतिथियों में एमबीसी के महानिदेशक अलेगो गोदो रांची भी उपस्थित थे। उनकी प्रमुख प्रस्तुतियों में ले मुसों एचिम स्वेलुथ्रास जू महात्मा गांधी नामक डॉक्यूमेंटरी फिल्म भी शामिल है, जिनकी लॉन्चिंग वर्ष 2005 में गुजरात राज्य में किया गया था। वहीं गांधी स्क्वायर रिविया जोपा में भी गांधी जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोपियो इंटरनेशनल मॉरिशस की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
2: उनका जो सहयोग रहा मॉरिशस में ऐतिहासिक है कि गांधी जी अगर ना आते तो मॉरिशस का स्थिति ये नहीं होता। आज हम बहुत अच्छा से जी रहे हैं और बधाई देता हूँ सभी लोगों को जिन्होंने गांधी के प्रिंसिपल पर चलकर आज मॉरिशस को यहाँ तक लाए हैं।
0: कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन, उनके विचारों और सत्य एवं अहिंसा के संदेश को याद किया गया। मॉरिशस में गांधी जयंती के ये आयोजन भारत और मॉरिशस के बीच साझा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को भी दर्शाती है।
3: सुप्रीम कोर्ट ने बालकृष्ण लच्छमाया की हत्या के लिए क्रिस्टोफ जोनाथन मैग्डलेन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अप्रैल 2023 में पोर्ट लुइस में उनकी दुकान में इस व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। वे 90 साल के थे। इस हत्या के लिए क्रिस्टोफ मैग्डलेन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अन्य अपराधों के लिए कई बार सजा पा चुका ये व्यक्ति वर्तमान में अपने दूसरे अपराध से 8 महीने पहले किए गए एक अन्य कत्ल के लिए 23 साल की सजा काट रहा है। रजनी भिकर को सुनते हैं।
4: 25 अप्रैल 2023, क्रिस्टोफ जोनाथन मैग्डलेन तब 36 वर्ष का था और बेघर। उसने काफी समय से एक व्यक्ति पर नजर रखी हुई थी। सुलिया गली पोटरीस में बालकृष्ण लच्छमाया पर नजर और उसके कपड़े की दुकान में उसने घुसने की भी तैयारी की थी। उसने ऐसा दिखाया कि वो कपड़े खरीदने गया और फिर उसने इस वृद्ध पुरुष का गला ही दबा दिया। जानबूझकर योजना बनाकर इस व्यक्ति की हत्या की गई और उसने ये कबूल भी किया। अपनी गिरफ्तारी पर क्रिस्टोफ मैग्डलेन ने जांचकर्ताओं के सामने ये भी स्वीकार किया कि उसने 2022 के अगस्त महीने में सेमोतेल आश्रमीय में एक वॉचमैन को भी मार डाला था जब वो पुराने लोहे चोरी करने गया था। अपने फैसले में जज मेहदी मानहाको ने बताया कि 8 महीने में आरोपित व्यक्ति ने 2 वृद्ध पुरुषों की जान ले ली और कि उसने कई बार सजा भी काटी है। सुनियोजित तरीके से, चालाकी से एक 90 वर्षीय असहाय वृद्ध पुरुष पर हमला करना, उसे घायल करना और उसे जान से मार डालना, उसके व्यवसाय में उसकी संपत्ति की चोरी करना एक गंभीर अपराध है। जब इन परिस्थितियों की जांच की जाती है और साथ में ये देखा जाए कि कुछ ही महीने पहले मिस्टर मैग्डलेन ने किसी और की भी जान ले ली, उसके बीते अपराधों को देखा जाए तो पाया जाएगा कि ये सब गंभीर बातें हैं। इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि मैग्डलेन ने ये कबूल किया उचित समय पर कि उसने पहले वाली हत्या का अपराध स्वीकार किया। इस बात पर भी गौर किया गया, साथ ही उसकी मांग पर उचित ध्यान भी दिया गया। फिर भी व्यक्तिगत रूप से और क्यूमुलेटिव तरीके से जांच किए जाने के बाद मुझे यकीन नहीं कि ऐसी ठोस और मजबूत परिस्थितियां हैं जो अनुच्छेद 222 के तहत तय आजीवन कारावास की सजा से अलग हटकर फैसला सुनाने को सही ठहराती हैं। इस तरह सभी हकीकत को देखते हुए पेनल कोड के आर्टिकल 222 के तहत घोषित सजा के अंतर्गत क्रिस्टोफ जोनाथन मैग्डलेन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
3: पेरी सिंह को इस शुक्रवार को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन में गवाह के रूप में बुलाया गया। ये 2020 में मॉरिशस और ग्रैंड थॉर्नटन के बीच हुए एक कंसल्टिंग अनुबंध की जांच

0: इस सिलसिले में था। इस जांच के कारण 70 हाजी अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हुई थी। ग्रैंड थॉर्नटन के पूर्व सीईओ के खिलाफ लगाए गए मनी लॉन्डरिंग के अस्थाई आरोप को बाद में हटा दिया गया था। 8.5 मिलियन रुपए के अनुबंध है जिसमें से 3.7 मिलियन रुपए ग्रैंड थॉर्नटन को चुकाए गए थे की जांच अभी भी जारी है। शरीक सिंह को सुनते हैं।
1: Me convoquer pour en relation avec un contrat qui est Moses Indonesia pour une consultancy.
2: Et c'était le contrat qui était attribué à Grant Thornton.
1: Effectivement. Alors comment peut-être pour rappel, moi aussi directeur Moses pendant à peu près 3 mois et que c'est durant sa période là que probablement tout ban directeur peut être interrogé.
3: Qui peut reprocher exactement?
1: Non, non, pas de rapprochement, quoi que ce soit. C'est uniquement en tant que witness qui demande ça.
0: लाइन बराक से मिली जानकारी के अनुसार सुडनाक पुलिस स्टेशन में एक महिला आरोपी के साथ संबंध बनाने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी। उस रात पहरा देने के लिए तैनात महिला पुलिसकर्मी को भी इस प्रक्रिया के दायरे में रखा गया है। ये कार्रवाई एमसीआईटी की जांच के बाद डीपीपी की सिफारिश पर की जा रही है। पुलिस की विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है और ऐसा कोई भी कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो संस्थान में जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाएगा। ब्रिटेन में डीजल की कीमत पहली बार 2 पाउंड प्रति लीटर तक पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी ईंधन निर्यात पर रोक लगाने का विचार करने के बाद ऐसा हुआ है। मध्यावधि चुनावों से पहले ट्रंप पर डीजल के निर्यात पर रोक लगाने का दबाव डाला जा रहा था। इस पर और अन्य विदेशी खबरों पर ज्यादा जानकारियां विनीमा सिबुरन के साथ।
4: संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि वो आतंकवाद के संभावित संबंधों सहित इस जांच का नेतृत्व करेगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमलावर को इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित किया गया था, हालांकि उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं बताया। गुरुवार को जांचकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि दुबई से तेल अवीव की एक उड़ान के को पायलट को पायलट पर चाकू से हमला करने के लिए किसने प्रेरित किया। टेनेसी की मौत की सजा पाने वाली जेल डेफरो की एकमात्र महिला क्रिस्टा पाइक बुधवार रात को फांसी देने के एक असफल प्रयास के बाद अस्पताल में गंभीर हालत में है और जीवन रक्षक देखभाल प्राप्त कर रही हैं। पाइक जो पिछले 200 वर्षों में राज्य द्वारा फांसी दी जाने वाली पहली महिला होने वाली हैं कि कानूनी टीम ने टेनेसी के गवर्नर से उनकी मौत की सजा को कम करने की अपील की है। 2 अक्टूबर का दिन भारत के लिए खास है। इस दिन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जाती है। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में जन्मे शास्त्री जी ने अपना जीवन देश की आज़ादी और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल करीब 1.5 साल का रहा, लेकिन इस दौरान देश कई महत्वपूर्ण चुनौतियों से गुजरा। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व और जय जवान जय किसान के संदेश ने उन्हें देश के इतिहास में खास स्थान दिलाया।
0: और अब मौसम संबंधी जानकारियां याचना मिश्रा के साथ।
5: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। इसके अलावा दक्षिण से आ रहे सक्रिय बादल कल दोपहर बाद से स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह आसमान साफ रहेगा, केवल ऊंचाइयों पर कुछ बादल घिरा सकते हैं। दोपहर बाद देश के दक्षिणी हिस्से और सेंट्रल प्लेटो पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह से ज्यादा ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह से दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जा रही है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17, अधिकतम 23 से 25, तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 5:50 पर, शाम को सूर्यास्त 6:08 पर होगा।

0: और इसके साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फैजन का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
0: कुनी रोड रेनो मोरेल पिछड़ा फ्रीमे 74 साल के 74-year-old के श्री धर्मदेव दया, जो विजय से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 उनके घर कुनी रोड रेनो मोरेल पिछड़ा फ्री से उठाकर दारूची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 12:30 PM। बिल्टेर रोड हाईलैंड में 83 साल की 83-year-old की श्रीमती डेरंजनी बसावन, पैदाश नाम सिरस, और जो दिव्यानी से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10:00 PM उनके बेटे विकास बसावन के घर बिल्टेर रोड हाईलैंड से उठाकर फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। रेजिडेंस थोके चा बनमिया में 67 साल की 67-year-old की श्रीमती भगवंती सालिक, पैदाश नाम सुकौ, और जो वीना से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 12:30 उनके घर रेजिडेंस थोके चा बनमिया से उठाकर मेजिन कॉन्डोमास्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 12:30 PM। कमापू नंबर एक अंगता में 80 साल की 80-year-old की श्रीमती मुनी मोहन, पैदाश नाम चंपा, और जो मुनिया से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11:00 PM उनके घर कौमापू नंबर एक अंगता से उठाकर थ्वामामेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। रॉयल रोड पिचित्रविया में 66 साल के 66-year-old के श्री हरिस्कर बिजाधर, जो मायूस से ज़्यादा जाने जाते थे और SSU में सब इंस्पेक्टर थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 12:00 PM लाशापेल डॉत डोमोरा रॉयल रोड पिचित्रविया से उठाकर कैथोबोन के नोत्र दाम जुरोसे गिरजाघर ले जाया जाएगा, और फिर गांधी पाल्मा कैथोबोन की श्मशान भूमि। क्रिमेशन टुमरो एट 12:00 PM। रॉयल रोड ब्रह्मस्थान में 76 साल के 76-year-old के श्री भोज भतु, जो भोज से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11:00 PM उनके घर रॉयल रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर ब्रह्मस्थान की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। 78 साल के 78-year-old के श्री योगेंद्रनाथ सिंह हुकुम सिंह, जो विनेश से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11:30 PM लाशापेल ऑडोंट एलियंसंस रॉयल रोड बोबासन से उठाकर बेतो कैथोबोन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11:30 AM। ब्रांच रोड पिचिवेशे सेंट पियर में 27 साल के 27-year-old की श्री विकीश शर्मा रामासा, जो व्यास से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 1:00 PM उनके पिता विपिन रामासा के घर ब्रांच रोड पिचिवेशे सेंट पियर से उठाकर सर्कॉन्स्टांस सेंट पियर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1 PM। रॉयल रोड सिनेमा का सित्रियोले में 59 साल की 59-year-old की श्रीमती साबिना देवी सुगदावा, पैदाश नाम राजा राम सिंह, और जो रिद्धि से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 1:00 PM उनके पति कृष्ण सुगदावा के घर रॉयल रोड सिनेमा का से त्रियोले से उठाकर टर्मिनस त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1 PM। टुकू रोड हाईलैंड्स फिनिक्स में 88 साल की 88-year-old की श्रीमती केसरी रामगुलाम, पैदाश नाम हरकू, और जो भी 20 से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10:00 PM उनके घर टूकू रोड हाईलैंड्स फिनिक्स से उठाकर कॉफुखो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमरो एट 10 AM। 66 साल के 66-year-old के श्री धीरेन्द्र विरागु जो गांसों से ज़्यादा जाने जाते थे और जो बेगुनिया NHDC कॉलेव्यू रहते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11 बजे एलियंसंस बोबासन से उठाकर सैमौते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमरो एट 11 AM। नंबर 62 NHC बालांस प्लेन मायों में 69 साल के 69-year-old के श्री आनंद बालचन जो राजन से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर नंबर 62 NHC बालांस प्लेन मायों से उठाकर प्लेन मायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमरो एट 10 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: RM3 Radio.

0: Continuous music. RM3.
1: Nei su.

0: नमस्ते दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप जुड़े हैं अपने ही शो नई सोच के साथ, मेरे यानी अपनी पूनम के साथ। आज जरा सोचिए, क्या हम सच में लोगों के साथ समय बिता रहे हैं? जी, हम ये छोटी सी बात करेंगे आज आपके साथ। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही रूम में बैठे होते हैं और फ़ोन्स में बिज़ी होते हैं, टीवी के साथ बिज़ी होते हैं, अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं, पर अपने परिवार वाले लोगों के साथ में थोड़ा सा, कहते हैं ना कि अटक से या अलग से हो जाते हैं। और फिर तब एहसास होता है जब वो हमारे बीच में नहीं होते, तब सोचते हैं कि काश हमने वो समय बिताया होता, उनके साथ रहे होते। तो जी, इसी के साथ में आज छोटी सी नई सोच में ये आपके साथ जुड़ेंगे इस बात को, पर हम आपको यही कहेंगे, गाने बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, अपने मैसेजेस करते रहिएगा 5250-6200 पर। और अगर आपको दिल की कोई बात कहनी है तो आप कॉल भी कर सकते हैं 4028070 पर।
1: RM3 रेडियो

0: नई सोच। छह बजकर 44 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं नई सोच के साथ में। हम यहाँ पर अब अगर बात करें तो हमारे न्यू जनरेशन की या आजकल हमारे बड़े लोगों के साथ भी ऐसा ही होने लगा है कि हम कभी कभी नोटिस नहीं कर पाते हैं इस बात को कि हम कितना आजकल सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहते हैं। अगर कोई और स्ट्रेंजर होता है हम उसको इमीडिएटली रिप्लाई दे देते हैं, बट वहीं पर कोई हमारा कज़न या रिश्तेदार या हमारे अपने बच्चे कोई मैसेज करते हैं तो हम एक बात कह देते हैं, हाँ बस एक मिनट रुको हम आपसे बात करते हैं, और फिर कई कई घंटे तक हम रिप्लाई नहीं दे पाते, अपने कामों में लग जाते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि अगर नई सोच सिर्फ इतना ही कहती है कि स्ट्रेंजर्स से आप बात करना बुरा नहीं है, पर कई बार मुश्किल में पड़ जाते हैं, तो आप हमेशा जब भी किसी स्ट्रेंजर से बात करें तो अपने किसी माँ बाप को या भाई बहन को या अपने किसी दोस्त को ज़रूर जानकारी दें कि आप इस इंसान से बात कर रहे हैं, क्योंकि नहीं जानते स्क्रीन के पीछे कौन है, क्या उसका मोटिव है, वो क्यों बात कर रहे हैं, वो कौन है, कैसे हैं। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं पर बहुत बड़ी बात बन सकती है, इसलिए हम इतना ही कहेंगे स्क्रीन के थोड़ा सा समय कम दीजिए और अपने साथ ज्यादा जुड़िए।
1: RM3 रेडियो।

0: छः बजकर 50 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और हम बात कर रहे हैं नई सोच में सिर्फ कि आप जो स्क्रीन पर टाइम स्पेंड करते हैं, फ़ोन पर टाइम लगाते हैं, या कहते हैं सोशल मीडिया पे टाइम रखते हैं, तो वो टाइम को आप कहीं पर ऐसी जगह यूटिलाइज़ करें जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले। कई बार हम ऐसा ही होता है कि बस हम स्क्रॉल करते रहते हैं, घंटों घंटों बीत जाते हैं, पर इतना ही कहेंगे टेक्नोलॉजी बिल्कुल बुरी नहीं है, उस पर आप टाइम स्पेंड कीजिए, हो सकता है कोई नया आइडिया आपको मिल जाए, कुछ नया चीज़ सीख लें। पर फिर भी हम कहते हैं कि उसका एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन साइड में रखें, 10 मिनट सोचें, खुद के बारे में सोचें कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, क्यों मैं इतना टाइम स्पेंड कर रही हूँ, क्योंकि आपका देखो ये मूड कितना शफल करता रहता है। कभी वो कोई दुख की बात होती है उसमें, फिर एकदम से सुखी या खुशी की बात होती है, कोई कॉमेडी की बात होती है, फिर कुछ ऐसा मूवमेंट आ जाता है। तो इस तरीके से आपका जो ब्रेन होता है थोड़ा सा इफ़ेक्ट करता है, और ये सही नहीं है। तो थोड़ा टाइम अपने आप को दिया कीजिए, फ़ोन को साइड में रखा कीजिए, और खुद से कहा कीजिए कि मुझे फ़ोन नहीं यूज़ करना, वरना टाइम वेस्ट होगा।
1: RM3 रेडियो

0: नहीं सो।
1: तो दोस्तों थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर आना है क्योंकि कुछ रिश्तों को नेटवर्क नहीं सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए होती है। नई सोच में बस इतना ही। अब मिलते हैं दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ पूनम, साथ दे रही हूँ और हम हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए टिकटॉक पे भी आएँ और साथ जुड़ें। देखते हैं कि हमारे मेरा फ़ोन में बैटरी है या नहीं है, पर फिर भी उम्मीद ज़रूर करेंगे कि फ़ोन में बैटरी चार्ज हो जाए और फिर मुलाकात होती है। पर फिर भी आपको इतना ही कहेंगे जिन्होंने अभी तक सुना है प्रोग्राम, अपनी स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर वापस आ जाइए।
2: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज।
1: 7:10 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम के साथ यानी कि दिलों की आवाज़, जहाँ पे दिल की बात होती है। और जब दिल की बात होती है तो ये जो प्रोग्राम है इसमें हम लोग कहते हैं 90s के गाने चलाते हैं, और इन 90s के गाने कुछ ऐसे हैं जो कि मतलब सीधा दिल को झिंझोड़ कर रख देते हैं। और बस इतना ही कहते हैं कि हमारे साथ रहो। RM3 रेडियो मनोरंजन पर आपके साथ मैं हूँ इस समय पूनम। इन्जॉय कीजिए इस प्रोग्राम को, और अगर आपको भी कोई मैसेज करना है किसी दिल वाले के लिए, मैसेज करना है जिसको आपने बहुत टाइम से कुछ कहा नहीं, उसके लिए आप मैसेज भेज सकते हैं 5250-6200 पर, और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 4028070 पर।
0: RM3 रेडियो।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की
1: आवाज। 7:17 हो चुके हैं दोस्तों। पूरा हफ्ता बस हम लोग काम करते हैं, घर के काम हो, ऑफिस के काम हो, जिम्मेदारियां हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, कुछ ऐसी भागदौड़ होती है। कभी कभी कुछ अचानक से घर में ऐसा हो जाता है, काम में ऐसा हो जाता है जिसका हमने सोचा नहीं होता, और फिर भी उसकी मतलब जिद्दोजहद में हम लगे होते हैं कि बस ये काम फटाफट से ठीक हो जाए। बट कुछ टाइम कहीं पर रुकना भी पड़ता है, और जब रुकना पड़ता है तो ये फ्राइडे का दिन होता है ना, जब चेहरे पे सुबह सुबह तो टेंशन होती है पर शाम को तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, और कहते हैं कि अरे चलो भाई घर जाने का मौका है, थोड़ा सा चैन चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। वहाँ पे ऐसे गाने दिल को छूते हैं, और हम तो यही कहते हैं हमारे साथ रहो और कहीं मत जाओ। RM3 रेडियो मनोरंजन आपके साथ 24 घंटे है, और मैं इस समय आपका साथ दे रही हूँ पूनम।
0: RM3 रेडियो

तुम्हारे बगैर जीना क्या, जीने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। सांसों के बिना शायद कुछ पल मैं जी सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। तुम, हां तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैं जिंदगी से बढ़कर चाहने लगा हूं। मेरा आज, मेरा कल, मेरे दिन, मेरे पल सिर्फ तुम्हारे दम से। मेरी पूजा में, मेरी दुआओं में, मेरी खामोशियों में, मेरी सदाओं में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तारे टूट जाएंगे, चांद बुझ जाएगा, वक्त यहीं ठहर जाएगा, लेकिन उम्मीद की आखिरी किरण बुझने तक, आखिरी सांस चलने तक मैं तुम्हारा रास्ता देखूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ प्रिया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: सात बजकर 37 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ में। अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौंडवाल एंड जसपिंदर नरूला की आवाज़ में पिया लाग की लगन। बहुत ही प्यारा खूबसूरत गाना था, और इसके साथ हम इतना ही कहेंगे कि अभी तक आपने खाना नहीं खाया है तो खाइए, थोड़ा सा चैन लीजिए। अपने घर जो पहुँच चुके हैं उनको भी हम यही कहेंगे, बस शावर लीजिए और थोड़ा सा अपने परिवार वालों का चेहरा देखिए, आपको बहुत खुशी होगी। कहते हैं ना कि पूरा दिन काम करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम सिर्फ आपको, सिर्फ आपका परिवार चाहिए होता है, और इसके अलावा कोई फ़ोन नहीं चाहिए, कोई बात नहीं सुनने का दिल करता, कुछ करने का मन नहीं करता। पर हम आपको इतना ही कहेंगे, जब आप अपने परिवार के बीच में बैठ रहे हैं तो गाने ऐसे चलने दीजिए, इंजॉय कीजिए और साथ में उनसे बातें कीजिए। बस यही तो होता है ऐसा टाइम जो आपके लिए खुद ने चुना होता है। तो चलिए जी, दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं। बहुत ही प्यारे खूबसूरत मैसेजेस

0: के साथ में दौड़ शुरू हो रहा है। अनीता फ्लिकॉन फ्लाक से जुड़ी हुई हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं पूरे परिवार के लिए और सभी फ्रेंड्स और आनंद थ्री रेडियो लिसनर्स के लिए। सभी को कहा है कि भाई अपना खाना पीना खाइए और आराम से मुस्कुराते रहिए। सचिन पंपले मुझसे जुड़े हुए हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश की है, बिल्कुल हम चलाएंगे। कृष्णा, परीक्षा, स्मिता, सुनीता, किस्मत, कमला, प्रवेश सभी साथ दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच आप सभी का। इन्जॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम दिलों की आवाज़ को।
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio.
1: सात बजकर 55 मिनट हो चुके हैं दोस्तों. कहते हैं ना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे रोज़ बात ना हो फिर भी ज़िंदगी के बहुत करीब होते हैं. ये गाना स्पेशली दीप्ति के लिए जिनका आज बर्थडे है, और हम तो यही कहेंगे. और आज गांधी जी का भी बर्थडे है, तो हम दोनों को ही बहुत बहुत बधाई देते हैं. चाहे भले ही कोई इंसान हमारे बीच में ना रहे, पर फिर भी उनके कर्म, उनकी यादें हमेशा साथ होती हैं.

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 8:05 हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ। और इस समय आपका साथ दे रही है पूनम। और एक बहुत ही कहते हैं ज़िंदगी में बहुत जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ज़िंदगी में, होता है बचपना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बड़े हो जाते हैं, उम्र में हमारी उम्र बड़ी हो जाती है, पर हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा जो छुपा हुआ होता है वो कहीं ना कहीं होता है, और उसे होना चाहिए। अगर वो ज़िंदगी में नहीं है तो फिर और ज़िंदगी क्या। ऐसी ही हमारी एक नंदा जी हैं जो कि इतने प्यार से हंसते मुस्कुराते हुए फ़ोन करती हैं, और हमेशा करती हैं, और बस हमेशा यही कहती हैं पुनीता जी के लिए और गणेश फैमिली के लिए और उनके पूरे बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए। इतनी लंबी लिस्ट होती है उनकी, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि वो सबसे प्यार करती हैं, इसलिए वो अपने अंदर वो बच्चे को अभी तक रखे हुए हैं। और मैं तो नंदा जी आपको कहूंगी कि ये इसे हमेशा रखिए, ऐसे ही स्माइल करती रहिए, ऐसे ही हमारे साथ रहिए, और बस आप अच्छी लंबी उम्र पाएं, हम तो यही उम्मीद करते हैं और यही इच्छा करेंगे। साथ में इस समय हमारा ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से, और बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश लेकर हमेशा आते हैं। और अपनों को वैसे इतना ही कहते हैं कि कई बार इंसान बहुत दूर हो जाता है अपने लोगों से, पर फिर भी कई बार उनकी जब याद आती है तो आँखों से आँसू छलक जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे ललित जी, आँखों में से आँसू नहीं छलकाने हैं, उनको याद रखना, उनको दिल में रखना है, पर गानों के साथ जुड़े रहना है, उससे थोड़ा मन भी बहल जाता है और साथ में थोड़ी सी याद कम हो जाती है। हम नहीं कहेंगे कि कम कीजिए, पर जहाँ हम जानते हैं कि आप यूएसए में हैं और आपका परिवार इंडिया में है, तो कोई बात नहीं, हम सब हैं आपके साथ, आरएम थ्री हमेशा आपके साथ है।
0: आरएम थ्री रेडियो।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 8:20 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ और इस समय साथ दे रही है आपका पूनम और आप सब भी साथ दे रहे हैं इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस के साथ। थैंक यू सो मच सभी का जो भी हमारी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ में। इस समय हमारा साथ दे रहे हैं रफीक मोहित जी और बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश की थी, पर सर आज फ्राइडे है, फ्राइडे चाहते हैं हम 90s के गाना चलाना चाहते हैं, पर जो आपने गाने की फरमाइश की है कल ज़रूर उसको मैं चलाऊंगी क्योंकि कल भी मैं साथ ही होंगी। तो इस समय पीहू साथ दे रही है, रोशान, किरण, ईशान और एलिना, अमित, ग्लॉस, कृपा, सुशील, डैरन, प्रिशा, लोवेशा, सुनीति एंड सुनीता जी साथ दे रहे हैं और स्पेशली अनीता जी जो कि केपिप से साथ दे रही हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं और बस इतना ही कह रहे हैं, कहते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सेलिब्रेशन का ही वेट करना चाहिए, क्यों किसी डे का वेट करना है, रोज एक ऐसा दिन होना चाहिए जिसको हम इंजॉय कर सकते हैं। रोज़ हमेशा कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहती हैं, पर उसको छोड़कर पीछे हटाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया क्योंकि हम भी समझते हैं जब शाम होती है या रात होती है तो थोड़ी सी वो चीज़ें टेंशन दे देती हैं, जब हमने क्या करना है, कल क्या होगा, कैसे करेंगे, सब अपने आप होता चला जाएगा, बस आप अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए और आगे बढ़ते रहिए।
0: RM3 Radio.

0: देखिए जब फ्राइडे आता है ना तो रे साथ में लेकर आते हैं बहुत सारी खुशियाँ, चाहे परिवार के लिए हो, दोस्तों के लिए हो, खुद के लिए हो। तो हम तो यही कहेंगे कि आपका फ्राइडे बहुत अच्छा जाए और साथ में ही कल सुबह की जो मॉर्निंग हो ना आपकी बहुत हंसते मुस्कुराते हुए हो, क्योंकि आपको एहसास होगा कि अरे छुट्टी है। तो हम तो यही कहेंगे छुट्टी का एहसास अभी रात से ही हो रहा होगा, पर इतना ज़रूर कहेंगे हमारी वो लेडीज़ को जो घर में ज़्यादातर रहती हैं और थोड़ा सा बाहर राउंड वगैरह नहीं लगाती, हम ज़रूर कहेंगे एक बड़ा सा राउंड लगाया कीजिए, 1 आवर वॉक किया कीजिए। वो जैसे वॉक करते हैं ना उससे नींद बहुत अच्छी आती है। आप ये मत सोचिएगा कि टायर्ड हो जाते हैं, पर हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि हम तो देखो पूरे दिन चलते हैं, चलते ही रहते हैं, ना तो हम पतले हो पाते हैं और ना ही हमारा वेट कम हो पाता है, पर फिर हम तो फिर भी चलते हैं। पर हम आपको बोलेंगे कि जो आप चलते हैं उसे कहते हैं थकान। आपको जब आप बीच चलते हैं चलते हैं चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बीच में रुकना नहीं है, जब आप रुक जाते हैं तो वो सारा ख़राब हो जाता है गेम। इसीलिए उस गेम को कंटिन्यू करने के लिए सिर्फ आपको इतना ही करना है, आपने शूज़ डालने हैं, वॉक करना है, चाहे अभी वॉक कीजिए, चाहे सुबह वॉक कीजिए, रात को भी कई लोग वॉक करते हैं खाना खाने के बाद। तो आपको जैसा भी अच्छा लगता है ज़रूर कीजिए, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, क्योंकि एक तो नींद अच्छी आती है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है और एहसास होता है भाई आसपास क्या चल रहा है और मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, ठंडी हवा का जो झोंका हमारे चेहरे पर पड़ता है अच्छा लगता है। तो चलिए जी, हमारे साथ इस समय रिहाना जी साथ दे रही हैं और एक बहुत प्यारे से गाने की फरमाइश की है और अगला गाना आप ही के नाम जाएगा और उसके बाद एक प्यारा सा गाना इब्राहिम जी के लिए, क्योंकि कहते अरे आप पूनम जी फ्राइडे को कैसे, मैंने बोला बस आ गई।
1: RM3 रेडियो।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, की आवाज।
1: 8:47 हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ। तो दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन म्यूजिक अभी बाकी है। ये आखिरी दो गाने जो है मेरी पसंद के हैं, मेरी तरफ से आप सबके लिए। खुश रहिएगा, आराम से सोइएगा, और सुबह जब उठिएगा तो बहुत ही स्माइल करते हुए अपने चेहरे को अपने परिवार के साथ में तो प्यारी सी एक चाय पीजिएगा और मुझे याद कीजिएगा। तो मेरी तरफ से बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ख्याल रखिएगा, और फिर मिलेंगे कल सेम टाइम 7 to 9
2: RM3 रेडियो।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: टाइम चेक, रात के 9 बज रहे हैं।
4: भोजपुरी तड़का।
5: नमस्ते, हमने के सब श्रोता लोग के भोजपुरी तड़का में तो हर स्वागत करते हैं। जाए जहां होए बजा खुशी खुशी रहिए, जाए जहां होए बजा सब कोई के खुशी बांटिए, जाए जहां से भी हमने के सुना थे बजा हमने के कार्यक्रम में जरूर भाग लिया जा। हमने के भोजपुरी के कार्यक्रम भोजपुरी तड़का आई तो हर खातिर प्रस्तुत करे थे जा तो हर पसंद के भोजपुरी गीत प्रस्तुत करे खातिर तो चला हमने के साथ रही 11 बजे लेक और 11 बजे लेक तो हर फरमाइश तो हम जरूर पूरा कर जा। अभी चला तनी विनोद सिरदत्त जी के गावली गाना सुन ले राजा पीती पीती पीमा जहाँ पलतले हवन हौजा पर भर भरा के पीमा जम जाता। चलो सुनी जा और जे जे आखिर कल्चिया करे लन जा, जे जे खेती बाड़ी करे लन जा उनका नाम करते हैं जाई गाना।

और चलो पूर्णिमा फकीर आज के गावाले को गाना हम तो खाती सुनावत है जा और ये गाना हमने बजावत है जा विमाला जी खातिर विमाला जी रह लन कौन दे मास की गाना मंगले हो नवन पति रवि जी खातिर

और यह विनोद सिद्ध जी के गावल गाना, ललिता जी के पसंद के गाना और ललिता जी के पसंद के ई गाना हमने विनोद सिद्ध जी की आवाज़ में बजावत है जा उनकर परिवार खातिर, तो ये लेके कुशल परिवार खातिर और बहिन सुदेवी ज्ञानी और देवीना खातिर, छोटी जी प्रभावती जी हरीश जी और आत्माराम जी खातिर, सुखलाल मौसी खातिर और माला राम जावन जी खातिर, तरह सुनी जा ललिता जी के पसंद के गाना विनोद सिद्ध जी के गावल।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी भोजपुरी तड़का
2: तड़का
3: तड़का तो ऐसा लगते वाह चलो तो हर पसीन के तड़का लगाए में अलग मजा है। हमने प्रस्तुत करब जा भी इमली के चटनिया के बारे में गाना। इमली बिना चटनिया बनी कैसे तनी ये सोचे के बात बा। चलो सोचते सोचते गाना सुनी जा। हमने अभिनंदन बिजन जी के गावल गीत है इन वेलफॉन्स से गायत्री जी मंगले हवन और ये गाना मंगले हवन गायत्री जी अपन बेटा अजय खातिर मायबू के मामी कल्याणी मोहन जी खातिर मोताई लोंग के भाभी कल्याण भाभी शकुंतला जी खातिर नुवेल फ्रांस के सखी गीता बाई खातिर।

सुनन नयन जी के गावल गाना बड़ा मशहूर होल जाता है। गाना हमने से विजय बेनी प्रसाद जी मंगले हवन अपन संगतिया दानेश जगनारायण खातिर बेनी प्रसाद परिवार खातिर और माता बाकी अपन दोस्त शास्त्री बनुमाली जी खातिर।

चारों बगल गोल सुना नयन जी के गावल गाना अब रिकुत आगे बढ़ी जा हाथ में हाथ डाल के संगे संगे चले के एकता बढ़ाए के एकता बनाई ले रखे के गाना किशोर की मियां जी के गावल गाना हमने से मंगले हवन अनीता जी मौदालबे से करुणा अमृता सबको के संगे मिलके और पूरा परिवार के साथ साथ मिलके गाना सुने खोजत हवन

और दादा के कहानी दादी के कहानी सुनी जहां हमने अनीता जी के पसंद पर फ्लिकॉन फ्लैक से अनीता जी मंगले हवनी गाना गासन सिंगारों जी के गावल अपन पूरा परिवार अपन सब संगति आलोक

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: चलो भोजपुरी तड़का में अभी कुछ राजा बंधु जी के गावल गाना तो लगे सुनवाओ अब जा। और ये गाना हम नहीं बजवाए थे जा हमी के श्रोता शांति जी के सिर पर। शांति जी त्या हो से गाना मंगले हवन अपन पूरा मराठी परिवार खातिर दागुचे के

सही गाना सुनने जमनी राजा बंधु और रत्ना पदारत की आवाज में आगे बढ़ी जा ओ बलमा गाना लेके आ रहे हैं जहाँ हमने किशोर किमिया और श्वेता बाबूलाल के गावल ये गाना चला सुनी जा हमने अमृता जी के पसंद पर पीतों से अमृता जी मंगले हवनी गाना सोनिया और परी खातिर मीनाक्षी और विशान खातिर और पूनम खातिर।

गमट करे के समा बंद करबा बुझाता ई गाना जोन बिश्वानी दीपा जी के गावल बैकर में गमटवे के बारे में बतिया थे जा और ई गाना हमने बजावत है जय राधिका जी खातिर वाकवा की।

सुरेश भोजी के गावल बड़का मामा ये गाना हमने मीराबाई दरमिया जी खातिर बजवाओ थे जा मोदल पे ऐसे गाना मंगले हो मीराबाई जी पादिया परिवार खातिर और दरमिया परिवार खातिर अपन बेटी और अपन दामाद खातिर

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का,
2: तड़का में तड़का, स्वाद ही स्वाद है, संगीत के स्वाद, भोजपुरी के तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में अभी हमने प्रस्तुत करा था जब विनोद सिवदत्त जी के गावल ऊ गाना, जिनमें भोजपुरी के बोल बाला बा, बाप दादा की ई बोली कैसे हमने आगे बढ़ाए जा, ई बात पर भी हमने थोड़ा ध्यान रखी जा। श्रीमती जी गाना मंगले हवन अपन पूरा परि

सुनीजा उस समय के बाद जब तबाब दादा लोग हमने के दादा दादी लोग बल्कि हमने के दुख दुख सहतलन जा पीड़ा सहतलन जा संभावती तो बन चुके गवाली गीत था।

पॉइंट तो कानून ने से मंगले हवन सत्यजीत रघु जी के गावल गाना हमने से विक्रम जी विक्रम जी पूरा परिवार के नाम करत हवनी गाना अपन पत्नी साधना के नाम और अपन बेटी श्रिया के नाम

मामा उची मामा हमी के श्रोता लोग पसंद करे लंजाओरी इची मामा उची मामा सुमन राम तो हल जी गेले हवान तो चला हमने गाना बजवाई लाजा विनय खातिर विनय जी रहे लन मोहसिन मसैता उनके अपन भाई शकील और अपन भाई रोहन के नाम पर था वनी गाना

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का में चला हमने के दादा दादी की कहानी और सुनी जाओ री। हमने के दादा दादी को धरोहर लेके आ रहे जाकर बारे में भी सुनी जा। कमलेश जी गाना मंगले हवन बाकवा से, और कमलेश जी गाना अपन दादा दादी के नाम भी करत हवन और साथ ही साथ अपन माता पिता के नाम करत हवन।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का में का बोलत हो, भोजपुरी गमट ना करब जा, काहे नहीं करब जा, रोशन सदा सिंह जी के संगे संगे करब जा, और भोजपुरी गमट गाना हमनी बजावत है जा, वीरमती जी खाती है।

और चले मीरा मोहन जी के गावली गीत सुननी जा, मीरा मोहन जी के गावली गाना के संगे संगे हमने आगे बढ़ जा। और हमने के कार्यक्रम में बस 7 मिनट बाकी रह गए, बाकी समाप्त।

चलो मेरा मोहन जी के गावाली गाना हमने महेन भाई के नाम करी जा, पालमा के महेन भाई खातिरी गाना बजवाई ला जा, उनकर दीदी मान खातिरी गाना बजवाई ला जा। शुभ रात्रि महेन भाई।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का,
2: हाँ जी, भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के समय है पर पूरा हुआ था और अभी हमने तो हल्के सुरमाओ अब जा महेश विश्वजीत जी के गावाली गाना पानी के बुलबुलाई गाना सुनते सुनते हमने के कार्यक्रम समाप्त हो जाए। जहाँ हुआ जाए कार्यक्रम तो हल्के पसंद पड़ल हो यही उम्मीद करे थे जावला फिर से मिलब जा। अभी ये गाना के समाप्त होते होते ग्यारह बजते बजते सुनब जा आज के सुनहरे पल कार्यक्रम नीलमणि से आवत हला फिर मिलब जा। शुभ शाम, शुभ रात्रि, नमस्कार।

पल। शुक्रवार की रात है, वीकेंड का पहला एहसास है। पूरे हफ्ते की भाग दौड़ के बाद आज थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं और कुछ सुनहरे पल आपके नाम करते हैं। और अगर साथ में हो 80s का म्यूजिक तो फिर क्या ही कहना। कहते हैं कुछ गाने वक्त के साथ पुराने नहीं होते हैं, बस और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। तो चलिए फ्राइडे नाइट को एक रोमांटिक अंदाज देते हैं। एंड let me tell you कि अभी नमनी साथ दे रही है आपका सुनहरे पल में। तो चलिए फ्राइडे नाइट को एक रोमांटिक अंदाज देते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग मैंने प्यार किया मूवी से, आते जाते हंसते।

का एहसास कभी लफ्जों का मोहताज नहीं होता। कभी एक नज़र काफ़ी होती है, कभी एक आवाज़ और कभी बस एक गाना। और 80s के गाने तो जैसे दिल की बातें हमसे पहले ही कह देते हैं। तो जिस किसी के दिल में आज कोई खास फीलिंग है तो ये गाना शायद आपके लिए हो।

राहों पे रहने वाला ये मुसाफिर गेरूलाल सफर करते करते एक बार दूर दराज के पहाड़ों में जाकर रुक गया। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में टूटा फूटा सा एक घर, जहां चार औरतों का एक

0: अधूरा सा परिवार रहता था। अम्मा थी 60 से ऊपर की, कुछ सठियाई हुई सी, कुछ बहकी हुई, अपने आप ही से बातें करती रहती थी। और उसकी 3 बेटियां, निमकी, मिट्ठू और चिंकी। शादी किसी की नहीं हो पाई। लोग कहते हैं मां बाप के छींटे ना पड़े होते तो तीनों ब्याही जाती। देखने में भी तो आखिर अच्छी खासी हैं। बड़ी शादी की उम्र से गुजर चुकी है और छोटी लड़कों की तरह रास्तों में ठुड्डे मारती चलती है। शादी की उम्र को बस पहुंची कि अब पहुंची। और मंझली बेचारी गूंगी है। गेरूलाल ने अक्सर उसे गुनगुनाते सुना है। बहनें कहती हैं कि वो गीत लिखा करती है।
1: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ। फ्राइडे की रात है और पता है क्या खूबसूरत बात है, हम वक्त को वापस नहीं ला सकते, लेकिन एक गाना हमें कुछ पल के लिए उसी वक्त में जरूर ले जा सकता है। स्कूल के दिन, कॉलेज की यादें, पहली दोस्ती, पहली मोहब्बत, वो कैसेट प्लेयर, वो रेडियो, बस एक मेलोडी और पूरी कहानी आंखों के सामने आ जाती है। तो आइए एक और याद को जिंदा करते हैं।

पल परफेक्ट नहीं होता, कभी खुशी कभी उदासी, कभी मिलना कभी बिछड़ना, लेकिन शायद इसी का नाम जिंदगी है। और जब दिल थोड़ा भारी हो तो एक अच्छा गाना कभी कभी बिना कुछ कहे ही दिल को हल्का कर देता है। आज की रात बस इतना याद रखिए कि जो लोग आपके दिल के करीब हैं उन्हें वक्त दीजिए, और जब एक मेलोडी जो मोहब्बत को एक अलग ही अंदाज में महसूस कराती है वो गाना है दिल क्या करे।

और देखिए फ्राइडे की रात भी कितनी जल्दी गुजरती जा रही है, लेकिन अच्छे पलों की खासियत ही यही है, वो वक्त में छोटे होते हैं लेकिन यादों में बहुत लंबे। तो आज की रात किसी अपने को याद कीजिए, किसी पुराने गाने को सुनिए और जो लोग आपके साथ हैं उनके साथ एक खूबसूरत पल ज़रूर बिताइए। आपका प्यार और साथ यूं ही बना रहे। मैं हूं नीलमणि और आप सुन रहे थे सुनहरे पल, जहां हर एक गाना एक कहानी और हर कहानी एक याद। शुभ रात्रि, नमस्कार, शुभ आखिर।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: ये क्या शेखर, वो दोनों तो ऐसे ही चले गए, उन्हें जलाने का मौका ही नहीं मिला।
3: आज के लिए इतना काफी है संजना, आगे आगे देखो होता है क्या।

0: What the hell are you doing?
1: बहुत प्यार आ रहा है तुम पर।
0: But लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे?
1: Who cares? जो देख रहे हैं उन्हें देखने दो और जो जल रहे हैं उन्हें जलने दो।
0: Okay.

0: This is Radio Marxist.
1: 您好
2: Assalamualaikum.
3: Kim to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shudrandiriki Hrudaya Purvaka Namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा